सुप्रभात। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम भी 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून महीने की 28 तारीख। सुबह के 5:58 और 50 सेकेंड हुए हैं। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों में हम आपका स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती किसानी, जानकारी लेते हैं।

0: आदमी 30% का योगदान देती है। कृषि सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी है और किसानों की उन्नति सीधे मिट्टी पर निर्भर करती है। मिट्टी स्वास्थ्य तो देश स्वास्थ्य। उत्पादन बढ़ाने के लिए अंधाधुंध कीटनाशक, खरपतवार नाशक और उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग के कारण देश के अधिकांश भागों की मिट्टी में प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, द्वितीय पोषक तत्व जैसे सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरान, जिंक, कॉपर इत्यादि की मात्रा में निरंतर कमी आती जा रही है। इस स्थिति में मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, साथ ही साथ उत्पादन और उत्पादकता दोनों घट रही है। तो मृदा जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में किसानों के लाभ हेतु राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। अपने देश में बहुत से अशिक्षित किसान भी हैं जो यह नहीं जानते हैं कि अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए किस तरह से फसलों का प्रबंधन होता है। किसान भाई मिट्टी के गुण और उसके प्रकार नहीं जानते हैं। वे अपने अनुभव से फसलों को बढ़ाना और फसलों का असफल होना जानते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते हैं कि अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मृदा स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक ही नारा है, स्वास्थ्य धरा खेत हरा। जैसे अपने शरीर के लिए हम लोग डॉक्टर की सलाह मानते हैं, उसी तरह सारे नियम हमारी धरती माता के लिए भी लागू होते हैं। हम लोगों को मिट्टी की चिंता नहीं रहती है, जितना निकालना चाहिए हम निकाल लेते हैं। यूरिया डीएपी डालकर फसल ज़्यादा मिलती है लेते रहते हैं। मिट्टी की परवाह हम नहीं करते हैं, इसलिए आज समय की मांग है कि हम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता करें। 133 करोड़ आबादी का पेट हम तभी भर पाएंगे जब हम मिट्टी को स्वस्थ रख पाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सूचकों और उनसे जुड़ी शर्तों को प्रदर्शित करता है, जो मिट्टी की जांच के परिणाम से प्राप्त होता है। इसमें मिट्टी जांच के अनुसार फसलों के लिए उर्वरकों के प्रयोग और मात्रा का संक्षिप्त ब्यौरा किसानों को उनकी भाषा में उपलब्ध कराया जाता है, ताकि भविष्य में किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता संबंधी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और फसल उत्पादन में कमी भी ना आए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान भाई हर तीसरे साल अपने खेत की मिट्टी जांच करके बनवाएं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आने से किसानों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। इस योजना के जरिए किसानों को अपनी खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी मिलती है। इससे वे अपनी फसलों की सही ढंग से पोषक तत्वों का प्रबंधन भी कर सकेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर 3 वर्ष में दिया जाएगा, जिससे किसान अपने खेत की मिट्टी के बदलाव के बारे में भी जान सकेंगे। कार्ड के माध्यम से उर्वरक प्रबंधन से फसल उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ कृषि लागत भी कम आएगी। इससे किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हमारे देश की उन्नति होगी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। वाचन था अनीता तिर्की का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन।

धर्म का सार यही है कि मनुष्य को मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, यानी मानव जीवन का उद्देश्य सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही असल में मानव जीवन का सौंदर्य और श्रृंगार है। सेवा न केवल मानव जीवन की शोभा बल्कि परम पिता परमेश्वर की सच्ची आराधना भी है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीबों को धन देना, अनपढ़ को विद्या देना ही हर व्यक्ति का सेवा धर्म है। असल में दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया प्रत्येक कार्य सेवा है। यदि हम किसी कामना के लिए दूसरों की सेवा करते हैं तो वो सेवा नहीं है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे मन में असीम शांति की अनुभूति होती है। हम भले ही कितने सुविधा संपन्न क्यों ना हों, लेकिन जो सुख हमें दूसरों की सेवा करने से मिलता है वो सभी सुखों में सर्वोपरि है। सेवा करने से जो संतोष प्राप्त होता है वो किसी और कर्म से संभव नहीं है। सेवा भाव से व्यक्ति दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा में अपनी परेशानियों को भूल जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मानवता की सेवा में जुट जाए तो दुनिया में गरीबी, अशिक्षा, अहंकार, घृणा, पाप और क्रूरता इत्यादि अवगुण स्वतः समाप्त हो जाएंगे और तब सभी सुखी संपन्न और प्रसन्न हो जाएंगे। असल में हर देश की भाषा, संस्कृति और बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी के कल्याण का मार्ग मानवता की सेवा ही है। हम सभी को क्रोध, घृणा, अहंकार को त्याग कर अपने भीतर दया, क्षमा और सेवा का भाव जागृत करना चाहिए ताकि समाज, देश, दुनिया में शांति स्थापित हो सके। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है तो युधिष्ठिर ने कहा कि दया ही श्रेष्ठ धर्म है। अगर दीनहीन, असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति पर दया दिखाते हुए उनकी सेवा और सहायता नहीं करेंगे तो कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी हमारा घर, समाज, देश और विश्व उन्नति की ओर अग्रसर होगा। हमारे वेदों में कहा गया है कि मनुष्य, तू दो हाथों से कमा और सैकड़ों हाथों से दान कर। इसी तरह प्रकृति भी हमें यही सीख देती है कि तेरे पास तेरा अपना कुछ नहीं है, जो है वो दूसरों के लिए है।

आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन और वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले देशभक्ति गीत संवेद स्वर में, शब्द रचना इकबाल की, संगीत पंडित रविशंकर का।

मिट्टी की खुशबू में बसा है देश का अभिमान, हर दिल में गूंजे भारत माँ का पावन सम्मान, तिरंगा रहे सदा सबसे ऊंचा, यही है अरमान, जय हिंद के उद्घोष से गूंजे सारा हिंदुस्तान। अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में इकबाल की रचना, संगीत था पंडित रविशंकर का, और आइए अब सुनते हैं कुछ भक्ति संगीत। सबसे पहले सुनते हैं बालकृष्ण की आरती।

बालकृष्ण की आरती के बाद आइए सुनते हैं राधा रमन लाल की आरती, मौसमी का ही गाया हुआ। संगीत है JSR मधुकर का।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। आइए अब सुनते हैं श्री बांके बिहारी को समर्पित यह आरती मौसमी के स्वर में।

मौसमी के गाए श्री बांके बिहारी को समर्पित इस आरती के साथ ही संपन्न हुआ आज का भक्ति संगीता कार्यक्रम आराधना। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वन देवी और वन देवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता योग और संगीत। भेंट वार्ताकार होंगे अमित कुमार ठाकुर, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल। समय याद रखें 7:05 पर। 7:15 पर आप सुनेंगे हर दिन की तरह सुबह सुरीली। खुला आकाश का वक्त होगा 7:45 पर। आप सुनेंगे प्रशांत गौरव की वार्ता झारखंड के कथा पुरुष। समाचार प्रभात 8:00 से। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर प्रादेशिक समाचार।

गीत गान शिक्षा आप सुनेंगे कन्नड़ भाषा में 8:45 पर। गीतकार होंगे बीआर गीता। रसरंजन 9:05 पर।

शास्त्रीय संगीत में 9:30 पर आप सुनेंगे श्री राणा झा का गाया हुआ राग तोड़ी में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध होगी और द्रुत रचना 3 ताल में। तबले पर संगत करेंगे कौशिक दास और हारमोनियम पर संचाली नाग। बाल सभा आप सुनेंगे 10 बजे से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा आओ बढ़ाएं हरियाली, शिक्षा और संस्कार का महत्व विषय पर भी आपको जानकारी मिलेगी। आप बाल गीत भी सुनेंगे और बच्चों के मुख से कई बातें भी सुन पाएंगे। प्रेरक व्यक्तित्व की भी आपको जानकारी मिलेगी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडेय की जोहार रांची। आप सुनेंगे 10:30 से।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात आप सुन सकेंगे 11 बजे से। इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का प्रसारण होगा दोपहर 12 बजे से। आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में चर्चा, भेंट वार्ता सुनेंगे बदलता फैशन, प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 12:30 पर भारत भारती, आप सुनेंगे विजय भारती झा का गाया हुआ मैथिली गीत। लोक रंग आप सुनेंगे 12:45 पर। आप सुनेंगे विलियाना डुंगडुंगा और साथियों से खड़िया लोकगीत। अनुरंजनी का वक्त होगा 1:20 पर। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे 1:45 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आशा भोसले का गाया हुआ सुगम संगीत। जय भारती 2:30 पर। रांची मेलोडीज 3:25 पर। सांझ सरगम आप सुनेंगे 4:35 पर। आप जानकारी ले रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति।

0: रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदा योकिमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू लेयुंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, सुनते हैं भेंटवार्ता, योगा और संगीत। भेंटवार्ताकार हैं अमित कुमार ठाकुर, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल।
3: योग का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका है। योग के सहारे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं।

0: में यदि संगीत जुड़ जाता है तो जीवन में चमत्कारी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि योग और संगीत का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं अमित कुमार ठाकुर जी। अमित जी, स्वागत है।
1: सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने बात की शुरुआत एक मंत्र के साथ करना चाहता हूँ।

जी हाँ, सबसे बड़ी मंत्र यही है, ओम मंत्र, जो छोटा है, सुनने में सरल है, हम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है। इस मंत्र को अपने जीवन में अगर आप उतार लेते हैं तो आपका जीवन स्वस्थ से परिपूर्ण हो जाएगा। आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी, पूरा जीवन स्वस्थ पूर्वक आप बिता सकते हैं। इसको संगीत के साथ अगर ऐड कर देते हैं तो अपने पूरे जीवन में एक अलग आनंद आता है। योग और संगीत, संगीत में सा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, षडज भी इसे बोलते हैं। योग में भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोगों के शरीर का सबसे निचला हिस्सा, मूल द्वार, जिसे हम लोग मल द्वार एनस भी कहते हैं, वहाँ पर वो चक्र बेस्ड रहता है, मूलाधार चक्र। उस चक्र को एक्टिव करने के लिए ये मंत्र बहुत ही लाभकारी है। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? सबसे पहले लंबी गहरी श्वास

0: इसका निरंतर अभ्यास। इस अभ्यास को करने के बाद आप अनुभव करेंगे शरीर आपका स्वस्थ होता ही है, और आज के समय में सबसे ज़्यादा स्वस्थ होना है मन। आपका मन बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहता है, कुछ भी घटना हुआ तुरंत मन पे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। मन को स्वस्थ रखने के लिए संगीत और योग बहुत ही फायदेमंद है। इस साक अभ्यास, ओम मंत्र का अभ्यास निरंतर करने से आपका मानसिक संतुलन होगा। मानसिक बीमारी अगर किसी को किसी की तरह है, उनमें भी फायदा करता है ये ओम मंत्र का अभ्यास।
1: ओम में एक बहुत बड़ी शक्ति है जी। और ओम के जाप के सहारे हम अपने अंदर जो शरीर के अंदर बहुत सारी व्याधियां हैं उससे हम मुक्ति पा सकते हैं
0: जी।
1: हमने कहा कि एक संसार माया जाल है और माया जाल में हम फंसे जा रहे हैं, तनाव से घिरे हुए हैं। तो तनाव दूर करने के लिए योग के सहारे संगीत का तालमेल हम किस प्रकार बैठाए कि हम प्रसन्न रहे, खुश रहे
0: जी। पहला स्वर मैंने इससे पहले भी बात की, सा का, और संगीत में सा और प जो बोला जाता है ये अचल स्वर है। इस दोनों स्वर को अगर साथ में लेके चला जाए तो जीवन सफल हो जाता है। उसी तरह योग में भी इस दोनों स्वर के साथ अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी अभ्यास करते हैं, कुछ भी मंत्र हुआ, कुछ भी भजन हुआ, तो हम लोगों का जीवन संगीत की तरह योग में भी सफल हो जाता है।
1: जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे,
0: कुछ भी मंत्र हुआ, जैसे ओम का ही मंत्र हो गया, और बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे देवी माँ का मंत्र है, मंत्र का हम योग में भक्ति योग का
1: समावेश,
0: भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। भक्ति योग में जैसे कुछ भी भजन हो गया, कुछ भी मंत्र हो गए, बहुत सारे, जैसे एक मंत्र

0: कंसेंट्रेट रहता है और वो जगह है आपका आज्ञा चक्र हम लोगों का, जहाँ पर तिलक चंदन टीका लगाते हैं आईब्रो सेंटर के पास। अगर आपका ये मन स्वस्थ हुआ तो पूरा शरीर स्वस्थ, पूरा जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। ये फायदा है संगीत का हमारे जीवन में। आज के समय में देखा जाता है यंगस्टर लोग जो पढ़ाई तो करते हैं, नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर उनका रिजल्ट निगेटिव आता है तो अपना मानसिक बैलेंस खो देते हैं। उस कंडीशन में बच्चे तो मानसिक बैलेंस खोते ही हैं, उनके गार्जियन भी मानसिक बैलेंस खो देते हैं। उस कंडीशन में योग ही एकमात्र सहारा है जो उनको पेशेंस रखने के लिए बोला जाता है। हाँ, पेशेंस रखिए आप। योग करने से पेशेंस वाली जो बात आती है उसका इम्प्रूवमेंट होता है। कुछ आसन है जो इस कंडीशन में फायदा करता है। सबसे पहला अभ्यास जो है प्राणायाम में
1: जी।
0: अनुलोम विलोम प्राणायाम है
1: जी।
0: अनुलोम विलोम करने की प्रक्रिया है, अपने राइट हैंड के फर्स्ट और सेकंड फिंगर को
1: जी।
0: अपने फोरहेड के पास रख लेते हैं, जहाँ पर टीका या चंदन लगाते हैं, अपने आईब्रो सेंटर के पास, और अपना फर्स्ट फिंगर जो अंगूठा है उसको दाई नासिका छिद्र पर रख लेते हैं और फोर्थ फिंगर को बाई नासिका छिद्र पर रख लेते हैं। और अब धीरे से बाई नासिका छिद्र से श्वास को धीरे धीरे खींचेंगे इस प्रकार से। फिर कुछ देर के लिए दो नाक को बंद करेंगे। ये बंद करने का योग में इस बंद करने को बोला जाता है कुंभक का अभ्यास। श्वास लिए, श्वास को रोके, इसको अंतर कुंभक बोला जाता है। दोनों नाक बंद। ये बंद करने के समय में आपका पूरा विचार, आपके मन के अंदर जितने भी विचार आ रहे हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, वो जीरो के समान। आपका चिदाकाश वो पूरा काला ब्लैक हो जाएगा, कुछ विचार नहीं। फिर कुछ देर बाद आप दाई नासिका से वो श्वास को छोड़ेंगे। श्वास छोड़ने के बाद फिर से दोनों नासिका को बंद करेंगे। इस अभ्यास को 5 से 6 राउंड करना है। श्वास लेना बाई नासिका से, दाई नासिका से छोड़ना, फिर दाई नासिका से श्वास लेना और बाई नासिका से छोड़ना। ऐसा एक राउंड हुआ, ऐसा आपको 5 से 6 राउंड। इसको करने में मुश्किल से 3 से 3.5 मिनट आपको लगेगा। और यह अभ्यास निरंतर करने से मानसिक बैलेंस बना रहता है, इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं जिनको भी मानसिक प्रॉब्लम होता है। और दूसरा एक अभ्यास है जो बहुत ही अच्छा है हमारे जीवन में, उसका बहुत ही योगदान है। नींद का बहुत प्रॉब्लम है आज के समय में, नींद नहीं आता है, उसके कारण मानसिक बीमारी होती है। तो नींद का प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए सिंपल है, अपना इंडेक्स फिंगर जो पहला फिंगर है उसको, उससे कान की टीपी को बंद कर लेते हैं ताकि बाहरी आवाज़ से हम बच सकें। कान बंद, लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं और भौरा की तरह आवाज निकालते हैं। फिर से गहरी श्वास अंदर, इसका अभ्यास आप 8 से 10 चक्र करेंगे तो पूरा अच्छा लगेगा, मन लगेगा एकदम ठंडा लग रहा है, स्वस्थ लग रहा है, तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे आपके मन के अंदर। आज के समय में योग ही एक सहारा है। आप योग के लिए 10 से 15 मिनट समय निकालिए, आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। और ये 10-15 मिनट में आप क्या कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, बिना किसी गुरु के 10 से 15 मिनट में। वो मैं आपको बता दूँ एक लाइन से। पहला एक अभ्यास है तारासन, जिसको हम लोग खड़ा होकर दोनों हाथ को ऊपर की ओर खींचते हैं, फिर हथेली को सर पे रखते हैं। पहला अभ्यास ये है। दूसरा है एक त्रिकोण आसन, खड़े होकर ही करते हैं उसको, दोनों पैर को फैला लेते हैं, दोनों हाथ ऊपर रहता है और लंबी गहरी श्वास लेते हैं हाथ ऊपर करते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को दाईं ओर, फिर बीच में बाईं ओर। ये दूसरा आसन हुआ। तीसरा है आपका लेटे लेटे हम लोग कुछ अभ्यास, जैसे पीठ के बल लेट गए और पैर, दोनों पैर को साइकिल चलाते हैं, फास्ट साइकिल, 50 क्लॉक चलाइए, 50 एंटी क्लॉक चलाइए। ये पीठ के बल हो गया। एक आसन है पेट के बल, आप कर लीजिए भुजंग आसन, जो पीठ दर्द कमर दर्द इससे राहत मिलेगा। ये 4 आसन। पांचवा, आप उठकर बैठ जाइए कुछ प्राणायाम जो अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, नारी स्वतन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जिसे कहते हैं, और अंत में भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद भी अगर आपको टाइम मिले तो संगीत की दुनिया में आ जाइए, संगीत और योग को मिला दीजिए, आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। ओम मंत्र का अभ्यास लास्ट में जितना देर संभव हो सके कीजिए।

इस तरह के कई सारे मंत्र हैं। इसमें क्या होता है, आप तो एक प्रॉपर वे में बैठते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और मन एक जगह कौन से

0: दोस्तों, योग का हमारे जीवन में बहुत ही गहरा संबंध है और योग के साथ यदि संगीत जुड़ जाता है तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ने लग जाता है। थोड़ा सा समय निकालिए अपने व्यस्त जिंदगी से, योग कीजिए, खुश रहिए, तनाव मुक्त रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। बड़ी अच्छी बातचीत हुई श्री अमित कुमार ठाकुर जी, आप आज इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे योग और संगीत विषय पर भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार थे अमित कुमार ठाकुर, उनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुबह सुरीली।

रोटी कपड़ा और मकान यह थी फिल्म जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ। संतोष आनंद के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आइए सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये गीत, शैलेंद्र का लिखा हुआ, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, स्वर लता मंगेशकर का।

सुबह सुरीली आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं फिल्म धरती कहे पुकार के का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

शोर, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ। संतोष आनंद के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सुबह सुरीली में आज बस इतना ही। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं खुला आकाश, सुनते हैं प्रशांत गौरव की वार्ता झारखंड के कथा पुरुष।
1: लेखन की सुदीर्घ परंपरा रही है, यहां का कथा परिदृश्य लगभग 8 दशकों में फैला है। आज भी समकालीन हिंदी कथा साहित्य में कथाकारों की एक बड़ी संख्या सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह उपस्थिति क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर प्रभावपूर्ण है। झारखंड में हिंदी लेखकों के 3 वर्ग हैं। पहले वर्ग में ऐसे लेखक सम्मिलित हैं जिनकी जन्मभूमि इसी अंचल में। दूसरा वर्ग उन हिंदी लेखकों का है जिनकी कर्म भूमि झारखंड है। और तीसरे वर्ग में प्रवासी लेखकों की बड़ी संख्या है जिन्होंने कम या अधिक समय यहां बिताया और अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इसलिए हिंदी साहित्य के क्षेत्रीय इतिहास लेखन में तीनों श्रेणियों के साहित्यकारों की प्रमुख भूमिका रही है। झारखंड का हिंदी कथा परिदृश्य अनेक कथाकारों की उपलब्धियों का इतिहास है। इन कथाकारों में

प्रेमचंद युग के राधा कृष्ण से लेकर हिंदी के नवीनतम कथाकारों तक की चर्चा की जा सकती है। राधा कृष्ण को झारखंड का पहला विशिष्ट और समर्पित कथाकार कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य में जो सम्मान प्रेमचंद को प्राप्त है, वही सम्मान राधा कृष्ण को झारखंड के हिंदी साहित्य में प्राप्त है। अपनी सहज संप्रेषणीय और विशिष्ट कथा भंगिमा के साथ किस्सागोई की विलक्षण क्षमता के कारण वे अपने समय में चर्चित प्रशंसित रहे थे। उनकी पहली कहानी सिन्हा साहब अप्रैल 1929 में हंस में प्रकाशित हुई। इनके प्रमुख कहानी संग्रह रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोल, आहत है। वहीं उपन्यासों में फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने आदि प्रमुख हैं। राधा कृष्ण ने विपुल साहित्य का सृजन किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी अधिकांश रचनाएं आज भी अप्रकाशित हैं। राधा कृष्ण के बाद झारखंड में कथाकारों की लंबी कतार बनती चली गई। 1917 ईस्वी में लोहरदगा जिले में जन्मे द्वारिका प्रसाद का लेखन 1948 से 78 के बीच 3 दशकों में सिमटा हुआ है। द्वारिका प्रसाद झारखंड के पहले नियमित उपन्यासकार के साथ ही हिंदी में व्यक्तिगत निबंधों के जन्मदाता भी हैं। कहानी उपन्यासों के अतिरिक्त मनोविज्ञान तथा यौन विज्ञान संबंधी रचनाएं भी लिखी है। इनके उपन्यासों में अंकुश, पहिए, भटका साथी, स्वयं सेवक, अनामी, कांता, घेरे के बाहर प्रमुख है। अपने समय में घेरे के बाहर काफी विवादास्पद रही। इनकी 2 कहानी संग्रह परियों की कहानियां, शेर का शिकार प्रकाशित हो चुका। कथाकारों के इसी क्रम में 1 नवंबर 1905 को भोजपुर जिले के पवार गांव में जन्मे योगेंद्रनाथ सिन्हा, जिनकी कर्म भूमि झारखंड रही, यहां वन विभाग के सर्वोच्च पद मुख्य वन संरक्षक के पद पर रहकर सेवानिवृत्त हुए। उनकी रचनाओं में वन के मन की निश्चल आत्मीयता, वन का पावन जादू पूरे सम्मोहन के साथ खुलता है। पहाड़ की पुकार, दुम्भी हो, मूछ की लड़ाई, चलो बादलों में छिप जाएं, खोया कंगन, आसमान तारा इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। वहीं वन लक्ष्मी वन के मन में प्रसिद्ध उपन्यास है। कथाकारों के इस कतार में जमशेदपुर के गुरुवचन सिंह, जिनके युग और देवता, नीम की निबोलियां, धरती के बेटे, एक और निवेदन, बुझी हुई राख, आसमान दूर है, हे अरण्य कुछ कहो, मोतियाबिंद आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। वन पाखी, रेखाएं और पंजाब की त्रासदी पर केंद्रित सबे घर राम बोले महत्वपूर्ण उपन्यास है। श्रवण कुमार गोस्वामी आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम व्यंग कथाकारों में से एक हैं। उनकी रचनात्मक प्रतिभा विलक्षण है। मनोविश्लेषण की गहन क्षमता, सूक्ष्म सौंदर्य बोध एवं कला के प्रति ईमानदारी एवं समर्पण का भाव उन्हें अन्य कथा लेखकों से अलग साबित करता है। उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज के यथार्थ की आलोचना व्यंग के माध्यम से की है। देश में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार, पूंजीवाद, अशिक्षा, गलत शिक्षा प्रणाली, गिरते मूल्य को अपने उपन्यासों से उभारा है। उनका संपूर्ण औपन्यासिक लेखन मानव मूल्यों और आदर्शों को समर्पित है। उनके प्रत्येक उपन्यास में कोई ना कोई पात्र ऐसा है जो विषम परिस्थितियों को झेलता हुआ भी अपने लिए साहसपूर्ण मार्ग चुनता है और अपनी अलग पहचान निर्मित करता है। इनके उपन्यासों में जंगल तंत्रम, जिसे 1980 में झारखंड का प्रसिद्ध राधा कृष्ण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, सेतु, भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ ना बोले, राहु केतु, मेरे मरने के बाद, चक्रव्यूह,
एक टुकड़ा सच, आदमखोर प्रमुख हैं। जिस दिए में तेल नहीं, एकमात्र कहानी संग्रह है। इसी कड़ी में रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर रहे डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने अपनी कहानियों के माध्यम से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इनकी पहली कहानी बॉडम 1961 में धर्मयुग में प्रकाशित, साल वन का आखिरी पेड़ उनका प्रमुख कहानी संग्रह है, वहीं जंगल उपन्यास है। सन 1958 में गया से रांची आए विद्याभूषण एक साथ कथाकार और समीक्षक भी हैं। 1963-64 तक आते आते उनकी स्तरीय कहानियां देश भर के शीर्ष पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। उनकी अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित है, जिनमें कोरस, कोरस वाली गली, नायाब नर्सरी प्रमुख है। टाटा स्टील से सेवानिवृत्त जयनंदन समकालीन हिंदी कथाकारों के बीच खासे चर्चित हैं। इनके कहानी लेखन की विशिष्टता के कारण भारतीय ज्ञानपीठ का युवा लेखन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। इनकी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियां और अंतर्विरोधों की झलक मिलती है। सन्नाटा भंग, विश्व बाजार का ऊंट, एक अकेले गांधी जी, कस्तूरी पहचानोवत्स, दाल नहीं गलेगी, अब घर फूक तमाशा, गुहार, गांव की सिसकियां, भीतर घात इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। श्रम एवं जयते, ऐसी नगरिया में केई विधि रहना, सल्तनत को सुनो गांव वालों इनके उपन्यास हैं। पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों को अपने उपन्यास में नए ढंग से प्रस्तुत कर पूरे वैश्विक फलक पर हिंदी की गरिमा को विशेष पहचान दिलाने वाले नरेंद्र कोहली जनप्रिय रचनाकार रहे हैं। भारत विभाजन के पश्चात सियालकोट अब पाकिस्तान से जमशेदपुर आए नरेंद्र कोहली रांची विश्वविद्यालय के हिंदी प्रतिष्ठा में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्नातक रहे हैं। पुनरारंभ, आतंक, साथ सहा गया दुख, दीक्षा, महासमर, तोड़ो कारा तोड़ो, वसुदेव, पूत अनोखे जाए इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एकाएक, सटल, नमक का कैदी, निचले फ्लैट में आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। वासुदेव की पिछले 3 दशकों में लगभग 100 से अधिक कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपी है। उनकी 14 कहानियों का संकलन इस जंगल के लोग 1993 में प्रकाशित हुआ। इसकी पांडुलिपि को बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा युवा लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। इन कथाकारों में सी भास्कर राव की विशिष्टता आज भी बनी हुई है। मूलतः तेलुगु भाषी सी भास्कर राव ने हिंदी साहित्य के श्री वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आतंक तथा अन्य कहानियां, दावा नल, एक अधूरी आत्मा, ताकि शेष रहे मन, विशिष्ट कहानियां, वायरस 2000, मेरी यादगार कहानियां, हादसे से गुजरते हुए तथा अन्य कहानियां, बस स्टॉप पर लाश, रोना भी एक रोशनी है प्रमुख कहानी संग्रह है। दिशा, शोध संघर्ष, कटघरे में कुत्ता उनका प्रमुख उपन्यास है। पलामू झारखंड में जन्मे मनमोहन पाठक अपने एकमात्र उपन्यास गगन घटा घरानी से हिंदी पाठकों के हृदय में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पलामू रोहतास की सीमा पर स्थित उरांव बस्तियों की संघर्ष कथा का बड़ा सजीव चित्रण मनमोहन पाठक ने किया है। भारत के मानचित्र के बाहर जहां तक हिंदी भाषा और साहित्य पहुंची है, रणेंद्र के उपन्यासों की गूंज वहां तक है। पेशे से प्रशासनिक अधिकारी होते हुए रणेंद्र ने साहित्य की जो अभूतपूर्व सेवा की, उसकी मिसाल दुर्लभ है। रणेंद्र की रुचि हाशिए के समाज की अस्मिता से जुड़े सवालों को सामने लाने तथा उन समस्याओं पर बहस कर उसका समाधान प्रस्तुत करना रहा है। ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, गूंगी रुलाई का कोरस उनका चर्चित उपन्यास है। रात, बाकी एवं अन्य कहानियां, 56 छुरी, 72 पेंच प्रमुख कहानी संग्रह है। 1990 के बाद हिंदी कथा साहित्य में एक नई पीढ़ी का आगमन हुआ। पंकज मित्र इसी नई पीढ़ी के प्रमुख कहानीकार हैं।
इनकी अब

0: तक 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें लगभग 52 कहानियां संकलित है। अंग्रेजी साहित्य में एमए और पीएचडी की उपाधि अर्जित किए पंकज मित्र देश भर के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। इंडिया टुडे का युवा लेखन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। इनकी रचनाओं में गांव और शहर के बीच बसे कस्बाई जीवन का चित्रण मिलता है। पंकज मित्र के कहानियों के प्राण तत्व हैं उसकी व्यंग भाषा। इनका व्यंग फलक बहुत विस्तृत है। जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली विसंगतियों को सुंदर अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में मिलती है। क्विज मास्टर, हुड़ुक लुल्लू, जिद्दी रेडियो, बसिंदा एट द रेट ऑफ तीसरी दुनिया, अच्छा आदमी, एक हंसोड़ का हलफनामा इनका प्रमुख कहानी संग्रह है। बाद की पीढ़ी में प्रियदर्शन, नीरज नीर, मृत्युंजय कोइरी आदि युवा कथाकार सक्रिय हुए हैं। प्रियदर्शन का एकमात्र उपन्यास जिंदगी लाइफ काफी प्रशंसित रहा। वहीं अब तक उनके दो कहानी संग्रह उसके हिस्से का जादू, बारिश, धुआं और दोस्त पाठकों को प्रभावित करता है। 1973 में जन्मे नीरज नीर का एकमात्र कथा संकलन ढुकनी एवं अन्य कहानियां पाठकों में खासा लोकप्रिय है। 3 फरवरी 1992 को रांची जिले से 80 किलोमीटर दूर सोनाहातु के चोगा ग्राम में जन्मे मृत्युंजय कोइरी की आत्मा गांव में बसती है। उनकी कहानियों में ग्रामीण व शहरी आम जनजीवन के दुख दर्द, लाचारी, विवशता व उच्च वर्ग की संवेदनहीनता के चित्रण मिलते हैं। झारखंड के नए कहानी लेखकों में मृत्युंजय अकेले कहानीकार हैं जो किसानी जीवन को केंद्र में रखकर लेखन कर रहे हैं। कम समय में ही विशिष्ट कहानीकारों के फहरिस्त में शामिल मृत्युंजय के प्याज के आंसू और सौ यात्रा कहानी का क्रमशः बंगला और मलयालम में अनुवाद हो चुका है। मेड़, राजेश की बैलगाड़ी, एक बोझा धान, चयनित कहानियां मृत्युंजय कोइरी, प्रमुख कहानी संग्रह है तपस्या, अंतर्मन के शब्द, गैरत, विवस्ता आदि इनका साझा कहानी संकलन है। इन सभी पुरुष कथाकारों ने मिलकर यह स्थापित किया कि कथा साहित्य आजीवन के सर्वांग स्वरूप को प्रस्तुत करता है।
1: खुला आकाश कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रशांत गौरव की वार्ता झारखंड के कथा पुरुष। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP Zone 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जांच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और

0: आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
1: हमारे यहाँ रोड कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकिलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकिलिंग करना कठिन हो जाती है।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंडमास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमरीका के वाशिंगटन में भारतीय

0: आवास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूजोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिन्दुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार करेंगे साझा। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, झारखंड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1,63,73 लाख लोग हुए लाभान्वित। राज्य में आज से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 61 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। झारखंड में तेज होगी मॉनसून की गतिविधि, रांची समेत 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित सुब्रतो कप अंडर-17 बालिका फुटबॉल चैंपियन की विजेता बनी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की टीम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और

0: प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रांची में कहा कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि झारखंड में प्रधानमंत्री जनधन मुद्रा और उज्ज्वला जैसी योजनाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1,73,00,000 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 39.82 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
1: झारखंड में 39,82,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। इसी तरह मतलब अनेक मुद्दों पर जिस तरह झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी सोरेन जी की तो सरकार है और उनको यहाँ पर बहुमत मिला, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो झारखंड अलग बनाने के लिए शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भी निर्णायक झारखंड बना है। या ट्राइबल की संख्या बहुत बड़ी है, तो रिपब्लिकन पार्टी जो है ये सभी जाति वर्गों में बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है।
0: राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत राज्य के 61 लाख से अधिक और रांची में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य भर के 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रांची में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने के लिए 3,893 बूथ बनाए गए हैं। वहीं देवघर जिले में भी पल्स पोलियो अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य निदेशक शशि प्रकाश झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं। उधर पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 3,97,521 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं सरायकेला खरसावा जिले में 2.25 लाख से अधिक बच्चों को खुराक दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 16 नए संक्रमित मिले हैं। गंभीर मरीजों को जमशेदपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में जांच, उपचार और जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों से तेज बुखार या अन्य लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराने की अपील की गई है। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कल समीक्षा बैठक की। उन्होंने जसीडीह, देवघर और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर्स की संख्या बढ़ाने, अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने तथा सीसीटीवी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने संभावित भगदड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार करने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR News अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में भाजपा महानगर ने संविधान हत्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया।
3: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की मूल भावना की हत्या करने का अपराध था। तो एक ऐसा अपराध जिसको हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखें, और फिर किसी भी शासक को इस देश में ऐसा करने की हिम्मत ना हो, इस दृष्टि से आपातकाल के काला अध्याय का स्मरण करने का ये कार्यक्रम आयोजित है।
0: धनबाद जिले में अवैध खनन और नदियों के किनारे ओवर बर्डन यानी ओबी डंपिंग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन ने संयुक्त टीम को पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
4: दो तीन नदियां हैं जिस पर लगातार शिकायतें आ रही थी, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, तो वो सब नदियों का थरो इंस्पेक्शन के लिए एक टीम का गठन किया गया है कि अलोंग द लाइंस ऑफ द रिवर किसी भी तरह की ओबी डंपिंग या माइनिंग किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो, और ऐसा होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई संबंधित एरिया के हो।
0: केंद्र प्रायोजित स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को एक साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर 1 जुलाई को राज्य स्तरीय समिति की बैठक आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में पुलिस मुख्यालय से एडीजीपी, आईजी अभियान सह नोडल पदाधिकारी, एलडब्ल्यूईयूई, आईजी प्रोविजन, वित्त विभाग के सचिव और झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता शामिल होंगे। झारखंड में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत 20 जिलों में आंधी, तेज हवा और गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 जून से 1 जुलाई तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। फिलहाल राज्य में सामान्य से 62% कम वर्षा दर्ज की गई है। रांची के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की बालिका फुटबॉल टीम ने 65वीं सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की कांके प्रखंड स्तरीय अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल, अनुशासित प्रदर्शन और बेहतरीन टीम भावना का परिचय दिया। खिलाड़ियों ने हर मुकाबले में आत्मविश्वास और उत्कृष्ट तालमेल का प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि अपने नाम की। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अटकलों पर विराम, चंपत राय और मिश्र का ट्रस्ट से इस्तीफा। हिंदुस्तान ने लिखा है, चंपत राय समेत 2 ने पद छोड़ा। प्रभात खबर की सुर्खी है, नीट के बाद महाराष्ट्र टीईटी का भी पेपर लीक। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईरान का बहरीन में अमेरिका नौसेना बेस पर ड्रोन हमला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार करेंगे साझा। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, झारखंड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1,73,00,000 लोग हुए लाभान्वित। राज्य में आज से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 61,00,000 से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। झारखंड में तेज होगी मॉनसून की गतिविधि, रांची समेत 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियन की विजेता बनी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आपके साथ है आपका दोस्त विनोद। बने रहे हमारे साथ, हमारे कार्यक्रमों के साथ।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
1: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडु तिहवु हारु तिहवु,
1: हाडु तिहवु हारु तिहवु,
0: कडल करेय खग कुला,
1: कडल करेय खग कुला,
0: यनी तो मुगिला,
1: यनी तो मुगिला,
0: उद्द अगला,
1: उद्द अगला,
0: जी की दनी तू,
1: जी की दनी तू,
0: बांदड़ा,
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ? हाँ।
0: आगे का स्टैंजा है, बान लोक नगुव नाका,
1: बान लोक नगुव नाका,
0: हारो हक्की पालीगे,
1: हारो हक्की पालीगे,
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे,
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा, दूर दूर हारी हारी,
1: दूर दूर हारी हारी,
0: व्योम कानुआ बगे,
1: व्योम कानुआ बगे,
0: हसीव मरेसी,
1: हसीव मरेसी,
0: वांछे मेरेसी,
1: वांछे मेरेसी,
0: दिगंत सेरो लघु बगे,
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: हाँ, तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा।
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो,
1: याव नाडो यंथ काडो,
0: हारो आसे हक्कीगे,
1: हारो आसे हक्कीगे,
0: मुक्त गगन नूरु काल,
1: मुक्त गगन नूरु काल,
0: ईजो शक्ति रेक्केगे,
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी। हाँ? उसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ?
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तिश्र नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुवना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद हो गई है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: कन्नड़ भाषा में अभी आप सुन रहे थे संवेद गान शिक्षा, गीतकार थे बीआर गीता। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे रसरंजन।

आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आप सुन सकेंगे 11 बजे से।

और आइए अब सुनते हैं रसरंजन कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म चंबल की कसम से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है खय्याम का, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का।

और आइए सुनते हैं फिल्म जंगली का यह गीत, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जंगली का गीत, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ फिल्म तपस्या का ये गीत, जिसे लिखा है MG हशमत ने, संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

0: दी। ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा। सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: और अब सुनते हैं फिल्म हीरो का गीत, लता मंगेशकर और मनर उदास का गाया हुआ। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: शहनाई, यह है फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफी के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है रवि का।
1: न झटको जुल्फ से।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म शहनाई के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ रसरंजन। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत, सुनते हैं श्री राणा झा द्वारा राग तोड़ी में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं कौशिक दास, हारमोनियम पर संचारी नाग।

आप सुन रहे थे श्री राणा झा द्वारा राग तोड़ी में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। तबले पर संगत कर रहे थे कौशिक दास और हारमोनियम पर संचाली नाग। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आप सुन सकेंगे 11 बजे से। 11:30 से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण।

0: आप सुनेंगे बाल सभा अब से बस थोड़ी देर में।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: और अब सुनते हैं बाल सभा। सूत्रधार हैं अवधेश कुमार और कविता, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडेय के।

0: जय हिंद बच्चों।
1: प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, है ना? और खुश हो भी क्यों ना, गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई और अब आप सभी की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश के कारण जिधर देखो हरियाली ही हरियाली दिख रही है, जो एक उमंग और प्रफुल्लित होने का प्रतीक भी है।
2: बच्चों, हरियाली केवल एक रंग नहीं है, बल्कि हरियाली धरती की मुस्कान और जीवन की धड़कन है। बच्चों, सुबह जब आप स्कूल जाते हैं या शाम को खेल के मैदान, आप अपने चारों तरफ हरे भरे पेड़ देखते होंगे, आप मखमली घास देखते हैं। आपने महसूस किया होगा कि इन्हें देखने पर अनोखी शांति मिलती है, मन ताजगी से भर जाता है और प्रकृति ने हमें हरियाली का एक अनमोल उपहार दिया है बच्चों, जो हमारे जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाता है।
1: हाँ बच्चों, भैया ने कितनी सही बात कही, पेड़ पौधों से ही तो हरियाली बनती है। ये पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र होते हैं, ये हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं, चिलचिलाती धूप में ठंडी छांव देते हैं, और हरियाली के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रखती है, बारिश लाने में मदद भी करती है, पर आज के समय में कंक्रीट के जंगलों के बीच हमारी असली हरियाली खोती जा रही है। अगर हमें आप बच्चों के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखना है तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हाँ, सही कहा आपने, हमें इस हरियाली को बचाना होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? हम सभी को मिलकर पेड़ पौधे लगाना होगा, उन्हें बचाने के लिए संकल्प लेना होगा, तभी हमारा जीवन भी खुशहाल बना रहेगा।
2: हाँ बच्चों, जीवन के खुशहाली के लिए जरूरी है पेड़ पौधों का होना, है ना? क्योंकि अगर पेड़ पौधे रहेंगे तभी हमारा जीवन रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें मिलती है प्राणवायु, है ना? तो और इसके साथ साथ बच्चों, हमारे जीवन में शिक्षा का भी बहुत महत्व है, है ना? बच्चों, आप सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नई नई बातें सीखते हैं और पढ़ाई के उम्र में शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन शिक्षा से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, शिक्षा से हम अपने सपनों को पूरा भी करते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए संस्कार भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। संस्कार हमें अच्छे व्यवहार सिखाती है, जैसे बड़ों की बातें मानना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, समय का पालन करना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना और सभी के साथ प्रेम से रहना, है ना? और इसके साथ साथ सच बोलना और अपने काम को ईमानदारी से करना, है ना? तो अच्छे आचरण रखना चाहिए। जिस किसी को भी अगर मदद की जरूरत हो तो उनकी हमें सहायता करनी चाहिए, पशुओं की देखभाल करनी चाहिए, पशुओं को किसी तरह का कोई भी कष्ट हमें नहीं पहुंचाना चाहिए।
1: बच्चों, हम मानव के जीवन में शिक्षा के माध्यम से हम डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पायलट बनते हैं या अपनी पसंद का कोई अच्छा पेशा चुनते हैं। शिक्षा हमें जीवन का मार्ग दिखाती है, वहीं शिक्षा और संस्कार दोनों किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में मदद करते हैं, उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, साथ में माता पिता, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तभी तो हम भी सम्मान पा सकेंगे, क्यों बच्चों?
2: तो बच्चों, बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए, क्यों दीदी?
1: हाँ बिल्कुल।
2: तो चलिए बच्चों को सुनाते हैं एक बाल गीत।

0: Nobody does it.
1: कैसा लगा बच्चों ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो हमें कुछ सुनाना चाहते हैं दीदी, तो चलिए बच्चों से भी सुन लेते हैं।
2: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम अमन कुमार गुप्ता है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको सवाली राम कविता सुनाने जा रहा हूँ। बबलू बस करते सवाल है, क्या उत्तर दे बुरा हाल है। बबलू 3 बरस के बच्चे, मगर अकेल के तनिक न कच्चे। नई चीज कोई दिख जाती, पूछे कैसे काम है। आती मिट्टी में सोंदापन क्यों है, मिर्चों में तीखापन क्यों है। मेघा जल बरसाते कैसे, इंद्रधनुष दिख जाते।
2: वाह, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। आप क्या सुनाएंगी? पहले तो आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम अन्विशा श्रीवास्तव है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ।

0: भाई ए हमने लड्डू
1: बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। आपका नाम क्या है?
2: दिए खा रहे थे, धन्यवाद। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं
1: आप क्या सुनाएंगी?
2: अपने दोस्तों को एक कविता सुनाना चाहूंगी। सूरज निकला, धूप खिल गई माँ, मुझको भूख लग गई, ची ची ची ची ची जी, कहाँ उड़ गई मम्मी जी, छोटी नन्ही चिड़िया हूँ, माँ तेरी मैं गुड़िया हूँ, जल्दी से अब आ जाओ, खाना मुझे खिला जाओ, चुपके से मैं सो जाऊंगी, चीची नहीं मचाऊंगी।
1: वाह, चीची नहीं मचाऊंगी। आप अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम ईशान भगत, मैं KGB में पढ़ता हूँ। अभी मैं आपको छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है तोता। नानी माँ ने

0: जाने कब करता आराम, नाम बताता मिट्टू राम। धन्यवाद।
1: आपका नाम क्या है बेटा?
2: पुलकित।
1: पुलकित, किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
2: सिक्स्थ।
1: आज आप अपने दोस्तों को क्या बताने जा रहे हैं, क्या सुनाने जा रहे हैं?
2: आज मैं आप लोगों को भारत के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ।
1: चलिए बताइए।
2: आज के फेमस गेम चेस का आविष्कार भारत में ही 6वीं शताब्दी में हुआ था। तब इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। जीरो का आविष्कार भी भारत में ही आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जिसमें पूरे वर्ल्ड से हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। कुतुब मीनार के पास स्थित आयरन पिलर पिछले 1600 सालों से बिना जंग लगे खड़ा है, जो इस बात का सबूत है कि इंडिया में टेक्निक्स कितनी हाईटेक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित कैलाशा टेम्पल 1200 साल पुराना है। ये मंदिर एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक यानी एक शिला मंदिर है। वाराणसी विश्व का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है। ये 5000 साल पुराना है। धन्यवाद।
1: वाह पुलकित ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अब हम बच्चों को क्या बतलाने वाले हैं, क्या जानकारी देने वाले हैं?
3: बच्चों को हम कुछ

0: जानकारी देना चाह रहे हैं, जिसमें बच्चों आपने भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक देखा होगा, बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं? देखिए भैया बच्चे कितने खुश हो रहे हैं और इनके पास इतनी सारी जानकारियां हैं जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। तो बच्चों राष्ट्रीय प्रतीक किसी देश की पहचान होते हैं और भारत ने भी अपने इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और आदर्शों को दर्शाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक चुना है। इन प्रतीक चिन्हों से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? ये प्रतीक चिन्ह हमें एकता, देशभक्ति सिखाते हैं। बच्चों जैसे आपने राष्ट्र ध्वज तिरंगे को देखा होगा, और अब तो एक महीने के बाद स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, हम अपनी स्वतंत्रता और एकता का राष्ट्र ध्वज को प्रतीक मानते हैं। तिरंगा हमें अपने देश पर गर्व करना सिखाता है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ क्या संदेश देता है बच्चों? हमारे देश का प्रतीक अशोक स्तंभ सत्य और न्याय का संदेश देता है। बच्चों हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्या आपने उसे देखा है? कहाँ देखा है? बहुत सही कहा, जू यानी चिड़ियाघर में आपने राष्ट्रीय पशु को देखा है, और ये राष्ट्रीय पशु बाघ शक्ति और साहस का प्रतीक है।
1: बच्चों मोर भारत की सुंदरता और समृद्ध संस्कृति की पहचान है। मोर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हाँ? और मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है, है ना? उसी प्रकार राष्ट्रीय फूल, आपको पता है हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है कमल। और बरगद जो है, बरगद का गाछ तो आपने देखा ही होगा पेड़, हाँ, बरगद का जो पेड़ है वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कहलाता है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? फल तो आप लोग रोज खाते हैं ना बच्चों? तो बताइए हमारे देश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? और अभी उसका मौसम भी है, आप लोग खूब खा भी रहे होंगे। हमारे देश का राष्ट्रीय फल है आम, है ना? और इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें नदियों की, तो हमारे देश का राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर, है ना?
0: बच्चों शक संवत आप जानते होंगे, शक संवत हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है। भारतीय रुपया हमारे देश का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है। इस तरह बच्चों राष्ट्रीय प्रतीक जितने भी होते हैं हमें अपनी विरासत का सम्मान करने और देश के जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख देते हैं।
1: तो बच्चों अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, तो जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका सम्मान हमें करना चाहिए, जैसा कि दीदी ने कहा, और हम सब उनका सम्मान करते भी हैं। और कुछ और जानकारी है बच्चों आपके लिए हमारे पास, और वो जानकारी क्या है दीदी?
0: वो जानकारी है भैया कि आसमान में जो चमकती हुई बिजली होती है इसका रहस्य हम जानेंगे, और अपने बच्चों को भी ये बताएंगे कि बारिश के मौसम में जिस तरह से आसमान में अचानक चमकती हुई बिजली, ये जो प्रकृति की अद्भुत घटना है और साथ में डराने वाली जो इसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ है, ये इसका रहस्य क्या है? हाँ बच्चों, आसमान में चमकती बिजली, बारिश और तेज गड़गड़ाहट, इन सभी से तो सभी को डर लगता होगा। क्या आपने कभी सोचा है ये बिजली आखिर क्यों चमकती है? कहीं बादल आपस में कोई खेल तो नहीं खेलते हैं?
1: तो बच्चों आपकी जिज्ञासा और विज्ञान की इस रोचक यात्रा में हम इसी मजेदार रहस्य की जानकारी आपको देने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आसमान में चमकने वाली बिजली कैसे बनती है और इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण छिपा है।
0: बच्चों बादलों के आपस में टकराने से उनमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। कुछ बादलों में धनात्मक और कुछ बादलों में ऋणात्मक आवेश जमा हो जाते हैं। जब इन आवेशों का अंतर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वे अचानक एक दूसरे की ओर प्रवाहित होते हैं। इस दौरान तेज प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे हम बिजली की चमक या तड़ित कहते हैं।
1: आपने देखा होगा बच्चों कि बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है और कुछ समय बाद गरज सुनाई पड़ती है, यानी आवाज सुनाई पड़ती है।

0: क्योंकि प्रकाश की गति जो है ना बच्चों, वो गति आवाज की गति से ज्यादा तेज है, इसलिए हमें प्रकाश जल्दी दिखाई देता है, और चूंकि आवाज की गति प्रकाश की गति से कम है इसलिए हमें बाद में सुनाई देती है, बाद में सुनाई देती है। बच्चों, ये आसमान में चमकती बिजली बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए गरज चमक के समय खुले मैदान में, पेड़ों के नीचे या ऊंचे स्थानों पर खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। और घर में भी आप रहें बच्चों, तो पांव में चप्पल जरूर होना चाहिए, है ना? और जब इस तरह से मौसम हो, बादल गरज रहे हो, बिजली कड़क रही है, तो अपने घर के खिड़की दरवाजे भी बंद कर लेने चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी जानकारी? जानकारी अच्छी थी। तो बच्चों, अब कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, तो चलिए बच्चों को दीदी सुनवाते हैं एक बाल कथा, टुनटुन और बुलबुल, और जिसके लेखक हैं श्री नरेंद्र नाथ शर्मा।
1: पिछले साल पूजा के समय आइनू को पिता ने एक गुड़िया ला दी थी। इसे पाकर आइनू को खुशी की हद नहीं थी। उसे वह हर वक्त गोद में लिए रहती, लोरियां सुनाती और उसके रूप गुण बखानती। इसके बाल घुंघराले हैं, इसकी नाक अपनी माँ की सी है आदि। वह हमेशा एक बिल्ली का बच्चा गोद में और एक फूल हाथ में लिए रहती थी।
0: आइनू का इस गुड़िया के प्रति बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन जब उसने अपनी सहेली मसमी की गुड़िया देखी तो उसकी धारणा बदल गई। समझने लगी कि उसकी गुड़िया बिल्कुल अच्छी नहीं है। बैठा देने से उसकी गुड़िया बैठ नहीं सकती, हाथ पैर भी वो इधर उधर नहीं कर सकती।
1: एक दिन आइनू अपने पिताजी के पास जाकर रोने लगी कि उसे भी हाथ पैर चलाने वाली एक गुड़िया चाहिए, ठीक वैसे ही जैसा मसमी के पिता ने अपनी बेटी को लाकर दी है।
0: आइनू अपने पिता की लाडली बिटिया है, अपनी बेटी को भला वो दुखी कैसे कर सकते हैं। उसी दिन गुड़िया बेटी को ला दी। अब इस पुतले को आइनू कभी छोड़ती ही नहीं, वो तो आइनू की बहन है। आइनू ने उसका नाम टुनटुन रखा। सोते समय भी आइनू टुनटुन को तकिए पर सुलाए रखती है। उसके बिना आइनू को रात को नींद नहीं आती है। सुबह बिस्तर से उठते ही ये अपने साथ साथ टुनटुन का मुंह हाथ भी धुला देती है। कभी कभी बिस्तर पर छोड़ कर आती है। थोड़ी देर बाद जाकर गुस्सा दिखाती है। गुस्सा दिखाती हुई टुनटुन को जगाने लगती है। ए, उठ उठ उठ, कितना सोती है, सुबह जो हो गया मालूम नहीं है क्या? पढ़ने लिखने का काम कब करेगी?
1: खाने की मेज पर जाकर वह अपने लिए और टुनटुन के लिए सुबह का खाना मांगती है। खाना आ जाने से खुद भी खाती है और टुनटुन के मुंह में भी घुसेड़ देती है। भोजन के समय अपनी माँ से कहती है, माँ टुनटुन खाना नहीं खाती, कोई बीमारी है क्या माँ इसे?
0: सुबह और शाम टुनटुन को वो घुमाने ले जाती है। टुनटुन को लेकर मीनू के साथ वो दुल्हा दुल्हन का खेल भी खेलती है।
1: मीनू आइनू की सहेली है, वह बरुआ की लड़की है। कुछ दिन पहले मीनू को एक बहन मिली है, उसका नाम बुलबुल है। अब बुलबुल 4 महीने की हो गई है, वह अब हंसती है। आइनू उसके पास से दूर हटना नहीं चाहती, कभी कभी उसे गोद में उठा लेना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे कैसे गोद में देती है, इतनी छोटी सी बच्ची है, कहीं गिरा देगी तो?
0: लेकिन आइनू कहाँ छोड़ने वाली थी, अपनी माँ को बार बार तंग करती, आखिर एक दिन उसे गोद में लेकर ही मानी। एक बार जब गोद में लिया तो आगे क्या बात। आइनू रोज अपने घर से चुपचाप बुलबुल के पास चली जाती, कभी उसे गोद में उठाकर रास्ते तक लाती। इसमें मीनू भी शामिल रहती, माँ को इसका पता भी न लगता। कभी कभी उसे याद आती, वो तो पहले टुनटुन को भी इसी तरह प्यार करती थी।
1: बुलबुल उससे बहुत अच्छी है, बुलबुल हंस सकती है, टुनटुन नहीं। हाँ, टुनटुन भी बहुत बुरी नहीं थी। टुनटुन को लेकर वह खेलती थी, घूमती थी, उसे इधर उधर की चीजें दिखाती थी। एक दिन उसने टुनटुन को अपनी मेज के नीचे पड़ी हुई देखा, उसे बुरा लगा, उठा लेने का मन भी करता था, लेकिन गोद में तो बुलबुल थी, उसे उठा नहीं सकी। वह बुलबुल को लेकर बाग में घूमने चली गई और टुनटुन को भूल गई।
2: रात को आइनू ने सपने में देखा कि टुनटुन मेज के नीचे पड़ी हुई है। आइनू को उधर जाते देख हाथ पैर नचा नचा कर कहा, मैं यहां पड़ी हूं, तुम मुझे क्यों नहीं उठा लेती, मुझे क्यों प्यार नहीं करती।
1: आइनू नींद में ही चिल्ला उठी, मेरी प्यारी मैं तुझे जरूर उठा लूंगी। कह बिस्तर से झटपट उठ बैठी और खटिया के नीचे कुछ खोजने लगी। उसके बाद मेज के नीचे देखने लगी और गुड़िया को झटपट छाती से लगाकर बार बार चूमने लगी।
2: कुछ दिन बाद आइनू ने उस गुड़िया को बुलबुल को दे दिया। आजकल वो बुलबुल के हाथ में टुनटुन को देकर उसे घुमाने ले जाती। बुलबुल टुनटुन उसके सामने एक से बन गए हैं।
0: हाँ तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी कहानी थी ना? और अब आपको मालूम ही है कि हर हफ्ते हम आपको एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज हम कौन से प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में अपने बच्चों को जानकारी दे रहे हैं दीदी?
1: आज के प्रेरक व्यक्तित्व हैं बच्चों डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। बच्चों क्या आप बता सकते हैं भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? बहुत सही बताया आपने, 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती मनाई जाती है। कौन थे बच्चों डॉक्टर विधान चंद्र रॉय? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पेशे से एक वरिष्ठ चिकित्सक, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना में हुआ था।
0: बच्चों डॉक्टर रॉय एक उत्कृष्ट डॉक्टर होने के साथ साथ एक शिक्षाविद और आधुनिक बंगाल के निर्माता थे। उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने 1961 को उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया। वे अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद मरीजों को जीवन के अंतिम दिन तक मुफ्त इलाज जारी रखा।
1: बच्चों डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को उनके त्याग और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और अपने घर को एक नर्सिंग होम और अस्पताल बनाने के लिए वसीयत कर दिया था। समय के वे इतने पक्के थे कि लोग उनकी दिनचर्या देखकर अपनी घड़ियां मिलाते थे। उनका मानना था कि सादा जीवन, उच्च विचार और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
0: तो बच्चों ऐसे थे डॉक्टर विधान चंद्र राय। और दीदी अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है, तो बच्चों से अब हमें विदा लेनी होगी। तो चलते चलते हम आपको बता दें बच्चों कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव पांडे की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ कहानियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
3: जय हिंद बच्चों।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आप सुन सकेंगे 11 बजे से और 11:30 पर आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम का संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण।

मित्रों, रक्तदान महादान है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने पर रक्तदान कर सकता है और अपने जीवन काल में न जाने कितनी जिंदगियां बचा सकता है। तो रक्तदान जरूर करें।

सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख है तो इतराना नहीं और दुख है तो घबराना नहीं।

546 दशमलव 4.5 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और 100.5 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार रांची।

0: सुबह की इस सुनहरी बेला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम जोहार रांची में। मैं हूं आपके साथ अर्चना
1: और मैं हूं विनोद। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एक नई सुबह की नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और ढेर सारी सकारात्मकता।
0: तो उठ जाइए, मुस्कुराइए और इस खूबसूरत सुबह का स्वागत कीजिए पूरे उत्साह के साथ। कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और प्रभु स्मरण से हो तो पूरा दिन सुख शांति और ऊर्जा से भर जाता है।
1: सुबह का समय केवल एक नई शुरुआत नहीं बल्कि अपने मन को शांत करने, आत्मा को सुकून देने और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे सुंदर समय होता है।
0: जब उगते सूरज की पहली किरण धरती के को रोशन करती है, पक्षियों की मधुर चहचहाट वातावरण को संगीत से भर देती है और ठंडी हवाएं मन को छूती है, तब ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं हमें एक नया संदेश दे रही हो कि हर नया दिन नई उम्मीद लेकर आता है।
1: और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोहार रांची में हम हर सुबह कोशिश करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भक्ति, सुकून और अच्छे विचारों के साथ हो, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल ईश्वर के नाम भी होने चाहिए, कुछ पल अपने मन की शांति के लिए भी होनी चाहिए।
0: तो चाहे आप घर में सुबह की तैयारी कर रहे हों, ऑफिस जाने की जल्दी में हों, पढ़ाई में जुटे हों या फिर चाय की प्याली के साथ इस सुबह का आनंद ले रहे हों, हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ पल आपके मन को पूरी तरह शांति और भक्ति से भर दे।
1: भजन केवल संगीत नहीं होते, ये हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं का सुंदर संगम होते हैं। भजन सुनते सुनते मन शांत होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और भीतर एक नई शक्ति का एहसास होता है।
0: तो आइए इस पावन सुबह में हम सब मिलकर प्रभु का स्मरण करें, अपने मन की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए दूर रखें और खुद को भक्ति के रंग में रंग लें।

0: वह कितना स्वर मन को शांति देने वाला भजन था। उम्मीद है भक्ति के इन मधुर सुरों ने आपके मन को सुकून और दिन को नई ऊर्जा से भर दिया होगा।
1: बिल्कुल, और अब इसी सुहानी सुबह में आगे बढ़ते हैं एक और जरूरी जानकारी की ओर। घर से बाहर निकलने से पहले जान लेते हैं रांची और आसपास के इलाकों के मौसम का हाल, ताकि आप दिन और भी आपका दिन जो है और भी बेहतर तरीके से बीते।
0: बिल्कुल, जून का अंतिम सप्ताह अपने साथ मानसून की आहट लेकर आया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून से झारखंड में मानसून के और अधिक सक्रिय होने की संभावना

0: है। रांची सहित कई जिलों में बादलों की आवाजाही, गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं।
1: बिल्कुल, आज ही से मौसम जो है सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है, तो वो तो सक्रिय दिख भी रहा है। अगर तापमान की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोपहर के समय उमस महसूस हो सकती है, लेकिन बादलों और बारिश के कारण मौसम में राहत मिलने की उम्मीद भी है।
0: मौसम पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो राज्य के कई क्षेत्रों में सुबह से हल्के बादल देखे जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा बादल घिरेंगे, दोपहर या शाम में हल्की बारिश भी हो सकती है।
1: और ऐसे मौसम में कुछ सावधानियां भी जरूरी है। यदि आपको घर से बाहर निकलना है तो छाता या रेनकोट साथ रखें। गरज चमक के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। और वाहन चलाते समय सड़क पर फिसलन भरी हो सकती है, इसलिए गति नियंत्रित रखें।
0: बिल्कुल, बारिश का मौसम अपने साथ कई खुशियां लेकर भी आता है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, ठंडी हवाएं और हरियाली मन को सुकून देती है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है। बाहर का खुला या अस्वच्छ भोजन खाने से बचें, साफ पानी पिएं और भीग जाने पर जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहन लें।
1: बिल्कुल विनोद, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 28 जून यानी आज के दिन रांची में बादलों का डेरा, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना और मौसम में अच्छी राहत मिलने के आसार हैं। तो मौसम का आनंद लें, लेकिन सतर्कता भी साथ में बनाए रखें। और चलिए एक खूबसूरत सा गाना अपने श्रोताओं के साथ हम भी सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: विनोद, मौसम की तो बातें हो गई, क्यों ना आज के दिन के इतिहास के विषय में भी कुछ बातें कर ली जाए। आज के दिन क्या क्या घटित हुई है देश दुनिया में, तो बताते हैं कि 28 जून, यानी 28 जून का जो इतिहास है उसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और कुछ बड़ी घटनाएं भी हैं जो कि बहुत ही खास है। और इस दिन दुनिया भर में और कई अनोखे महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए जाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंस की हत्या इसी दिन हुई थी, जो पहले विश्व युद्ध का कारण बनी।
1: और अगर 1838 की बात करें तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को आज के ही दिन ताज पहनाया गया था, और 1846 में आज के ही दिन संगीत वाद्य यंत्र सेक्सोफोन को पेटेंट कराया गया था, यानी कि 28 जून को गिटार का आविष्कार हुआ। अगर 1919 की बात करें तो आज के ही दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था।
0: और सन 2004 की बात करें तो अमेरिकी गठबंधन ने इराक की अंतरिम सरकार को संप्रभुता सौंपी, और 2005 में रूस द्वारा ईरान के लिए 6 परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा हुई थी।
1: और आज के ही दिन राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। बीमा के महत्व को समझने के लिए यह दिन मनाया जाता है।
0: बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय बॉडी पियर्सिंग दिवस शारीरिक गहनों और कला को समर्पित है। ये दिन भी आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्राचीन काल से चली आ रही शरीर छिदवाने की कला का सम्मान करना।
1: बिल्कुल।
0: और कैप्स लॉक दिवस कंप्यूटर पर केवल बड़े अक्षरों में टाइप नहीं करने के लिए या बार बार कैप्स लॉक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक करना भी सिखाता है यह आज का दिन। और साथ ही राष्ट्रीय टेपियोका दिवस, यानी कि साबुदाने या साबुदाने से बनी चीजों को खाने का दिन के रूप में मनाया जाता है। आपको साबुदाना पसंद है विनोद?
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसके तो अगर देखा जाए तो कई तरह के उसके व्यंजन बनते हैं
0: और बहुत टेस्टी स्वादिष्ट भी होते हैं। तो आज तो मेरा मन हो ही रहा है कि जाके आज घर में जरूर मैं साबुदाने का कोई ना कोई एक डिश तो बनाऊंगी।
1: बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध हस्तियों के अगर जन्म की बात करें तो आज एलोन मस्क का आज ही के दिन जन्म हुआ था, जो कि प्रसिद्ध टेक कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं। 1971 में जन्म हुआ था आज ही के दिन। और शिव प्रसाद गुप्ता, जो कि हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उनका भी जन्म आज के ही दिन हुआ था।
0: बिल्कुल। और 1921 की बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा का भी जन्म आज ही के दिन हुआ है 1976 ईस्वी में। और भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु का जन्म भी आज ही के दिन 1995 ईस्वी में हुआ है।

0: इस खूबसूरत गीत के साथ अब धीरे धीरे वक्त आ पहुंचा है अपने श्रोताओं से विदा लेने का। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को आज का ये सफ़र बहुत खूबसूरत लगा होगा और उनके चेहरे पे मुस्कान भी आई होगी, साथ ही नया ऊर्जा भी देकर गया होगा। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हर सुबह अपने श्रोताओं के लिए कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ प्रेरणादायक लेकर आएं।
1: बिल्कुल, ज़िंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी कुछ पल खुद के लिए निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। सुबह की ताज़ी हवा, अपनों की मुस्कान, अच्छे विचार और मधुर संगीत, यही छोटी छोटी बातें जीवन को खूबसूरत बनाती है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को, परिवार और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, जिंदगी के हर छोटे पल को खुलकर जीते रहिए।
1: नमस्कार,
0: जोहार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, जिसका सीधा प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे समापन तक। तो आइए आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है।

लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया ना किड बैग।
6: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप

चिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर
दो

उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल

खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है।
दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था

कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से

0: पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतम वर्षस्य अर्धवर्षम् प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेऽपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र आईएनएस दूनागिरि, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमानन क्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि चत्वारिंशत् संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतनशक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भरभारतस्य च संकल्पः अपि सुदृढः भवति।

0: नमस्कार बहनों, रोजाना की तरह हम से हाजिर हैं गृह लक्ष्मी कार्यक्रम को लेकर। मैं महजबीन और हमारे साथ कार्यक्रम में एक और हमारी सखी हैं रानी।
1: बहनों स्वीकार कीजिए मेरा भी प्रेम भरा नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आशा है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी, विशेषकर आज क्योंकि आज है रविवार। सभी को कुछ न कुछ काम करने हैं क्योंकि रविवार को किसी की शॉपिंग होती है, किसी का कहीं घूमने का प्लान है, तो किसी का अपनों से मिलने की चाह। आप सब ने भी तो आज अपने लिए कुछ न कुछ जरूर सोच रखा होगा, है ना महजबीन?
0: हाँ बिल्कुल सही कहा रानी तुमने, इससे सप्ताह का सभी को इंतजार रहता है।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस दिन नींद भी पूरी होती है और कहीं ना कहीं सपने भी।
0: मिले भी मुझे अगर कोई शाम ये फुर्सत की, मैं क्या कहूँ कौन हूँ, मैं सोचूंगा इसके बारे में।
1: हाँ सच में आज हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बारे में ख्याल ही नहीं रहता, हमेशा भाग दौड़ लगी रहती है। लेकिन बहनों जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगी तो जिंदगी भर यही अफसोस होगा कि काश मैंने अपने लिए कुछ क्यों नहीं किया। बहनों खुद को तरोताजा करने और मानसिक शांति के लिए अपने इस बिजी शेड्यूल से खुद को समय दे, बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप चाहें तो अपना सकती हैं, क्यों?
0: और सबसे बड़ी बात यह है ना कि रानी हमें सबसे पहले सप्ताहांत में खुद को डिजिटल मीडिया से दूर रखना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, आगे की क्या प्लानिंग है, चाहे वो कविता के रूप में आप लिखें, उसे उभारें, कहानी लिखें या फिर कोई नॉवेल पढ़ें, या फिर आप में अगर कोई और प्रतिभा है, गुण है, तो उसे पहचानने की कोशिश करें और उसे निखारें और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। और ये भी है ना रानी,
1: हाँ,
0: कि आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो समाज में एक मैसेज भी जाएगा।
1: बिल्कुल बहनों, जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और हम अपने काम भी और अच्छे से कर पाते हैं। खुद को थोड़ा समय देना कोई स्वार्थ नहीं है बल्कि ये आपकी सेहत और खुशी दोनों

0: के लिए बेहद जरूरी है।
1: और जिंदगी की उलझनों को हम करें बाय बाय और वो काम पर ध्यान दें जहां आपने अपनी पहचान को खो दिया था, यानी उस सप्ताह में एक दिन अपने लिए खुद को निखारने के लिए निकालें, चाहे वो किसी रूप में भी हो। अफसोस ना हो कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, फुर्सत कहाँ है किसी को किसी का हाल पूछने की।
0: हाँ बहनों, इसलिए तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको नई नई जानकारियाँ देते हैं और कुछ ऐसे मेहमान से मिलवाते हैं जिनसे मिलकर आप में उत्साह जागे और आप भी उनसे इंस्पायर हों। हमारे कार्यक्रम का यही मकसद रहता है कि आप अपने उन फुर्सत के पल को सप्ताहांत में खोज निकालिए और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करिए।
1: हाँ, और रानी, हम यहाँ बातें कर रहे हैं सप्ताहांत में होने वाले बात का, जिस तरह से आपको काम करना है, क्या प्लानिंग करनी है, बहुत सारी बातें हैं और सुकून के लम्हे, तो क्यों ना सुकून एक चीज़ में और भी मिलती है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत जो लेकर आए हैं।

0: ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
0: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
5: हाँ, और बहनों, अब समय है आपको एक भेंट वार्ता सुनवाने का। बदलता फैशन और बदलते जमाने के साथ किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इस पर बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला और हमारी आज की मेहमान है आस्था किरण, फैशन डिजाइनर। लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता।
6: है सुंदरता केवल चेहरे की नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और अपनी पहचान की भी होती है। और जब यही आत्मविश्वास हमारे पहनावे में झलकता है तो वो केवल फैशन नहीं रह जाता, बल्कि हमारी सोच और पहचान का परिचय बन जाता है। समय के साथ हमारी जीवन शैली, पसंद नापसंद और फैशन के मायने लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि बदलते फैशन का हमारे जीवन, हमारी सोच और हमारी सांस्कृतिक पहचान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। बदलता फैशन, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं विशेष अतिथि, फैशन डिजाइनर और फैशन एजुकेटर आस्था किरण जी। नमस्कार आस्था किरण जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
7: नमस्कार आपको भी और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
6: जी आस्था जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फैशन क्या है, क्या फैशन केवल कपड़ों तक सीमित है या इससे कहीं ज्यादा है?
7: ये फैशन के बारे में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आज फैशन को लोग समझते हैं कि वो सिर्फ कपड़ों तक सीमित है, पर मेरे विचार से ऐसा नहीं है। फैशन सिर्फ पहनावा ही नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बोल सकते हैं, व्यक्तित्व बोल सकते हैं, क्योंकि फैशन ये बताता है, ये अवसर देता है कि हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, या फिर अगर आपको कोई देखे या हमें कोई देखे तो वो समझे कि उसका व्यक्तित्व उसके कपड़ों से, उसके पूरे वेशभूषा से कैसे परिलक्षित हो रही है। संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय फैशन देता है, ना सिर्फ कपड़ों के माध्यम से ही।
6: बिल्कुल, यानी फैशन सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं बल्कि सोच और व्यक्तित्व का भी हिस्सा है।
7: जी बिल्कुल बिल्कुल।
6: अब अगर बदलाव की बात करें तो समय के साथ फैशन में लगातार बदलाव आते रहते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है?
7: जी हाँ, ये फैशन बदलते हुए परिवेश में हमेशा नएपन के साथ आता है। आप देखेंगे कि हमारे चारों तरफ, जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस संस्कृति में पले बढ़े होते हैं, हमारी जो आर्थिक स्थितियां होती हैं, जैसे कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई रिच पीपल है, तो सभी लोगों का अपना एक दायरा होता है और फैशन हर दायरे में अपने हिसाब से फिट होता है। मतलब मेरा कहना ये है कि फैशन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम आज क्या पहन रहे या कल क्या पहन रहे, पर इसमें लगातार बदलाव हमने एक्सेप्ट की है, हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस है कि हर दिन हम नई नई चीजों को, नई नई रचनात्मक चीजों को एक्सेप्ट करें और उन सब चीजों को हम अपने फैशन में, यानी कि अपने व्यक्तित्व में, अपने पहनावे में, अपने सौंदर्य में, अपने आभूषणों में ऐड करते रहे, और हर समय कुछ नएपन के साथ सभी लोग आना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे दिखे, तो एक बदलाव हमेशा बना रहता है। बदलाव हमेशा खूबसूरती की तरफ बढ़ता है, ना ही सिर्फ एक स्टैग्नेंट होकर रह जाता है। तो हमेशा नई पीढ़ी कुछ अलग अलग चीजें लेकर आती है और जिसको हम लोग अपने अंदर आत्मसात करते हैं, तो ये एक मुख्य कारण है कि फैशन लगातार बदलता रहता है और जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते रहते हैं।
6: बिल्कुल, समय बदलता है तो पसंद और फैशन भी बदलते हैं, लेकिन आज इन बदलावों को तेज करने में एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत की भी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज सोशल मीडिया, फिल्में और सेलिब्रिटीज फैशन को किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं। क्या इसका असर हमेशा सकारात्मक होता है या कभी कभी लोगों पर दबाव भी बनता है?

0: यकीनन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, आप देखते होंगे कि कुछ सालों पहले जैसे आप या मैं जब हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में होंगे तो
1: जी
0: हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं था, पर आज हर समय सोशल मीडिया में ही लोग बने रहते हैं। फिल्में या सेलिब्रिटीज की जो फैशन होती है, वो जितनी भी चीजें पहनते हैं या जो भी स्टाइलिंग करते हैं, पहले के जमाने में हमारे पास वो किताबों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से आते थे, परंतु आज किसी सेलिब्रिटी ने कुछ अच्छी डिजाइनिंग या स्टाइलिंग की, या कोई अच्छी फिल्म आ गई, या कोई सर सोशल इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर कुछ अच्छा पहन करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके एक क्लिक पे आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। मतलब हमारे बीच, हमारे ऊपर सोशल मीडिया का इतना ज्यादा प्रभाव आज के डेट में है कि हर कोई कहीं भी मिलान या इटली में बैठा हुआ जो फैशन ब्लॉगर है या फैशन इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई अच्छा ड्रेस बनाता है तो वो विद इन अ सेकेंड आपको रांची झारखंड में बैठे हुए अपने घर में आपके टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे नजर आने लगता है, और आप उससे प्रभावित होकर के अपने फैशन सेंस में, अपने आप में वो बदलाव लाने की कोशिश करने लगते हैं। और आपने सही बोला कि ये सिर्फ सकारात्मक ही नहीं होता है, बहुत बार और ज्यादातर मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद फैशन डिजाइनिंग बैकग्राउंड से रही हूँ और लगातार मैं इन चीजों को देख रही हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि एक दबाव हमेशा इसलिए बना रहता है कि लोगों को हर वक्त चाहते हैं कि नई चीजों के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट हो। वैल्यू ऑफ मनी जो कहते हैं ना, जो
1: जी
0: किसी भी चीज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फैशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम लोग बात करते हैं या वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज आप किसी भी फंक्शन में, किसी भी पार्टीज में या किसी भी जगह जाना चाहेंगे तो आप अपने ड्रेसिंग सेंस को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, है ना? और ये रिपीट नहीं करने का एक बहुत बड़ा दबाव हमारे ऊपर होता है कि अरे हम लोगों ने तो कल ही वो कपड़ा पहना था, अरे हमने तो फैशन स्टाइल कल ही करी थी, तो हम लोग फिर कल क्या करें। तो कहीं ना कहीं ये मेंटल प्रेशर बना रहता है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये दबाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका एक बेटर स्वरूप भी है।
1: जी
0: जितना ज्यादा दबाव होगा या जितनी जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, उतने ज्यादा मार्केट का विस्तार होगा। मतलब क्या कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा व्यापारिक मंच मिल रहा है, जिसमें कि हम लोग फैशन डिजाइनिंग के तरफ या फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़े। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सभी लोग स्वरोजगार पे डिपेंड करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक बहुत बड़ा मार्केट भी क्रिएट होता है। तो दोनों ही पक्ष हैं।
1: बिल्कुल, लोग अक्सर हर नया ट्रेंड अपनाने की कोशिश करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हर ट्रेंड अपनाना सही है या व्यक्ति को अपनी उम्र, सुविधा और व्यक्तित्व के अनुसार चुनाव करना चाहिए।
0: जी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा आपको, फैशन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए बराबर और सभी के लिए एक्सेप्टेंस एक समान हो, है ना? बस हमें फैशन की दौड़ में लगे रहने के कारण हम लोग कुछ भी पहनना चाहते हैं जो आज मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, शारीरिक बनावट अलग होती है, और जहां तक मैंने बोला कि ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बहुत मैटर करता है, सोसाइटी मैटर करता है, संस्कृति, कल्चर, सभी कुछ मैटर करता है, जिसको देखते हुए ही फैशन को अपनाना चाहिए। यानी कि अपने व्यक्तित्व को समझते हुए, अपने व्यक्तित्व में जिससे निखार आए, उन चीजों को ही अपने फैशन में एक्सेप्ट करना चाहिए।
1: आजकल सस्टेनेबल फैशन की काफी चर्चा हो रही है, ये क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है?
0: आज आप देख रहे होंगे हमारे चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की जाती है। सस्टेनेबल फैशन इससे भी निकल कर आता है कि अगर हम लोग कुछ इस तरीके के कपड़ों का, इस तरीके के परिधानों का निर्माण करें जो प्राकृतिक हो, है ना? प्राकृतिक मतलब हस्तशिल्प, स्थानीय हस्तशिल्प का उसमें उपयोग हो, जो फैक्ट्रीज हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस्ड केमिकल प्रोसीजर के बाद बनाए जाने वाले फैब्रिक्स, कपड़े हो, उन सब से हम लोग बचाव करें। तो सस्टेनेबल फैशन का एक बहुत बड़ा महत्व ये होना चाहिए कि हम जिन भी कपड़ों का उत्पाद करें उसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, जो भी

0: कपड़े हैं उसको हम लोग रीयूजेबल बनाने वाले होने चाहिए, ताकि हम लोग उन कपड़ों को रीयूज करके न्यू क्रिएट करके फैशन में उपयोग भी करें और साथ ही साथ सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट भी करें। जो हमारा कपड़ा है वो कहीं ना कहीं सिल्क, कॉटन, इन सब चीजों का ही ज्यादा बना हुआ हो, क्योंकि हमारा जो देश है वो सिल्क और कॉटन के लिए काफी नामी है और आप जानते हैं कि विश्व स्तरीय यहाँ पे इसका उत्पादन होता है, और इन सब चीजों को प्रमोट भी हमें करना चाहिए। सस्टेनेबल फैशन एक बहुत ही अच्छा मार्केट भी क्रिएट करेगा और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी हम लोग बच सकते हैं।
1: बिल्कुल। और बात जब हमारे देश की पहनावे की हो रही हो तो भारतीय पारंपरिक पहनावे की अपनी अलग पहचान होती है। बदलते फैशन के दौर में इसे कैसे सहेज कर रखा जा सकता है?
0: जी हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि हमारी भारतीय परिधान के विषय में हम लोग हमेशा जागरूक रहें और आने वाला समय भारत का है और भारत का होना है, इसलिए हम लोग हमेशा चाहेंगे कि अपने पारंपरिक परिधानों को, अपने पहनावों को, भारतीय पहचान को बनाए रखें। बदलता हुआ फैशन जरूर हम लोग देखते हैं, हमारे चारों तरफ है, हम लोग उसको फैशन को अपने साथ एक्सेप्ट भी करते हैं, पर उन चीजों में मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमें नहीं करना है कि हम अपनी भारतीय पहचान को ही खो दें। हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो इतिहास है, या कह सकते हैं कि जो विरासत है, ये सारी भारतीयता को कहीं ना कहीं शोभित करती है ना। हमारा फैशन, हमारा भारतीय फैशन तभी सुंदर लगेगा जब उसमें हम लोग देख सकेंगे कि वो आरामदायक फैशन हो, साथ ही साथ उसकी जो अपनी मर्यादा है, उसका जो अपना लुक है, वो सब भारतीयता को कहीं ना कहीं संबोधित करता हुआ नजर आए। और इन सब चीजों में हम लोगों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हमारे कल्चरल हेरिटेजेस हैं, जिसको कहते हैं हम लोग, वो हम लोग फैशन के इस दौर में बनाए रखें, बचाए रखें, और उस लेगेसी को लेकर के ही हम लोग फैशन वर्ल्ड में आगे बढ़े।
1: बिल्कुल। अब हमारा जो अगला सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के लिए फैशन और बजट दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसे में कम खर्चे में स्टाइलिश और स्मार्ट दिखने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: ये तो बात बिल्कुल पते की है। महिलाओं का एक ऐसा सेगमेंट है जो कि फैशन के दुनिया को या फैशन के मार्केट को हमेशा बनाए रखता है। आपके प्रश्न में ये है कि कम खर्च में और स्टाइलिश और स्मार्ट कैसे दिखें, तो मेरा मानना है कि अगर आप फैशनेबल होना चाहती हैं, स्टाइलिश और स्मार्ट भी दिखना चाहती हैं, साथ ही साथ आपका एक बजट भी होना चाहिए, तो बस सबसे अच्छा यही स्मार्ट विकल्प रहेगा कि मिक्स एंड मैच हैंडलूम और स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें और अच्छी फिटिंग पे अच्छा सुथरे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए सबके सामने आए।
1: बिल्कुल। आज की युवा पीढ़ी फैशन को लेकर काफी जागरूक है और उत्सुक भी। हम आपसे जानना
0: जी
1: चाहेंगे कि बदलते फैशन का युवाओं और महिलाओं के आत्मविश्वास और सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: फैशन का आत्मविश्वास पे बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम लोग कहीं पे भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन स्थिति में क्या बातें आती हैं? आती हैं कि हमारा पहनावा कैसा हो। जैसे अगर हम लोग किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा प्रोटोकॉल, हमारा जो स्टाइलिंग है वो उस मीटिंग या बैठक के अनुसार हो। अगर हम किसी शादी ब्याह के फंक्शन में जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम लोग वहां पे अपने आप को किस तरह से फैशनेबल और स्टाइलिश प्रेजेंट करें। तो जब हम लोग आत्मविश्वास की बात करते हैं तो आत्मविश्वास वहीं से निकल कर आता है कि अगर आप पहनावा, आपका जो प्रेजेंटेशन का ढंग है वो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप है कि नहीं, आपके एज ग्रुप के अनुरूप है कि नहीं, आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुरूप है कि नहीं, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। और जब आप इन सब चीजों के साथ एक बहुत ही अच्छे ढंग से एक अपने व्यक्तित्व को कपड़ों के माध्यम से, अपने हेयर स्टाइल, मेकअप, एसेसराइजिंग के माध्यम से जब सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा होता है और आप अपनी किसी भी चीज को, चाहे वो आप बात कर रहे हो या कहीं पे आप बैठे हो, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आएगा। हालांकि बाहरी रूप पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं भी देते हैं, क्योंकि बाहरी रूप क्या है कि वो आंतरिक सुंदरता को थोड़ा दबा देता है, परंतु आज के समय में मैं

0: देखती हूँ कि लोग इनर स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करते हैं, मींस आत्मविश्वास के साथ उनकी जो अपनी स्किल्स हैं, उनकी जो अपनी क्वालिटी है वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं. साथ ही साथ जो बाहरी आवरण है उसका एक बहुत अच्छा ब्लेंड करके सभी के सामने प्रस्तुत होते हैं. तो मेरे ख्याल से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए या आत्मविश्वास के साथ सबके सामने आने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व को और अपने इनर सोल को दोनों को बहुत अच्छे से समझकर अपने बाहरी पहनावे को या आप जो बाहर से अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं वो उन सब चीजों को ध्यान में रखें और तब किसी के सामने प्रस्तुत होएं या सबके सामने आप एज अ फैशनेबल आइकॉन या जो भी आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं उस व्यक्तित्व के अनुसार आप काम करें, तो उससे आपका आत्मविश्वास, आपका ज्ञान, आपका व्यवहार इनफैक्ट काफी संतुलित नजर आएगा.
1: बिल्कुल। चलते चलते हमारी श्रोता बहनों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें, खासकर युवाओं के लिए भी जो फैशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
0: बहनों के लिए तो और हमारे साथियों के लिए तो मैं कहूंगी कि फैशन को आप लोग जरूर अपनाएं, लेकिन आप अपने मौलिकता को कभी ना खोएं, है ना.
1: हाँ
0: आपके आत्मविश्वास, आपकी संस्कृति का सम्मान आप हमेशा करें. ट्रेंड बदलता रहता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेंड के साथ साथ अपना संस्कार भी बदल दें, है ना.
1: बिल्कुल
0: फैशनेबल तो बने रहना चाहिए पर अपने जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए. और दूसरा है कि युवाओं का आपने प्रश्न किया
1: जी।
0: कि युवाओं को क्या सलाह देना चाहती हूँ. फैशन को मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ग्लैमराइज ना करें, उसको एक प्रोफेशन के नजर से भी देखें, प्रोफेशनल क्रिएटिव करियर के रूप में भी देख सकते हैं.
1: जी
0: और उनकी जो रुचि और क्षमता है उसको भी पहचाने. तो आज के दौर में हम लोग कह सकते हैं कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. फैशन डिजाइनिंग का जो क्षेत्र है काफी विस्तृत क्षेत्र है. तो मेरा जो मुख्य संदेश यही है कि फैशन केवल पहनावा ही नहीं बल्कि आपकी पहचान, आपकी संस्कृति भी रहेगी. और आज के युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कार्य करने का बहुत बड़ा मौका भी है. तो युवा जो वर्ग है वो फैशन को ना सिर्फ ग्लैमर के रूप में देखें बल्कि एक बहुत बड़े व्यवसाय और आने वाले अपॉर्चुनिटी की तरह देखें.
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार आपने हमारे साथ साझा किए। आस्था किरण जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम में दिया, इस विषय पर इतनी बातें की, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आप सबों का.
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता बदलता फैशन। हमारी आज की मेहमान थी आस्था किरण, जो कि पेशे से फैशन डिजाइनर है, और इनसे हम बातें कर रही थी हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला। तो बहनों, लीजिए सुनिए एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: पहनो, चलते चलते हम आपको जानकारी देते हैं कि मेडिटेशन है क्या। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से मानसिक तनाव कम होता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। एकाग्रता और याददाश्त मजबूत होती है, रात में गहरी और बेहतर नींद भी आती है, तो हमें चाहिए कि मेडिटेशन की ओर आए।
1: बिल्कुल सही कहा मैं जबीन, नियमित ध्यान से तनाव का जो स्तर होता है ना बहनों, वो कम होता है, जिससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या में बहुत राहत मिलती है।
0: हाँ, और ये भी बात है कि आत्म जागरूकता भी जरूरी है, कि विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाना भी होता है, जिससे

0: कि बेवजह गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर काबू पाया जा सकता है। और हाँ बहनों, शारीरिक लाभ तो अनेक है जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। उच्च रक्तचाप नियंत्रित करता है। ध्यान करने से दिल की धड़कन शांत होती है जिससे कि ब्लड प्रेशर सामान्य करने में मदद मिलती है। हाँ एक बात और, जो कि अभी अनिद्रा की समस्या है उसे भी दूर करती है। तो बहनों इस ओर आप जरूर ध्यान दें। तो हम चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, और अब दे महजबीन
1: और रानी को जाने की अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।
3: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भारत भारती के अंतर्गत आंचलिक अंगिका मैथिली भाषा में। कलाकार है विजय भारती झा एवं साथी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आप सुनेंगे।

आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम लोक रंग में। खड़िया लोकगीत कलाकार हैं बिलियाना डुंगडुंग और साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत खड़िया लोकगीत। कलाकार थे बिलियाना डुंगडुंग और साथी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से क्रम से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanchodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous, from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. He noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. This time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations across the globe. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India topped the medal tally.
1: Vishwa Yogasan Championship ki bhi badi charcha hui. Isme Bharat ne kul 114 padak jeete. Inme 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: The Prime Minister also spoke about the importance of the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, which provides an insurance cover of 2 lakh rupees to a person's family in the event of an unfortunate death. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byabara in Rajgarh district of Madhya Pradesh who resolved to remove plastic waste scattered around the area. Gradually, this effort expanded and the collected plastic began to be converted into eco bricks. Today, these eco bricks are being used to beautify public spaces. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some other news, bilateral talks are underway between Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hermione, in Victoria, the capital city of Seychelles. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honour at the State House with President Hermione. Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Later, he will attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. The security situation in West Asia has deteriorated sharply after the fragile US-Iran ceasefire effectively collapsed.

0: the seventh straight match in that scoring streak. Messi came off the bench to score from a free kick in the 80th minute, extending his men's World Cup record to 19 goals. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा और विमानन क्षेत्र की उपलब्धियों का किया उल्लेख, कहा रक्षा विमानन और युग में बढ़ी भारत की वैश्विक पहचान। बालूघाटों की नीलामी नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार को हो रहा भारी राजस्व नुकसान। पोटका में ब्रेन मलेरिया से 3 बच्चों की मौत, 16 नए संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जेएसएससी ने जारी किया उत्पाद सिपाही भर्ती का मेडिकल शेड्यूल, 1 जुलाई से होगी 1941 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच। और थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर, रांची के कोच बबलू कुमार सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं।
3: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है।
3: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बढ़ते अवैध खनन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। चाईबासा में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन में संलिप्त लोगों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि बालूघाटों की नीलामी समय पर नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है।
4: राज्य में जिनकी सरकार, यानी जितनी भी प्रकार के खनिज, वो सब खनिजों की इसी प्रकार से चोरी हो रहा है। इन 6 वर्षों में 5-6 तो यहाँ आयरन ओर की खदानें जिनको ऑक्शन करना था, नहीं किया। शुरू में भारत सरकार को पत्र लिखा कि हम ही को खोदने की इजाजत दीजिए। इजाजत उनको नहीं मिली तो इलीगल तरीके से सब खुदवाई कर रहा है।
2: पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 नए संक्रमित मिले हैं। गंभीर मरीजों को जमशेदपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में जांच, उपचार और जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों से तेज बुखार या अन्य लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर रांची नगर निगम में स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि अब तक 14,444 स्ट्रीट वेंडर्स को लगभग 29,84,00,000 रुपए का ऋण दिया जा चुका है। पात्र लाभार्थियों को सांकेतिक ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। महापौर रोशनी खलखो ने योजना को छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की घोषणा की है। मेधा सूची में शामिल 1900

0: 41 अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच 1 से 14 जुलाई तक रांची के सदर अस्पताल में होगी। पहले दिन 150 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। मेडिकल जांच के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा, जिसके आधार पर आयोग अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सेंडल @AIR_News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची सहित पूरे झारखंड में आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इसके तहत जिले के 5,05,524 बच्चों को पोलियो रोधी वैक्सीन की दो बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान का शुभारंभ महापौर रोशनी खलखो, विधायक सीपी सिंह, सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार और NHM के अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पोलियो मुक्त भारत की उपलब्धि बनाए रखने के लिए हर बच्चे तक खुराक पहुंचना जरूरी है।
1: पोलियो दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है ताकि एक भी बच्चा इससे वंचित न रह जाए और सदर अस्पताल के माध्यम से बूथों पर यहाँ के कर्मचारी पोलियो की खुराक देने का काम कर। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि अपने जो नवजात बच्चे हैं उन सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाए, कोई भी उससे वंचित न रह जाए।
0: वहीं मेयर रोशनी खलखो ने बताया कि नगर निगम के सभी वार्डों में आरोग्य केंद्रों और हेल्थ प्वाइंट के माध्यम से बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है।
2: निश्चित इसमें नगर निगम भी भागीदारी निभाएगी और एक एक बूथ पर, एक एक आरोग्य मंदिर पर, एक एक दरवाजे पर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को खोज खोज करके पिलाए जाएंगे। मैं सारे बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर।
0: देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने नए सदर अस्पताल में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 1488 बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में भी 0 से 5 वर्ष तक के 17,765 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने के लक्ष्य के साथ आज पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दुमका पलाश टोटो योजना की शुरुआत की गई। विधायक बसंत सोरेन ने योजना का लोकार्पण कर सखी मंडल के 21 महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की इस योजना के तहत महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार से अपनी आय बढ़ा सकें। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती ने कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर बंद करना समाधान नहीं है, बल्कि सभी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सहित आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
3: सबसे पहले हमारे ये आवश्यक है हम लोगों के लिए जानना कि लोड का असेसमेंट सही तरीके से, इसे कि कृपया अपना ऑडिट जरूर कराएं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोचिंग संस्थानों के ऊपर कार्रवाई कर दें हम लोग और कोचिंग संस्थाओं को बंद करा दें। सॉल्यूशन ये है कि जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आप अपना लोड असेसमेंट कराइए, अपना फायर सेफ्टी का ऑडिट कराइए।
0: राजधानी रांची में सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। थाईलैंड में 27 से 29 जून तक आयोजित हुई अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ग्रीको रोमन टीम ने 150 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि उज्बेकिस्तान 171 अंकों के साथ पहले और कजाकिस्तान 167 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। रांची के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक बबलू कुमार ने भारतीय अंडर 15 टीम के कोच के तौर पर तृतीय स्थान विजेता की ट्रॉफी ग्रहण की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की

बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा और विमानन क्षेत्र की उपलब्धियों का किया उल्लेख, कहा रक्षा विमानन और योग में बढ़ी भारत की वैश्विक पहचान। बालूघाटों की नीलामी नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार को हो रहा भारी राजस्व नुकसान। पोटका में ब्रेन मलेरिया से 3 बच्चों की मौत, 16 नए संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जेएसएससी ने जारी किया उत्पाद सिपाही भर्ती का मेडिकल शेड्यूल, 1 जुलाई से होगी 1941 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच। और थाईलैंड में आयोजित अंडर-15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर, रांची के कोच बबलू कुमार सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब समय हो चला है कार्यक्रम अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत का। आज आप सुनेंगे खमाज में ठुमरी सिद्धेश्वरी देवी की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरंजनी के अंतर्गत उप शास्त्रीय संगीत में खमाज में ठुमरी। कलाकार थी सिद्धेश्वरी देवी, तबले पर संगत दे रहे थे चतुरलाल और सारंगी पर सबरी खान।

अगला नज़्म भी आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज़ में। इसके बोल लिखे हैं आमिर मिनाई ने और संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Good afternoon. This is Akashvani, and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defence production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles sign agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Doonagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargila bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: द प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड मेघालय'स रूट ब्रिजेस, सेइंग दीज रूट ब्रिजेस टेक डेकेड्स टू टेक शेप। ही शेयर्ड दैट इंडिया हैज नाउ अप्लाइड टू हैव मेघालय'स रूट ब्रिजेस इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क। On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh. The women resolved to remove plastic waste scattered around the area. Mr. Modi also urged people to ensure that the idol of Ganpati Bappa for Ganesh Utsav is made from the soil of this country and crafted by the hands of local potters and artisans. He also urged those who make Ganesh idols to prioritize clay idols. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some more news, Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles Patrick Hermione held bilateral talks at Victoria this afternoon. Both leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honour at the State House, with President Hermione also present. Several agreements were exchanged in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today highlighted the central role of villages in realising the vision of Viksit Bharat 2047. Addressing the Rashtriya Grameen Vikas Sammelan in New Delhi, Mr. Chauhan said a provision of

0: इस स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमरीका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि यह भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रूपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रूपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रूपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रूपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है।

0: श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब समय हो चला है हमारे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय भारती थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, देश की सीमाओं पर दिन रात अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हमारे वीर जवानों के नाम समर्पित इस विशेष प्रस्तुति में मैं आपकी रेडियो सखी अर्चना लेकर आई हूँ मधुर गीतों और अपनत्व भरी बातों की सौगात। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम जय भारती। देश की सरहदों पर डटे हमारे वीर जवान हर मौसम, हर चुनौती और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हैं। उनके इसी अदम्य साहस और समर्पण को हमारा शत शत नमन है। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर और सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आपके जज्बे और हौसले को सलाम करता है।

श्रोता, दूर रहकर भी अपनों का प्यार और विश्वास ही हर सैनिक की सबसे बड़ी ताकत बनता है। यही अपनापन हर कठिन घड़ी में नई ऊर्जा देता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ पेश है अगला मधुर गीत।

श्रोताओं, संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह दूरियों को भी करीब ले आता है। उम्मीद है हमारे गीतों की यह महफिल आपके दिन को और भी खुशनुमा बना रही होगी। अब वक्त है अगले गीत का, जो अपने मधुर बोल और सुरीले संगीत से आपकी इस यात्रा को और यादगार बना देगा।

श्रोताओं, एक सैनिक की जिंदगी अनुशासन, साहस और त्याग की मिसाल होती है और उसकी हर सुबह देश के नाम और हर रात देश की सुरक्षा के नाम होती है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन इस देश की सुरक्षा के लिए होम कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, गीतों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपकी मुस्कान और आपका उत्साह ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आइए बिना किसी देर के सुनते हैं कार्यक्रम का अगला शानदार गीत और संगीत के इन खूबसूरत पलों का आनंद लेते हैं।

तो कार्यक्रम जय भारती में आज के लिए इतना ही। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए रेडियो सखी अर्चना को विदा। अभी आप सुन रहे थे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत दुखद मृत्यु की स्थिति में निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपये तक का बीमा दिया जाता है और इसके लिए सालाना सिर्फ 436 रुपये का प्रीमियम देना होता है। अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं और लगभग 11,00,000 परिवारों को लगभग 22,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: जामताड़ा जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को पोलिंग बूथों, अपने अपने घर में टीवी और मोबाइल ऐप पर लोगों ने सुना और सराहना की। भाजपा के जिला महामंत्री कमलेश मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से देशवासियों के लिए प्रेरक और उत्साहवर्धक जानकारियां देते हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के सांसद सेवा कार्यालय सभागार में मांडू विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित आदिवासी गांवों के प्रतिनिधियों ने संवाद के दौरान अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान सांसद ने कहा कि जल्द ही वे खुद टाटा और सीसीएल प्रबंधन का प्रभावित ग्रामीणों के बीच वार्ता कराएंगे ताकि विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक एवं ठोस प्रयास किए जा सकें। बैठक के उपरांत सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात का सामूहिक रूप से श्रवण किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल से महापौर रोशनी खलको ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार सहित कई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारी उपस्थित रहे। इस वर्ष झारखंड में लगभग 61,00,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड राज्य युवा आयोग द्वारा बोकारो स्टील सिटी में साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 250 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। 25 किलोमीटर के साइकिल रेस में राजगंज धनबाद के रोहित कुमार रवानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता और हरित राज्य की परिकल्पना को बढ़ाना है।
2: हमारी बचपन की छोटी छोटी खुशियां थी, हमारे पिता का आशीर्वाद था, हमारी माता की सीख थी, उससे हम दूर होते गए। तो एक हमारी पहल है कि लोग साइकिल चलाएं, साइकिल को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें। साथ ही साथ ये जो महंगाई की मार झेल रहे हैं हम, और जो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होते जा रहा है हिंदुस्तान, उससे हम बचे।
0: देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 30,00,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए रांची, धनबाद समेत राज्य के 20 जिलों में आंधी, तेज हवा और गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 4 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: ओ चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज हमारे दिल्ली केंद्र से, तो आइए आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र।

शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: नमस्कार दोस्तों, संगीतमय कार्यक्रम रांची मेलोडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना और अगले कुछ समय तक हम साथ मिलकर सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत के कुछ ऐसे सदाबहार और दिल को छू लेने वाले गीत। तो आइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और संगीत के इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए।

श्रोताओं, कहते हैं संगीत वह भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। हर धुन अपने साथ कोई ना कोई एहसास लेकर आती है, कभी खुशी, कभी यादें और कभी नई उम्मीदें। तो आइए इस खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं आज की पहली संगीतमय प्रस्तुति।

अगर मुझसे ना मिली सपनों में आके सारी रात जगाऊं तेरा पीछा ना ना छो

घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा दिल पे हाथ से लिख ले बात ये वादा ये रहा तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं तेरा पीछा ना ना छोड़ूंगा।

जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जब हम बस संगीत का हाथ थाम लें, क्योंकि अच्छे गीत न सिर्फ कानों को सुकून देते

श्रोताओं, कुछ धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार सुनने पर पहले से भी ज़्यादा अपनी लगने लगती है। ऐसे ही एक मधुर गीत के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, आइए इसका आनंद लेते हैं।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा है कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली स्थित आवास पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रम का श्रवण किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से समस्त देशवासियों से सीधा संवाद, उनके जन जन के प्रति

0: समर्पण और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज चाईबासा के सदर पश्चिम मंडल टेकरा हातू ग्राम के बूथ संख्या 42 में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक रूप से श्रवण किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुवर गगरई समेत कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पलामू के मेदिनीनगर स्थित परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। झारखंड राज्य युवा आयोग द्वारा बोकारो स्टील सिटी में साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 250 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। 25 किलोमीटर के साइकिल रेस में राजगंज धनबाद के रोहित कुमार रवानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा।

0: जय हिंद बच्चों।
1: प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, है ना? और खुश हो भी क्यों ना, गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई और अब आप सभी की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश के कारण जिधर देखो हरियाली ही हरियाली दिख रही है, जो एक उमंग और प्रफुल्लित होने का प्रतीक भी है।
2: बच्चों, हरियाली केवल एक रंग नहीं है, बल्कि हरियाली धरती की मुस्कान और जीवन की धड़कन है। बच्चों, सुबह जब आप स्कूल जाते हैं या शाम को खेल के मैदान, आप अपने चारों तरफ हरे भरे पेड़ देखते होंगे, आप मखमली घास देखते हैं। आपने महसूस किया होगा कि इन्हें देखने पर अनोखी शांति मिलती है, मन ताजगी से भर जाता है और प्रकृति ने हमें हरियाली का एक अनमोल उपहार दिया है बच्चों, जो हमारे जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाता है।
1: हाँ बच्चों, भैया ने कितनी सही बात कही, पेड़ पौधों से ही तो हरियाली बनती है। ये पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र होते हैं, ये हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं, चिलचिलाती धूप में ठंडी छांव देते हैं, और हरियाली के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रखती है, बारिश लाने में मदद भी करती है, पर आज के समय में कंक्रीट के जंगलों के बीच हमारी असली हरियाली खोती जा रही है। अगर हमें आप बच्चों के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखना है तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हाँ, सही कहा आपने, हमें इस हरियाली को बचाना होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? हम सभी को मिलकर पेड़ पौधे लगाना होगा, उन्हें बचाने के लिए संकल्प लेना होगा, तभी हमारा जीवन भी खुशहाल बना रहेगा।
2: हाँ बच्चों, जीवन के खुशहाली के लिए जरूरी है पेड़ पौधों का होना, है ना? क्योंकि अगर पेड़ पौधे रहेंगे तभी हमारा जीवन रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें मिलती है प्राणवायु, है ना? तो और इसके साथ साथ बच्चों, हमारे जीवन में शिक्षा का भी बहुत महत्व है, है ना? बच्चों, आप सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नई नई बातें सीखते हैं और पढ़ाई के उम्र में शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन शिक्षा से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, शिक्षा से हम अपने सपनों को पूरा भी करते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए संस्कार भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। संस्कार हमें अच्छे व्यवहार सिखाती है, जैसे बड़ों की बातें मानना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, समय का पालन करना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना और सभी के साथ प्रेम से रहना, है ना? और इसके साथ साथ सच बोलना और अपने काम को ईमानदारी से करना।

0: है ना। तो अच्छे आचरण रखना चाहिए, जिस किसी को भी अगर मदद की जरूरत हो तो उनकी हमें सहायता करनी चाहिए, पशुओं की देखभाल करनी चाहिए, पशुओं को किसी तरह का कोई भी कष्ट हमें नहीं पहुंचाना चाहिए।
1: बच्चों, हम मानव के जीवन में शिक्षा के माध्यम से हम डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पायलट बनते हैं या अपने पसंद का कोई अच्छा पेशा चुनते हैं। शिक्षा हमें जीवन का मार्ग दिखाती है, वहीं शिक्षा और संस्कार दोनों किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में मदद करते हैं, उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, साथ में माता पिता, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तभी तो हम भी सम्मान पा सकेंगे। क्यों बच्चों?
0: तो बच्चों, बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए, क्यों दीदी?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो चलिए बच्चों को सुनाते हैं एक बाल गीत।

0: अमन कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको सवाली राम कविता सुनाने जा रहा हूँ। बबलू बस करते सवाल है, क्या उत्तर दे बुरा हाल है। बबलू 3 के बच्चे, मगर अकेल के तनिक न कच्चे। नई चीज कोई दिख जाती, पूछे कैसे काम है। आती मिट्टी में सोंदापन क्यों है, मिर्चों में तीखापन क्यों है। मेघा जल बरसाते कैसे, इंद्रधनुष दिख जाते।
1: वाह, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। आप क्या सुनाएंगी? पहले तो आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम अन्विशा श्रीवास्तव है। मैं 4 में पढ़ती हूँ। आलू

0: भाई हमने लड्डू दिए खा रहे थे। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम आकांक्षा है।
1: आप क्या सुनाएंगी?
2: मैं अपने दोस्तों को एक कविता सुनाना चाहूंगी। सूरज निकला, धूप खिल गई माँ, मुझको भूख लग गई, ची ची ची ची ची ची, कहाँ उड़ गई मम्मी जी, छोटी नन्ही चिड़िया हूँ माँ तेरी मैं गुड़िया हूँ, जल्दी से अब आ जाओ, खाना मुझे खिला जाओ, चुपके से मैं सो जाऊंगी, ची ची नहीं मचाऊंगी।
1: वाह, चीची नहीं मचाऊंगी। आप अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम है शान भरवत, मैं KGB में पढ़ता हूँ। अभी मैं आपको छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है तोता। नानी माँ

0: जाने कब करता आराम, नाम बताता मिट्टू राम। धन्यवाद।
1: आपका नाम क्या है बेटा?
2: पुलकित।
1: पुलकित, किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
2: सिक्स्थ।
1: आज आप अपने दोस्तों को क्या बताने जा रहे हैं, क्या सुनाने जा रहे हैं?
2: आज मैं आप लोगों को भारत के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ।
1: चलिए बताइए।
2: आज के फेमस गेम चेस का आविष्कार भारत में ही 6वीं शताब्दी में हुआ था। तब इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। जीरो का आविष्कार भी भारत में ही आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जिसमें पूरे वर्ल्ड से हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। कुतुब मीनार के पास स्थित आयरन पिलर पिछले 1600 सालों से बिना जंग लगे खड़ा है, जो इस बात का सबूत है कि इंडिया में टेक्निक्स कितनी हाईटेक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित कैलाशा टेम्पल 1200 साल पुराना है। ये मंदिर एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक यानी एक शिला मंदिर है। वाराणसी विश्व का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है। ये 5000 साल पुराना है। धन्यवाद।
1: वाह पुलकित ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अब हम बच्चों को क्या बतलाने वाले हैं, क्या जानकारी देने वाले हैं?
3: बच्चों को हम कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं, जिसमें बच्चों आपने भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक देखा होगा। बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं? देखिए भैया, बच्चे कितने खुश हो रहे हैं और इनके पास इतनी सारी जानकारियां हैं जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। तो बच्चों, राष्ट्रीय प्रतीक किसी देश के पहचान होते हैं और भारत ने भी अपने इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और आदर्शों को दर्शाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक चुना है। इन प्रतीक चिन्हों से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? ये प्रतीक चिन्ह हमें एकता, देशभक्ति सिखाते हैं। बच्चों, जैसे आपने राष्ट्र ध्वज तिरंगे को देखा होगा, और अब तो 1 महीने के बाद स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है। हम अपनी स्वतंत्रता और एकता का राष्ट्र ध्वज को प्रतीक मानते हैं। तिरंगा हमें अपने देश पर गर्व करना सिखाता है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ क्या संदेश देता है बच्चों? हमारे देश का प्रतीक अशोक स्तंभ सत्य और न्याय का संदेश देता है। बच्चों, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्या आपने उसे देखा है? कहाँ देखा है? बहुत सही कहा, जू यानी चिड़ियाघर में आपने राष्ट्रीय पशु को देखा है। और ये राष्ट्रीय पशु बाघ शक्ति और साहस का प्रतीक है।
1: बच्चों, मोर भारत की सुंदरता

0: और समृद्ध संस्कृति की पहचान है। मोर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हाँ, और मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है ना। उसी प्रकार राष्ट्रीय फूल, आपको पता है हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है कमल। और बरगद जो है, बरगद का गाछ तो आपने देखा ही होगा, पेड़। हाँ, बरगद का जो पेड़ है वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कहलाता है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? फल तो आप लोग रोज खाते हैं ना बच्चों, तो बताइए हमारे देश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? और अभी उसका मौसम भी है, आप लोग खूब खा भी रहे होंगे। हमारे देश का राष्ट्रीय फल है आम, है ना। और इसके अलावा बच्चों, अगर हम बात करें नदियों की, तो हमारे देश का राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर, है ना।
1: बच्चों, शक संवत आप जानते होंगे, शक संवत हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है। भारतीय रुपया हमारे देश का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है। इस तरह बच्चों, राष्ट्रीय प्रतीक जितने भी होते हैं, हमें अपनी विरासत का सम्मान करने और देश के जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख देते हैं।
0: तो बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, तो जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका सम्मान हमें करना चाहिए, जैसा कि दीदी ने कहा, और हम सब उनका सम्मान करते भी हैं। और कुछ और जानकारी है बच्चों आपके लिए हमारे पास, और वो जानकारी क्या है दीदी?
1: वो जानकारी है भैया कि आसमान में जो चमकती हुई बिजली होती है, इसका रहस्य हम जानेंगे और अपने बच्चों को भी ये बताएंगे कि बारिश के मौसम में जिस तरह से आसमान में अचानक चमकती हुई बिजली, ये जो प्रकृति की अद्भुत घटना है और साथ में डराने वाली जो इसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ है, ये इसका रहस्य क्या है? हाँ बच्चों, आसमान में चमकती बिजली, बारिश और तेज गड़गड़ाहट, इन सभी से तो सभी को डर लगता होगा। क्या आपने कभी सोचा है ये बिजली आखिर क्यों चमकती है? कहीं बादल आपस में कोई खेल तो नहीं खेलते हैं?
0: तो बच्चों, आपकी जिज्ञासा और विज्ञान की इस रोचक यात्रा में हम इसी मजेदार रहस्य की जानकारी आपको देने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आसमान में चमकने वाली बिजली कैसे बनती है और इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण छिपा है।
1: बच्चों, बादलों के आपस में टकराने से उनमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। कुछ बादलों में धनात्मक और कुछ बादलों में ऋणात्मक आवेश जमा हो जाते हैं। जब इन आवेशों का अंतर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो वे अचानक एक दूसरे की ओर प्रवाहित होते हैं। इस दौरान तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम बिजली की चमक या तड़ित कहते हैं।
0: आपने देखा होगा बच्चों कि बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है और कुछ समय बाद गरज सुनाई पड़ती है, यानी आवाज सुनाई पड़ती है, क्योंकि प्रकाश की गति जो है ना बच्चों, वो गति आवाज की गति से ज्यादा तेज है, इसलिए हमें प्रकाश जल्दी दिखाई देता है। और चूंकि आवाज की गति प्रकाश की गति से कम है, इसलिए हमें बाद में सुनाई देती है। बच्चों, ये आसमान में चमकती बिजली बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए गरज चमक के समय खुले मैदान में, पेड़ों के नीचे या ऊंचे स्थानों पर खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। और घर में भी आप रहें बच्चों, तो पांव में चप्पल जरूर होना चाहिए, है ना। और जब इस तरह से मौसम हो, बादल गरज रहे हो, बिजली कड़क रही है, तो अपने घर के खिड़की दरवाजे भी बंद कर लेने चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी जानकारी? जानकारी अच्छी थी। तो बच्चों, अब कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, तो चलिए बच्चों को दीदी सुनवाते हैं एक बाल कथा, टुनटुन और बुलबुल, और जिसके लेखक हैं श्री नरेंद्रनाथ शर्मा।
1: पिछले साल पूजा के समय आइनू को पिता ने एक गुड़िया ला दी थी। इसे पाकर आइनू को खुशी की हद नहीं थी। उसे वह हर वक्त गोद में लिए रहती, लोरियां सुनाती और उसके रूप, गुण
2: बखानती, इसके बाल घुंघराले हैं, इसकी नाक अपनी माँ की सी है आदि। वह हमेशा एक

0: बिल्ली का बच्चा गोद में और एक फूल हाथ में लिए रहती थी।
1: आइनु का इस गुड़िया के प्रति बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन जब उसने अपनी सहेली मसमी की गुड़िया देखी तो उसकी धारणा बदल गई। समझने लगी कि उसकी गुड़िया बिल्कुल अच्छी नहीं है। बैठा देने से उसकी गुड़िया बैठ नहीं सकती, हाथ पैर भी वो इधर उधर नहीं कर सकती।
0: एक दिन आइनू अपने पिताजी के पास जाकर रोने लगी कि उसे भी हाथ पैर चलाने वाली एक गुड़िया चाहिए, ठीक वैसे ही जैसा मसमी के पिता ने अपनी बेटी को लाकर दी है।
1: आइनू अपने पिता की लाडली बिटिया है, अपनी बेटी को भला वो दुखी कैसे कर सकते हैं। उसी दिन गुड़िया बेटी को ला दी। अब इस पुतले को आइनू कभी छोड़ती ही नहीं, वो तो आइनू की बहन है। आइनू ने उसका नाम टुनटुन रखा। सोते समय भी आइनू टुनटुन को तकिए पर सुलाए रखती है। उसके बिना आइनू को रात को नींद नहीं आती है। सुबह बिस्तर से उठते ही ये अपने साथ साथ टुनटुन का मुंह हाथ भी धुला देती है। कभी कभी बिस्तर पर छोड़कर आती है। थोड़ी देर बाद जाकर गुस्सा दिखाती है। गुस्सा दिखाती हुई टुनटुन को जगाने लगती है। ए उठ उठ उठ, कितना सोती है, सुबह जो हो गया मालूम नहीं है क्या, पढ़ने लिखने का काम कब करेगी।
0: खाने की मेज पर जाकर वह अपने लिए और टुनटुन के लिए सुबह का खाना मांगती है। खाना आ जाने से खुद भी खाती है और टुनटुन के मुंह में भी घुसेड़ देती है। भोजन के समय अपनी माँ से कहती है, माँ टुनटुन खाना नहीं खाती, कोई बीमारी है क्या माँ इसे।
1: सुबह और शाम टुनटुन को वो घुमाने ले जाती है। टुनटुन को लेकर मीनू के साथ वो दुल्हा दुल्हन का खेल भी खेलती है।
0: मीनू आइनू की सहेली है, वह बरुआ की लड़की है। कुछ दिन पहले मीनू को एक बहन मिली है, उसका नाम बुलबुल है। अब बुलबुल 4 महीने की हो गई है, वह अब हंसती है। आइनू उसके पास से दूर हटना नहीं चाहती, कभी कभी उसे गोद में उठा लेना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे कैसे गोद में देती है, इतनी छोटी सी बच्ची है, कहीं गिरा देगी तो।
1: लेकिन आइनू कहाँ छोड़ने वाली थी, अपनी माँ को बार बार तंग करती, आखिर एक दिन उसे गोद में लेकर ही मानी। एक बार जब गोद में लिया तो आगे क्या बात। आइनू रोज अपने घर से चुपचाप बुलबुल के पास चली जाती, कभी उसे गोद में उठाकर रास्ते तक लाती। इसमें मीनू भी शामिल रहती, माँ को इसका पता भी न लगता। कभी कभी उसे याद आती, वो तो पहले टुनटुन को भी इसी तरह प्यार करती थी।
0: बुलबुल उससे बहुत अच्छी है, बुलबुल हंस सकती है, टुनटुन नहीं। हाँ टुनटुन भी बहुत बुरी नहीं थी। टुनटुन को लेकर वह खेलती थी, घूमती थी, उसे इधर उधर की चीजें दिखाती थी। एक दिन उसने टुनटुन को अपनी मेज के नीचे पड़ी हुई देखा, उसे बुरा लगा, उठा लेने का मन भी करता था, लेकिन गोद में तो बुलबुल थी, उसे उठा नहीं सकी। वह बुलबुल को लेकर बाग में घूमने चली गई और टुनटुन को भूल गई।
1: रात को आइनू ने सपने में देखा कि टुनटुन मेज के नीचे पड़ी हुई है। आइनू को उधर जाते देख हाथ पैर नचा नचा कर कहा, मैं यहाँ पड़ी हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं उठा लेती, मुझे क्यों प्यार नहीं करती।
0: आइनू नींद में ही चिल्ला उठी, मेरी प्यारी मैं तुझे जरूर उठा लूंगी, कह बिस्तर से झटपट उठ बैठी और खटिया के नीचे कुछ खोजने लगी। उसके बाद मेज के नीचे देखने लगी और गुड़िया को झटपट छाती से लगाकर बार बार चूमने लगी।
1: कुछ दिन बाद आइनू ने उस गुड़िया को बुलबुल को दे दिया। आजकल वो बुलबुल के हाथ में टुनटुन को देकर उसे घुमाने ले जाती। बुलबुल टुनटुन उसके सामने एक से बन गए हैं। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी कहानी, अच्छी कहानी थी ना। और अब आपको मालूम ही है कि हर हफ्ते हम आपको एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज हम कौन से प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में अपने बच्चों को जानकारी दे रहे हैं दीदी?
0: आज के प्रेरक व्यक्तित्व हैं बच्चों डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। बच्चों क्या आप बता सकते हैं भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? बहुत सही बताया आपने, 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती मनाई जाती है। कौन थे बच्चों डॉक्टर विधान चंद्र रॉय? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पेशे से एक वरिष्ठ चिकित्सक, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। जिनका

0: जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना में हुआ था।
1: बच्चों, डॉक्टर राय एक उत्कृष्ट डॉक्टर होने के साथ साथ एक शिक्षाविद और आधुनिक बंगाल के निर्माता थे। उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने 1961 को उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया। वे अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद मरीजों को जीवन के अंतिम दिन तक मुफ्त इलाज जारी रखा।
0: बच्चों, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को उनके त्याग और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और अपने घर को एक नर्सिंग होम और अस्पताल बनाने के लिए वसीयत कर दिया था। समय के वे इतने पक्के थे कि लोग उनकी दिनचर्या देखकर अपनी घड़ियां मिलाते थे। उनका मानना था कि सादा जीवन, उच्च विचार और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: तो बच्चों, ऐसे थे डॉक्टर विधान चंद्र राय। और दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है, तो बच्चों से अब हमें विदा लेनी होगी। तो चलते चलते हम आपको बता दें बच्चों कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव पांडे की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ कहानियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
0: जय
1: जय हिंद
0: हिंद।
1: बच्चों।

Kafi afsuneti bal sefa प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस चंद ही पलों में, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चलें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से बस थोड़ी देर बाद 4:35 पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम के 5 और 6 बजे आप सुन सकेंगे। 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है हमारे सूत्रधार, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पे। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय मानसिक स्पष्टता और आत्म जागरूकता के लिए प्राणायाम, कम कागजी कार्रवाई ज्यादा सुविधा, नागरिक सेवाएं हुई आसान और परेशानी मुक्त, प्रकृति संरक्षण में हर व्यक्ति की भूमिका विषय पर भी चर्चा होगी। कंपेयर होंगी महिललमा गोल्डन बिलुंग सुषमा एक्का। इस कार्यक्रम की सूत्रधार महिमा गोल्डन बिलुंग और सुषमा एक्का। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रशांत गौरव की है। खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:02 पर। आज प्रश्नोत्तरी का विषय है संरक्षित खेती आज की आवश्यकता। इस विषय पर जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर अवनी कुमार सिंह। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे 6:30 से। प्रादेशिक समाचार शाम के 7 बजे। जिले में आजकल 7:11 पे आप सुन सकेंगे और उसके बाद क्रिकेट मैच का प्रसारण जारी रहेगा।

रात्रि 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आप सुन सकें। इस कार्यक्रम में पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन और विद्वान एनएस कल्याण रमन का मृदंगम वादन। रात्रि 10 बजे से हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का ये प्यारा सा गीत।

अभी आप फिल्म अमर प्रेम का गीत सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत राहुल देव बर्मन का था। इस गीत से पहले आपने सुना फिल्म जेलर का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

मदन मोहन का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण के बोल थे। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म दूरियां का ये प्यारा सा गीत।

फिल्म दूरियां का गीत अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म हकीकत का, ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफी आजमी की बोल है, संगीत मदन मोहन का।

और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म चिराग का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत मदन मोहन का।

0: इसी साथ आज का ये कार्यक्रम वैसे ही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा है कि उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया और सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया। श्री मोदी ने देशवासियों से खेती की जमीन को रसायनों से दूर रखने और ज्यादा से ज्यादा खेती प्राकृतिक उर्वरकों के साथ करने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस अपील का समर्थन करने और हर तरह से सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पलामू के मेदिनीनगर स्थित परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। रांची पुलिस को दोहरी कामयाबी मिली है। नामकुम थाना क्षेत्र के कटियातू से अवैध हथियार और गोली के साथ पुलिस ने एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया है। सदर DSP अमन कुमार पांडे ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार शूटर पिछले 10 जून को जमीनी विवाद में गोलीकांड में शामिल था। वहीं तैमारा घाटी से रामपुर आ रहे एक बाइक सवार व्यक्ति को 4 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है।

लोहरदगा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री और सेवन की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत साहिबगंज जिले में वृहद पल्स पोलियो टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों तक बूथ में पल्स पोलियो की खुराक दी जा रही है। कल से स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप देंगे। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने जिले के सदर अस्पताल परिसर में तीन दिवसीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो, गुड इवनिंग जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। और आज के इस सफर में मैं हूं आपका दोस्त रजत।
1: और मैं हूं एडित।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम हर रोज की तरह आज भी हाजिर हैं आपके लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर, और साथ ही साथ दोस्तों हम सुनेंगे प्यारे प्यारे गाने भी, क्योंकि दोस्तों एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है और एंटरटेनमेंट के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। दोस्तों, आज है दिन वीकेंड्स का। दोस्तों, हम सभी युवा अपने डेली पढ़ाई लिखाई कॉलेज स्कूल लाइफ से वीकेंड का इंतजार करते हैं। वीकेंड में हमें सुकून के कुछ पल बिताना चाहिए। वीकेंड्स में सुकून के कुछ पल बिताना भाग दौड़ भरी जिंदगी से राहत पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अपने आसपास प्रकृति की गोद में समय बिताना, सुबह सुबह टहलना या किसी कैफे में किताब पढ़ना पूरे हफ्ते की थकान मिटा सकता है। लेकिन पूरे हफ्ते की भाग दौड़ के बाद जब वीकेंड आता है तो बस फोन स्क्रॉल करते निकल जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें वीकेंड्स में सुकून के कुछ पलों की जरूरत होती है, क्यों एडित?
1: बिल्कुल रजत। तो वीकेंड्स पर शांति के पल के लिए आप शहर की भाग दौड़ से दूर झरनों या फॉल्स के बीच जा सकते हैं। पानी की कलकल आवाज आपको शांति देगी। शाम के समय की ठंडी हवा और झील किनारे बैठना बहुत ही सुकून देता है।
0: हाँ एडिट, वीकेंड पर कुछ देर फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। खुद को डिजिटल डिटॉक्स करें, इंस्टा रील्स नहीं खुद की लाइफ जिए।
1: बिल्कुल, अपनी हॉबी को टाइम दे। पेंटिंग, गार्डनिंग या कोई पसंदीदा किताब पढ़ने में समय बिताएं। शांत संगीत सुने, कुछ देर मेडिटेशन करें।
0: दोस्तों, सुकून का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं। कभी कभी सबसे अच्छा प्लान होता है नो प्लान। वीकेंड पर कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए। फोन नहीं, लोग नहीं, काम नहीं, बस आप और आपका सुकून। दोस्तों, आप अपने सुकून के लिए अपने हॉबीज को भी टाइम दे सकते हैं। अपने हॉबीज को समय जरूर दें। अपने शौक को समय देना मानसिक शांति और एनर्जेटिक रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय अपने पसंदीदा काम जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, गार्डनिंग के लिए ज़रूर निकालें। इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। फ़ोन पर बिताए गए समय से कुछ पल चुरा कर अपने हॉबीज़ को ज़रूर दें।
1: जी हाँ दोस्तों, हॉबीज़ को टाइम देना हमारे लिए स्ट्रेस बूस्टर होता है। ऑफिस, पढ़ाई, घर की टेंशन, हॉबीज दूर करता है। यह हमारे माइंड को रीसेट कर देता है।
0: बिल्कुल एडिट, हमारी हॉबीज हमारी पहचान है। हॉबीज को समय देना हमें खुशी देता है। जब हम पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग या कोई भी हॉबीज को पूरा करते हैं।

0: है तो रिफ्रेश और खुश फील करते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम अपने हॉबीज को अपना करियर भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपने हॉबीज को प्रोमोट कर सकते हैं।
0: अक्सर लोग बोलते हैं कि अपने हॉबीज के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, पर यह सबसे बड़ा बहाना है। सोशल मीडिया, वेब सीरीज में घंटों निकल जाते हैं, पर अपने हॉबीज के लिए हम थोड़ा वक्त नहीं निकाल पाते।
1: आज ही थोड़ा वक्त अपने हॉबीज के लिए निकालें, अपने पैशन को फॉलो करें। साथ ही हमारे हॉबीज हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमें तरोताजा रखता है। तो अपने हॉबीज को कभी भी बोझ ना बनने दें, इसे अपने मी टाइम की तरह इंजॉय करें। अपने हॉबीज को समय जरूर दें। तो दोस्तों, बातें तो हमने ज्ञानवर्धक की और भी नई नई जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले सुनिए एक फिल्म संगीत।

दोस्तों, अब बारी है गीतों भरी कहानी की, जिसका शीर्षक है घुंघरू और हौसला। एक छोटे से कस्बे में रहने वाली नेहा को बचपन से ही डांस करने का पागलपन था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने नेहा ने अपने सीधे पैर की ताकत हमेशा के लिए खो दी। वह थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। लोग कहते थे, अब यह जिंदगी भर दूसरों के सहारे जिएगी, डांस तो भूल ही जाओ। जब भी कोई उसे कमजोर समझकर तरस खाता, नेहा का दिल टूट जाता। पर वह हार मानने वालों में से नहीं थी। वह चुपके से कमरे में जाती, अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन करती और खुद को आईने में देखकर यह

नेहा ने बैसाखियों को छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। जब वह डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस करती तो वह बार बार गिरती, उसके पैरों में तकलीफ होती। माँ रोती और कहती, क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो? नेहा मुस्कुराती और माँ का हाथ पकड़ कर कहती, माँ ये दर्द मुझे मजबूत बनाते हैं। वह गिरती उठती और बैकग्राउंड में जैसा उसकी आत्मा यह गाना गाती।

0: जी हाँ दोस्तों, उसने ठान लिया था कि वह अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगी। उसने एक पैर के सहारे ही क्लासिकल और वेस्टर्न डांस का ऐसा फ्यूजन तैयार किया जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं।
1: दोस्तों, देश के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में ऑडिशन चल रहे थे। नेहा भी वहाँ पहुँची। जब वह स्टेज पर पहुँची तो जजों और दर्शकों के चेहरे पर सहानुभूति के भाव थे।
0: जी हाँ दोस्तों, और सबको लगा कि यह कोई इमोशनल ड्रामा करने आई है। तभी म्यूजिक बजा, नेहा ने जो परफॉर्मेंस दी उसने ग्रेविटी के नियमों को भी चुनौती दे दी। एक पैर पर उसका बैलेंस और उसकी आंखों का जुनून देखकर जज अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। उसने अपने डांस से यह साबित कर दिया कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। पूरा ऑडियंस तालियों से गूंज उठी और बैकग्राउंड में गाना गूंज रहा था, जिंदा है तो।

0: नेहा ना सिर्फ उस शो की विनर बनी बल्कि उसने दुनिया को दिखाया कि अगर मन में कुछ करने की ठान लो तो कोई भी शारीरिक कमी आपको रोक नहीं सकती। आज वह लाखों दिव्यांग बच्चों को फ्री में डांस सिखाती है।
1: दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, अगर आपके इरादों में जान है तो आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। आपकी कमजोरी ही कल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी बनकर उभरती है। दोस्तों, हमने अपने कार्यक्रम में शुरुआत में भी बातें की कि वीकेंड्स में हमें इंजॉय करना चाहिए, अपने मेंटल पीस को अहमियत देनी चाहिए। दोस्तों, दिमाग को ही आराम देने के लिए सुकून के पल बेहद ज़रूरी होते हैं। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा दिमाग एक मशीन की तरह 24/7 चलते रहता है। ऑफिस, पढ़ाई का प्रेशर, मोबाइल नोटिफिकेशन, इन सब के बीच दिमाग थक जाता है। जिस तरह शरीर को आराम चाहिए, उसी तरह दिमाग को भी सुकून के पल चाहिए। ये सुकून के पल ही हमें टूटने से

0: बचाते हैं और फिर से हमें ऊर्जा से भर देते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, दिमाग को आराम और मन को सुकून देने वाले पल हमारी मानसिक सेहत के लिए बेहद जरूरी है। तनाव भरी जिंदगी में हमें इन पलों को महसूस करना चाहिए।
0: छोटे छोटे पल हमारे दिमाग को सुकून देते हैं, जैसे पार्क में टहलना, पेड़ों को देखना, पक्षियों की चहचहाट, सनराइज सनसेट देखना, अपने हॉबीज को समय देना, गाना गुनगुनाना, डायरी लिखना, पेंटिंग करना। जब भी हम दिल से कुछ काम करते हैं तो दिमाग की टेंशन अपने आप गायब हो जाती है।
1: जी हाँ दोस्तों, डिजिटल ब्रेक ले, फोन सोशल मीडिया से दूर रहकर कुछ समय खुद को दें, फैमिली के साथ टाइम बिताएं, पुराने किस्से याद करना, बच्चों के साथ खेलना भी आपको सुकून के पल देता है। काम, जिम्मेदारी, गोल सब ठीक है, पर थोड़ा समय कुछ अपने लिए भी जरूर निकालिए। दिमाग को आराम देते हुए सुकून के पल ही खुशहाल जिंदगी की चाबी है।
0: जी हाँ दोस्तों, हफ्ते भर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से हमें ऐसे काम वीकेंड्स में जरूर करने चाहिए जो कि हमारे दिमाग को सुकून दे, आराम दे, ताकि पूरे हफ्ते भर हम एक्टिव महसूस कर सकें। और वीकेंड्स में हम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बारिश के मौसम का आनंद ले सकते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने बचपन के दिनों को याद कर सकते हैं, अपने पसंदीदार लोगों से मिल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। ढेरों ऐसे काम हैं जिसे हम कर कर अपने दिमाग को आराम दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपने वीकेंड में अपने आप को एक नई दुनिया में ले जा सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम पूरे हफ्ते अपने आप को एनर्जेटिक फील करवाते रहें। हम रिफ्रेश रहेंगे, हमारा दिमाग अच्छा रहेगा, तभी हम सारे काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, हमें आपसे बातें तो और भी करनी थी पर घड़ी की सुइयां अभी इशारा कर रही है, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे आपसे ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त रजत
1: और एडिथ
0: को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार जुहार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोग। देश के निर्माण में अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से नई इबारत लिखने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा।
1: और मैं हूँ महिमा। देश की प्रगति को नई ऊंचाइयां देने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को हमारा सादर प्रणाम, नमस्कार, जोहार। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। यह मंच आपकी बातों, आपके अधिकारों, आपकी सुरक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपकी सफलता की कहानी का साथी है। आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए उपयोगी जानकारी, प्रेरक संदेश और आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषय।
0: तो आइए मेहनत की इस अनमोल यात्रा को सलाम करते हुए शुरू करते हैं। साथियों, दिन भर की मेहनत, समय का दबाव और जिम्मेदारियों के बीच कई बार मन थका हुआ महसूस करता है। ऐसे में यदि मन शांत हो, सोच स्पष्ट हो और आत्म जागरूकता बढ़े तो काम भी बेहतर होता है और जीवन भी अधिक संतुलित महसूस होता है। आज हम बात करेंगे मानसिक स्पष्टता और आत्म जागरूकता के लिए प्राणायाम कितना जरूरी है।
1: हाँ साथियों, आज हम जानेंगे कि प्राणायाम क्या है, इसे सुरक्षित और सही तरीके से कैसे किया जाए और यह मानसिक स्पष्टता तथा आत्म जागरूकता विकसित करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है।
0: बिल्कुल साथियों, प्राणायाम केवल सांस लेने की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने का एक सरल अभ्यास है। जब हम गहरी सांस और नियंत्रित सांस लेते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है।
1: हाँ साथियों, दिन में केवल 5 से 10 मिनट का नियमित प्राणायाम आपको मानसिक रूप से अधिक सजग और ऊर्जावान महसूस कराने में मदद कर सकता है। काम शुरू करने से पहले या काम के बाद किसी शांत स्थान पर बैठकर कुछ देर गहरी और सहज सांसों का अभ्यास करना लाभदायक हो सकता है।
0: बिल्कुल, और आत्म जागरूकता का अर्थ है साथियों कि अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझना। जब हम स्वयं को बेहतर समझते हैं ना, तो परिस्थितियों का सामना भी अधिक धैर्य और संतुलन के साथ कर पाते हैं। इसलिए प्रतिदिन 5 से 10 मिनट का प्राणायाम आपके दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल, और साथियों ध्यान रखें, प्राणायाम हमेशा आरामदायक स्थिति में बिना किसी जल्दबाजी के करें। यदि आपको सांस, हृदय या किसी अन्य तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो प्राणायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर या प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए स्वस्थ तन और शांत मन की ओर एक सकारात्मक कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि जब मन रहेगा स्पष्ट और आत्म जागरूक तब हर दिन की मेहनत भी बनेगी अधिक सफल, संतुलित और संतोषपूर्ण।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही महिमा आपने। और श्रमिक साथियों, विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है कि आम नागरिक को सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समय पर मिलना चाहिए, है ना
1: जी।
0: इसी सोच के साथ पिछले वर्षों में कई सरकारी सेवाओं में प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनावश्यक कागजी कार्रवाई को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि आज अनेक सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल दस्तावेज, ई प्रमाण पत्र और समयबद्ध सेवा वितरण जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। ऐसे लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी और कई काम घर बैठे या नजदीकी सेवा केंद्र के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं।
0: आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र में जाकर इन सारे कार्यों को निपटा सकते हैं आसानी से। और तो और, डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग से पारदर्शिता भी बढ़ी है और सेवाओं तक पहुंचने से पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हुई है। श्रमिक भाई बहनों के लिए भी यह बदलाव उपयोगी है और सामाजिक सुरक्षा, पहचान, बैंकिंग सुविधा और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाएं पहले से अधिक सरल तो हुई हैं, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है।
1: बिल्कुल, और बहुत सही कहा आपने कि डिजिटल माध्यमों से बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी हो पाते हैं और बहुत ही स्मूथ तरीके से होते हैं। हालांकि अलग अलग सेवाओं की प्रक्रिया राज्य और विभाग के अनुसार भिन्न हो सकती है,
0: बिल्कुल
1: इसलिए किसी भी योजना या सेवा का लाभ लेने के लिए या लेने से पहले संबंधित विभाग या अधिकृत सेवा केंद्र में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
0: बिल्कुल, सरल, सुगम और पारदर्शी नागरिक सेवाएं सशक्त नागरिक और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, या हम कह सकते हैं विकास के इन 12 वर्षों में कम कागजी कार्रवाई, ज्यादा सुविधा, नागरिक सेवाएं हुई आसान और परेशान मुक्त।
1: बहुत सही कहा आपने, कम कागजी कार्रवाई, ज्यादा सुविधा, नागरिक सेवाएं बहुत ही आसान हो गई है और परेशानी मुक्त भी हो गई है।
0: बिल्कुल,
1: और अब वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक लेने का और आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक, और ये सुंदर प्यारे से गीत
1: जी
0: के बाद हम आपका पुनः कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में अगले सेगमेंट की ओर, और जानते हैं कि बदलता भारत किस प्रकार रोजगार, नवाचार और स्वरोजगार के नए रास्ते खोल रहा है।
1: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। विषय है आर्थिक और औद्योगिक विकास तथा भारत में स्टार्टअप के नए अवसर। वार्ताकार है सपना सिन्हा।
2: आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ता रुझान और भारत में स्टार्टअप के लिए भरपूर अवसर। जब अर्थव्यवस्था सशक्त होती है और उद्योग प्रगति करता है तो राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है और उनकी जनता समृद्ध होती है। भारत आज तक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ का आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र निरंतर विकास के नए आयाम छू रहा है। बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी प्रगति, सरकारी नीतियाँ और वैश्विक निवेश के चलते भारत विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने कृषि आधारित ढांचे से आगे बढ़कर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है।

0: मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी पहल ने औद्योगिक विकास को नई गति दी है। विदेशी पर्यटन निवेश को नई गति दी है। भारत की 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जो नवाचार तकनीक और तकनीकी उद्योगशीलता के लिए बेहद अनुकूल है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के प्रसार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम किया है, जिसमें व्यावसायिक अवसर हर क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से हम एक हैं। फिनटेक, हेल्थटेक, एनटेक, एग्रीटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत सरकार टैक्स छूट, फंडिंग सहायता, आसान रजिस्ट्रेशन और मेंटरशिप जैसी सुविधाओं को देकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ता रुझान कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक विकास औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि से आर्थिक विकास में योगदान देता है, जिससे देश की जीडीपी में वृद्धि होती है। रोजगार के अवसर औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि से नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे बेरोजगारी दर में कमी आती है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि से नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होता है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि से निर्यात में वृद्धि होती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। भारत में आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते रुझान के कुछ उदाहरण और भी हैं। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें नए और नवाचारी विचारों को बढ़ावा मिल रहा है। आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास और संचालन होता आ रहा है, जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि देश की आर्थिक उन्नति में अपना पूरा योगदान दे रहा है। इसमें और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिस पर हम यहाँ पर विचार करेंगे। विनिर्माण उद्योग, यह उद्योग कच्चे माल को तैयार उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग आदि। सेवा उद्योग, यह उद्योग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा आदि। कृषि उद्योग, यह उद्योग कृषि उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण से संबंधित है। खनन उद्योग, यह उद्योग खनिज संसाधनों के निष्कर्षण और प्रसंस्करण से संबंधित है। भारत में स्टार्टअप का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो बिल्कुल नई हो और किसी अनोखे आइडिया या टेक्नोलॉजी के आधार पर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस दे रही हो। ये खास तौर पर छोटे पैमाने पर शुरू किया जाता है, पर इसका लक्ष्य बहुत तेजी से बढ़ता है। भारत में स्टार्टअप का इकोसिस्टम बहुत मजबूती और तेजी से बढ़ रहा है। इससे समझने के लिए कुछ खास बातें हैं। सरकारी समर्थन, भारत सरकार में स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इसके तहत उन्हें कई तरह की टैक्स छूट, फंडिंग और आसान सरकारी प्रतिक्रियाओं का लाभ मिलता है। फंडिंग और निवेश, शुरुआती दौर के स्टार्टअप को पैसा जुटाने के लिए एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल जैसे मदद मिलती है। ये निवेशक अच्छे आइडिया को पहचान कर उनसे पैसा लगाते हैं, ताकि वो आगे बढ़ सके। युवा शक्ति और टेक्नोलॉजी, भारत के युवा उद्यमी नई टेक्नोलॉजी जैसे AI, ब्लॉकचेन और लॉट का इस्तेमाल करके ऐसे समाधान बना रहे हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। स्टार्टअप इंडिया के अवसर भी अनेक हैं और उनसे मिली सफलता के उदाहरण भी कई हैं। आज के इस भागदौड़ जिंदगी में हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी काम तुरंत में हो जाए। घरेलू बाजार और उपभोक्ता मांग, भारत की युवा आबादी, बढ़ती आय और डिजिटल साक्षरता एक विशाल उपभोक्ता आधार तैयार किया है, जो स्टार्टअप के लिए बड़ा बाजार है। फिनटेक जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने फिनटेक स्टार्टअप के लिए क्रांति ला दी है, जिसे ऑनलाइन लेनदेन बहुत आसान हो गया है। एग्रीटेक, कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे किसानों को बेहतर बीज, मौसम की जानकारी और बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। हेल्थटेक, COVID-19 महामारी के बाद ऑनलाइन कंसल्टेशन, मेडिसिन डिलीवरी और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे स्टार्टअप की मांग तेजी से बढ़ा रही है। भारत का बेंगलुरु पूरी दुनिया में स्टार्टअप के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भारत में अधिकांश यूनिकॉर्न सेवा क्षेत्र कार्यरत हैं। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई ऐसा क्षेत्र है जहां पर अधिक मात्रा में स्टार्टअप कंपनियों का काम चल रहा है। स्टार्टअप इंडिया के योजना के तहत कंपनियों को 3 साल तक जो भी मुनाफा प्राप्त होगा उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। पेटेंट कम पंजीकरण में उन उद्यमों को पंजीकरण शुल्क में 80% छूट दी जा रही है। शुरू के 3 साल कंपनी के लेवर और कंपनी में पर्यावरण के नियमों का पालन कर रही है या नहीं उसकी जाँच भी नहीं की जा रही है, लेकिन हाँ उन पे यह नजर रखी जा रही है कि वह हमारे पर्यावरण के और अपना पूरा ध्यान दे। भारत की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप की भूमिका, नई नौकरियों का सृजन। देश में जितनी अधिक मात्रा में स्टार्टअप कंपनियां आएंगे उतने अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इनसे देश में बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। लघु उद्योगों को बढ़ावा, सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के उन युवाओं को लाभ मिलेगा जो घरों में लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। सरकार उनके प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करेगी ताकि उनकी प्रोडक्ट की बिक्री अधिक से अधिक हो सके। बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन, जब बाजार में कई सारी कंपनियां अनेक उत्पाद लेकर आएंगे तो उनमें इन सब से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता के उत्पाद कम मूल्य पर उपलब्ध हो पाएंगे। फलस्वरूप लोगों के जीवन स्तर बढ़ेगा और जब बेहतर प्रोडक्ट भारत में निर्मित होंगे तो उनसे स्वास्थ्य संबंधित लाभ भी होंगे। विदेशी आय की प्राप्ति, जब भारत में अधिक मात्रा में स्टार्टअप कंपनियां संचालित होंगी और कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाएंगे अगर उसे हम बाहर के देशों में बेचेंगे तो इससे कंपनी को फायदा होगा, साथ में भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और सरकार की आय बढ़ेगी। इससे देश को आर्थिक लाभ के साथ साथ देश स्टार्टअप की श्रेणी में अलग पहचान आने में सफल हो सकता है। रचनात्मक विकास, स्टार्टअप इंडिया के तहत आने वाले नई कंपनियां तकनीक के सहारे नए नए आविष्कार कर रही है जिसमें रचनात्मक विकास हो रहा है। कम कीमत पर अच्छे उत्पाद बनाने और उन्हें बेचने में यहां योजना लाभ साबित होगी। भारत में स्टार्टअप के लिए कई सुनहरे अवसर हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला रही है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और वित्त। इलेक्ट्रिक वाहन EV स्टार्टअप भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार की प्रोत्साहन नीतियों और पर्यावरण संबंधी जागरूकता के कारण यह आज का स्टार्टअप में पहले पोजीशन पर चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में स्टार्टअप के अवसर हैं, जैसे कि टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा उपकरण। एग्रीटेक कृषि में स्टार्टअप के अवसर हैं, जैसे कि ड्रोन तकनीक, IoT समाधान, ओवरसेटिंग खेती। फिनटेक स्टार्टअप भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं में नया अवसर प्रदान कर रहे हैं। हमें इन सब कामों में सरकार की ओर से बहुत सारी सहायता मिलते हैं जिनको हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। भारत सरकार ने स्टार्टअप के कई पहलुओं की घोषणा की है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप के लिए एक मंच प्रदान करता है जिसमें वित्तीय सहायता, कर लाभ और अन्य लाभ शामिल हैं। अटल इनोवेशन मिशन स्कूली बच्चों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल। प्रोडक्शन लिक्विड स्कीम इसके विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। कुछ प्रमुख क्षेत्र जिनमें स्टार्टअप के अवसर बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी और IT, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, स्वास्थ्य और फिटनेस, शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग, फिटनेस और डिजिटल पेमेंट, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। इन क्षेत्रों में स्टार्टअप के कई अवसर हैं। नवाचारी उत्पाद और सेवाएं विकसित करना, नए बाजार में प्रवेश करना, रोजगार को अवसर प्रदान करना, आर्थिक विकास में योगदान देना। भारत सरकार भी स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है।
1: आशा है साथियों कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होंगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए हम सपना सिन्हा जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और श्रमिक साथियों, सपनों को साकार करने के लिए केवल हौसला ही नहीं, सही समय पर आर्थिक सहयोग भी आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाएं किस प्रकार स्वरोजगार और छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है।
2: बिल्कुल, और साथियों भारत सरकार श्रमिकों की हमेशा चिंता करती है और समय समय पर ऐसी योजनाओं को बनाती है जिसका सीधा सीधा फायदा श्रमिक साथियों को मिलता है।
1: और ऐसी ही एक योजना है पीएम मुद्रा योजना, जो जमीनी स्तर के उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण करती है।
2: बिल्कुल सुषमा, इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी,
1: जिसका

0: मुख्य उद्देश्य है कि गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध कराना है। यह बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराता है। बहुत बार जब हमारे साथी लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें गारंटी का की परेशानी होती है ना। अक्सर ये हम देखते हैं कि गारंटी कौन देगा, पीएम मुद्रा योजना बिना गारंटी के लोन देता है, यह इसकी बहुत बड़ी खासियत है।
1: बिल्कुल, मैं ऐसे बहुत से साथियों को जानती हूँ जो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में लोन लेने की चिंता होती है और गारंटी की चिंता होती है, लेकिन ये जो पीएम मुद्रा योजना है इस परेशानी से निजात दिलाने वाली
0: बिल्कुल
1: होती
0: बिल्कुल
1: है। और इसके लिए सुरक्षा गारंटी, संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती।
0: बिल्कुल, शुरुआत में इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, पर अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिए गए हैं।
1: और बहुत बार जो साथियों होते हैं हमारे, बहुत सारे साथी, तो साथियों के अंदर कुछ नया करने की शुरुआत होती है पर वे वित्तीय असुरक्षा के कारण रुक जाते हैं। ऐसे साथियों से कहना चाहेंगे कि आप पीएम मुद्रा योजना का लाभ जरूर लें।
0: अगर पात्रता की बात की जाए इस लोन के लिए तो उन्हें भारतीय नागरिक होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर मतलब इसके साथ साथ 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट और व्यवसाय योजना, पंजीकरण या लाइसेंस होना चाहिए, है ना।
1: बिल्कुल, और साथियों आवेदन प्रक्रिया भी बहुत आसान है, इसलिए आप इस योजना का लाभ जरूर लें और दूसरों को भी जानकारी दें।
0: बिल्कुल महिमा, अभी आपने बातें की कि इस योजना की जानकारी दूसरों को भी दे दें, तो सिर्फ यही नहीं, इससे साथियों को प्राकृतिक संरक्षण की भी जानकारी देनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बहुत बड़ी बात कही आपने कि पीएम मुद्रा योजना के साथ साथ हमारे साथियों को प्रकृति संरक्षण की जानकारी भी देना चाहिए। और ये प्रकृति संरक्षण बेहद ही जरूरी है क्योंकि प्रकृति हमारा आज, कल और भविष्य सुनिश्चित करती है।
0: बिल्कुल, और प्रकृति संरक्षण करने से जलवायु परिवर्तन में से भी मतलब बचा जा सकता है। और जब पेड़ पौधों की कटाई नहीं होगी तो प्रदूषण नहीं होगा और श्रमिकों का काम और आय में भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है जिसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ महिमा एक गीत तो और बनता है जो हम अपने साथियों को सुनवाना चाहते हैं।

0: तो साथियों, इसी प्यारे से गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम का समय जो है हमारा समाप्त यहीं पर समाप्त होता है। तो अपनी दोस्त सुषमा
1: और महिमा को दीजिए
0: इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए परिचालनगत दिशा निर्देश जारी करेंगे। यह शुभारंभ एनीमिया मुक्त भारत से एनीमिया मुक्त भारत अभियान में परिवर्तित होने के कारण एनीमिया के विरुद्ध देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा कल शंकरपुर मथुरापुर रेल खंड में आवश्यक ट्रैफिक अनुरक्षण कार्य किया जाएगा। इसके लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 तक 3 घंटे 30 मिनट का ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। ट्रैक मेंटेनेंस कार्य के कारण 3 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। लोहरदगा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री और सेवन की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चतरा जिले की लावालौंग पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए आज 912 किलोग्राम अवैध डोडा जब्त किया है। बरामद खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1,36,00,000 रूपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार इस खेप को उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही तस्कर मौके से फरार हो गए। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर शेष अधिकांश जिलों में गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने संबंधित जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: गाछ लगाओ गाछ बचाओ खेती बारी कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के सुनैना बहन बटले जोहार युवराज भाई और के हो जोहार
1: जोहार जोहार सुनैना बहन जरूर के जोहार और हमारे कर्जे सुनोया भाई बहन है उ मन के भी बहुत ढेर बगरा जोहार है
0: एकदम एकदम कहो का हालचाल है।
1: हाँ हालचाल तो एकदम नगद है और बताओ रोड दिन जो का हालचाल है काल के देखो आज हमारे ढेर दिन बाद भेटा थी तो हमारे का गोट तो इतनी बगरे हुई और आशा उम्मीद करी ला कि सब और बटे भी सब बेस हो बे
0: एकदम मूर्ख बेस है बेसी नहीं मूर्ख बेस है काले की हाँ मूर्ख बेस है।
1: अच्छा
0: ई ले बेस है कि देखो एखन मौसम ऊपर वाला भी मेहरबान है और जब ऊपर वाला मेहरबान है तो हमरे का तो बात ही अलग है नी।
1: सही बात
0: एखन समय पे तनी मनी बरसा उरसा मन भी होत है गरम लागत है लेकिन वही बीच में तने पानी मन भी आवत है जेकर से हमरे का काम तो एकदम मूर्ख तेजी से चलत है जोते के कोड़े के बीड़ा मने नी तब खाद मन छिटे के तब मुरुख चला थे तो जीव जहां तो बेस रहवे करी नी।
1: हाँ हाँ देखो हमरे किसान भाई बहन मन है कि तो हमरे तो मौसम के ऊपर में ही निर्भर रही ला
0: एकदम एकदम
1: और
0: जैसन के हम कहली जो राज भाई कि बीड़ा मन छिटे थी ने एकदम खाद मने बहुत ही मुरुख एकदम तो फिर उकरे में हम बताए चाहे जैविक खाद कर का महत्व आजकल तो बहुत सारा खाद मने बाजार में उपलब्ध है नी तो सेकंड में एक तो जैविक खाद भी है नी जेकर महत्व के जाने कर दरकार है हमरे के। ये जैविक खाद पौधा और माटी के स्वास्थ्य के बेहतर बनाए के लिए प्राकृतिक और जैविक स्रोत जैसे गोबर कचरा और वर्मी कंपोस्ट से तैयार करल गेल प्राकृतिक खाद लागे और ये माटी कर उपजाऊ क्षमता के लंबा समय तक बनाए के राखे ला नहीं तब और फसल कर पैदावार के भी बढ़ाए ला और पर्यावरण के भी प्रदूषण से बचाए ला इकर ढेर बगरा महत्व है
1: एकदम नगद बात के कह लिए देखो का है कि हमरे जैविक खाद कर जितना बगरा हमरे पर मन कर प्रयोग करब उतना हमरे कर पर्यावरण वास्ते हमरे का स्वास्थ्य वास्ते और हमरे कर देश वास्ते भी बहुत लाभप्रद है
0: एकदम एकदम जीव जहान भी बेस रहे ला, हाँ, है नहीं।
1: अगर हमने रासायनिक खाद कर हमने अगर प्रयोग कर रही थी तो सब बड़ा नुकसान है नुकसान है। सबसे पहला नुकसान का है कि हमारे का शरीर में ये दोहरा मार करेला
0: एकदम सही कहते देखो ने सेहल तो कहते देखो इकर महत्व तो बहुत बगरा है अगर जान जाबे हमरे कर किसान भाई बहन मन तो दोबारा रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करबे करबे जहाँ जहाँ जरूरत है तहे और भी मात्रा के अनुसार
1: देखो
0: तो बताए चाहब हाँ ते जैसे हो गया माटी कर गुणवत्ता और संरचना में सुधार ये जैविक खाद माटी कर भौतिक रासायनिक और जैविक गुण के बेहतर बनाएला और ये माटी के भुरभुरा और हल्का बनाएला जेकर से हवा कर संचार ठीक से होवेला और पौधा कर जड़

0: गहराई तक विकसित होवेला। सेहतेर जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होवेला। जैसे बताए चाहब कि कार्बनिक पदार्थ कर मौजूदगी कर कारण ये जैविक खाद माटी कर पानी सोखे और उके बचाए के रखे कर क्षमता के कई गुना बढ़ा देवेला है ने। और एक लाभकारी सूक्ष्म जीव कर भी विकास होवे लेकर में रासायनिक उर्वरक माटी के प्राकृतिक जीवाणु मन के नुकसान पहुंचाला। जबकि जैविक खाद माटी में मौजूद केंचुआ और लाभकारी सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और कवक के पनपे के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेला। और तो और देखो पौधा मन के भी लगातार पोषण मिले लेकर से। जैविक खाद में पौधा ले जरूरी सब प्रमुख पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्व संतुलित मात्रा में रहेला। और ये खाद धीरे धीरे अपघटित होवेला जेकर से पौधा मन के एगो लंबा समय तक लगातार पोषण मिलते रहेला। बताओ एकर महत्व तो कितना बग रहा है,
1: कितना बग रहा महत्व है लेकिन
0: और पर्यावरण और स्वास्थ्य कर सुरक्षा भी करेला।
1: सही बात है, सबसे बड़ी चीज है कि पर्यावरण कर सुरक्षा ही करेला। और आज के दिन में जैसे कि हमरे का पर्यावरण धीरे धीरे ह्रास होते जाते हैं,
0: ह्रास होते जाते हैं और हमरे कर भूमि के भी तो बंजर बनाए ला नहीं
1: बनाते जाते तो उकर वास्ते हमरे के जितना बगरा से बगरा हो सके हमरे के जैविक खाद का प्रयोग करे चाहिए। और हमरे का जे भी किसान भाई बहन मन है जे भी खेती बाड़ी करत है उनके यही संदेश देवे के चाहिए कि अगर पर्यावरण के बचाए के अपन जीव स्वांग के स्वस्थ रखे के है तो जैविक खाद का प्रयोग करो।
0: एकदम जैविक खाद एकदम पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल है, एकर से बढ़िया उपज भेटा जे मानव स्वास्थ्य लगे बेहद लाभदायक है कि नहीं। तो एकदम सुपर वाला बात हो गया
1: सही बात है। तो जानकारी से है कि हमरे का एकन चर्चा ढेर दिन बाद भेटा है तो चर्चा तो हमरे का होबे
0: करी सिराख नाम नहीं लेवत है
1: लेकिन चलो आज एक हमरे कर जो किसान है वो हमरे के नेनुआ कर खेती के बारे में बताबे। और जो किसान है वहाँ के गोविंद कुमार और एक से बातचीत है कह रहे हैं सुकेश महतो। तो चलो सुनी ला गोविंद कुमार के।
0: चलो
2: किसान साथियों जोहार। किसान भाई बहन लोग सालों भर खेती बाड़ी करते हैं और साथ ही साथ अपने खेत किसिम किसिम का सब्जी का खेती करते हैं जिसे उसका परिवार में आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होता है, साथ साथ में उसका जो घर परिवार भी चलता है बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी उसी से चलता है। वैसा ही आज हम एक किसान के खेत में आए हुए हैं और जानेंगे कि यहाँ दिखाई दे रहा है चारों तरफ से हरा भरा लहलहाते खेत जिसमें वो कैसे खेती करते हैं, उससे कितना मुनाफा होता है इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज उस किसान से कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं, कैसे सब्जी का खेती करते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। जोहार।
3: जोहार।
2: हाँ अपन परिचय बताइए।
3: मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ, मेरा गांव एरेंडा है, जिला खूंटी है, झारखंड। नाम गोविंद कुमार हुआ मेरा।
2: हाँ गोविंद भाई आपका खेत में दिखाई दे रहा है चारों तरफ से पूरा हरा भरा, क्या क्या खेती लगाए हैं?
3: नेनुआ खीरा करेली झींगी बीन बोदी भिंडी
2: मन बहुत तरह के किस्म किस्म का आप सब्जी का खेती किए हुए हैं। आप यहाँ दिखाई दे रहा है अभी नेनुआ भी यहाँ तोड़ के बाजार भी ले जा रहे हैं, तो नेनुआ का जो खेती किए हैं वो कैसे करते हैं इसका बारे में थोड़ा सा बताइए।
3: इसका तो खेती जनवरी फरवरी में लगता है, पहले खेत को गहरी जुताई करके एक डेढ़ महीना छोड़ना पड़ता है, उसके बाद गोबर बिखेर के फिर जुताई करके थोड़ा दिन छोड़ के उसके बाद नाली बना के इसके बाद इसको लगाया जाता है लाइन में।
2: अच्छा जो नेनुआ का खेती किए हैं उसका जो बीज लगाते हैं उसका दूरी क्या होता है?
3: एक से डेढ़ फीट का दूरी रहता है पौधा से पौधा, और लाइन से लाइन का दूरी 4 फीट।
2: लाइन से लाइन के बीच में 4 फीट और
3: पौधा से पौधा 1.5 फीट।
2: 1.5 फीट में। अच्छा गोविंद भाई ये बताइए कि आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है?
3: मेरा तो पढ़ाई लिखाई वैसे बोलिएगा तो मैट्रिक किए हैं, उसके बाद 6 महीना ITI किए हैं।
2: 6 महीना ITI किए हैं, तकनीक से भी आपको जानकारी है, तो खेती बाड़ी से आपको कहाँ से प्रेरणा मिला?
3: ये तो हम लोग का खानदानी व्यवसाय है, बाप दादा परिया से करते आया है, इसलिए हम भी यही काम कर रहे हैं।
2: तो खेती बाड़ी से ही

0: से लाइन बनता है।
1: मैंने ट्रैक्टर से लाइन बनता है,
0: हाँ,
1: तो इसमें खाद सब क्या क्या देते हैं?
0: खाद में तो हम लोग ज़्यादातर गोबर ही देते हैं और थोड़ा बहुत यूरिया डीएपी का यूज करते हैं, बाकी केमिकल का तो यूज नहीं करते हम लोग।
1: जुताई करने के बाद में इसमें गोबर खाद को बिछा देते हैं, फिर उसको और फिर पलटी मार देते
0: हाँ,
1: हैं।
0: पलटी मार देते हैं। जैसे 10 डिसमिल में पौधा, लाइन से लाइन का दूरी तो 4 फीट है।
1: अच्छा, और जो इसका जो लतर वाला है तो इसका क्या व्यवस्था करते हैं?
0: पहले इसका बांस का नपाई करके स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उसमें फिर तार और बल्ली लगा के और रस्सी खींच के इसको मचांग में चढ़ाया जाता है। मंडप विधि से खेती होता है।
1: कितना एरिया में होगा खेती?
0: खेती तो अभी खाली नैनुआ का 1.5 एकड़ प्लस में है।
1: 1.5 एकड़ जगह में सिर्फ नेनुआ का खेती लगा हुआ है, और एक खेत अपना है कि
0: हाँ, अपना खेत है ये।
1: अपना खेत है?
0: हाँ,
1: सिंचाई का क्या सुविधा है?
0: बोरवेल लगा हुआ है और बोरवेल में गवर्नमेंट का तरफ से सोलर पंप भी दिया हुआ है, दोनों से चलता है। 5 KVA का सोलर पंप लगा हुआ है और 3 KVA का लाइन मशीन लगा हुआ है।
1: इतना गर्मी का दिन में जल स्रोत बहुत नीचे चल जा रहा है, तो इतना खेत लगाए हुए, खेती किए हुए हैं, उसमें पटवन का कोई दिक्कत नहीं होता है?
0: नहीं, दिक्कत तो नहीं होता है। हम लोग का यहाँ पानी का लेयर बहुत ऊपर है, 70 फीट में बोरिंग चल रहा है अभी।
1: इसमें जो खेती लगाए हैं, 1.5 एकड़ जगह में नेनुआ लगाए हैं, इस मैंने खेती करने के लिए नेनुआ का खेती किए हैं, उसमें 1-1.5 लाख का लागत आया है।
0: हाँ, गोबर खाद और यूरिया डीएपी सब सब मिला के, लेबर उबर मिला के तो 1.5 लाख पहुंच जाता है 1 एकड़ पीछे।
1: कौन कौन सा खाद का प्रयोग करते हैं?
0: खाद में तो हम लोग यूरिया और डीएपी का ही करते हैं, बाकी दूसरा
1: जब
0: है कि अपना जमीन है तो हम लोग ज़्यादातर गोबर ही देते हैं। साल में एक बार पूरा खेत में बिखेर देते हैं तो फिर साल भर हम लोग को फिर कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ता।
1: गोबर का खाद डालते
0: हाँ,
1: हैं।
0: डर
1: अच्छा, सिंचाई का क्या विधि, कैसे करके पटाते हैं?
0: अभी तो हम लोग ओपन ही दे रहे हैं, ओपन फ्लो सिस्टम से। ड्रिप का सिस्टम हम लोग नहीं लगाए हैं, क्या है कि गर्मी में मचांग खेती करते हैं और बरसात में फिर पौधा वाला खेती करते हैं, तो ड्रिप में वैसा सिस्टम नहीं बन पाता है। उसमें तो क्या है कि लाइन बाय लाइन छोटा छोटा लाइन रहता है, तो उसमें ड्रिप लगाने से सक्सेस नहीं होगा, इसीलिए हम लोग नहीं करते उसे।
1: मैंने हमेशा जोताई कोड़ाई होते रहता है, तो उसको
0: हाँ
1: हटाना पड़ता है।
0: हाँ हर 3 से 4 महीना में हम लोग फसल चेंज करते रहते हैं। जैसे ठंडा का सीजन में गाजर हो गया, गर्मी में नेनुआ हो गया, फिर बरसात आएगा तो बीन मटर सब का खेती करेंगे।
1: ये नेनुआ का खेती जो लगाए हैं, कौन महीना में लगाते हैं और कितना दिन के बाद ये तैयार होता है?
0: हम लोग इसको खेत इसका तैयार हम लोग 25 दिसंबर के बाद से शुरू करते हैं, तो फरवरी लास्ट तक में इसको लगा देते हैं और तैयारी मार्च अप्रैल से चालू होता है, तो अभी मई जून तक, जून तक रहेगा।
1: जब फसल तैयार हो जाता है, इसका तोड़ाई होता है, उसके बाद में इसका बाजार व्यवस्था क्या है?
0: इसका बाजार तो हम लोग खुटी बाजार ले जाते हैं, हम लोग का नज़दीकी बाजार है, सप्ताह में 2 दिन लगता है, वहीं हम लोग लेके बेचते हैं। बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता है।
1: तो इसका रोज दिन तोड़ाई करते हैं कि कुछ अंतराल में?
0: एक दिन छोड़ छोड़ के करते हैं, जैसे 50 डिसमिल का एक दिन तोड़े, 50 डिसमिल का फिर दूसरा दिन तोड़ते हैं, ऐसा करके तोड़ते हैं।
1: मैंने अल्टरनेट तरीका से एक खेत को आज तोड़े तो कल दूसरा खेत को तोड़े हैं, इस तरह का करते हैं?
0: हाँ, हर खेत को एक दिन का टाइम देते हैं ताकि साइज सेम भर आए, और ज़्यादा दिन छोड़ने से तो थोड़ा साइज ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं।
1: गोविंद भाई, ये इतना का स्थिति वैसा है?
0: पिछला साल तो पत्थर आया था, इस बार तो वैसा नहीं आया है प्राकृतिक आपदा। अभी तक तो बारिश हम लोग के यहाँ चालू नहीं हुआ, इसलिए वैसा नहीं हुआ। हाँ, कीड़ा लगता है छोटा पौधा में, थोड़ा भगजोगनी बोलते हैं, इसका प्रकोप होता है, और एक डंक मक्खी है इसका, तो हम लोग अल्फा मेथिन दवा का नाम है, ये दवा डाल देते हैं। एक टंकी दवाई में वही 20 ml दवाई देते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। ऐसे ही नेनुआ का फसल में कीड़ा उतना लगता नहीं है, खाली जो है कि डंक मक्खी से ही इसको थोड़ा दिक्कत है।
1: आपका यहाँ लागत कम से कम 1 से 1.5 लाख बताए, तो
0: हाँ,
1: इसका मुनाफा कितना तक होता होगा?
0: वो तो बाजार भाव का ऊपर में है, अगर 20 रुपया किलो भी अगर हो जाएगा तो मान के चलिए 1 लाख लगाए हैं तो 20-30-40 हज़ार तक आपका प्रॉफिट निकल जाएगा 3-4 महीना में।
1: मैं 3-4 महीना में आप 30-40 हज़ार रुपया इससे निकाल लेते हैं।
0: हाँ निकाल लेते हैं, अगर 20-30 का रेट पकड़ लेता है तो, और अगर

0: रेट अगर डाउन रहेगा तो फिर जो प्रॉफिट जो पूंजी है उससे थोड़ा बहुत ही निकल पाएगा। जब लगाते हैं उस समय का में तो थोड़ा प्रॉफिट होता है, उस समय का है कि 40-50 का रेट रहता है, तो उस समय मान चलिए 1 लाख लगाइए तो 2 लाख होगा।
1: इतना खेती है, इतना रोज तोड़ाई होता है, क्या इसका बाजार बेचने के लिए क्या बाहर भी भेजते हैं क्या?
0: नहीं अभी तो हम लोग बाहर नहीं जा रहा है, कहे कि नैनुआ का ट्रांसपोर्ट दिक्कत है, थोड़ा का इसका शिकायत है, ज़्यादा दूर भेजने से गाड़ी में दब जाता है, इसलिए हम लोग लोकल मार्केट में ही इसको बेचते हैं।
1: नेनुआ अधिक टिकाऊ खेती नहीं है, तोड़ने के बाद में अधिक दिन नहीं रहता है, इसलिए लोकल बाजार में ही आप बेचते हैं।
0: नहीं तोड़ने के बाद में एक ही दिन में इसको मतलब सेल कर देना है, नहीं तो काला पड़ जाएगा दूसरा दिन से, फिर इसको खरीदने वाला कोई नहीं है, एक ही दिन में इसको बेचना है।
1: अच्छा, तो गोविंद भाई आपने खेती किए हैं और नेनुआ खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
0: जोहार।
2: तो एखन हमरे जानकारी करत रही कि एगो किसान कर ने किसान हमरे कर रहे गोविंद कुमार, जिनकर से हमरे जानकारी करत रही नेनुआ का खेती कातिर करल जाए सके, और इनके बतात रहे इनका से बातचीत कर रहे हैं सुकेश महतो। तो ये तो जानकारी हो गई नेनुआ कर। ए भाई रोड झोला में भी नेनुआ है, मतलब बहुत पसंद करे लो रोड
3: नहीं? सही बात है, पसंद तो है काले के, अखन देखो सीजन भी है उकरे नेनुआ का।
2: ओ देव
3: हाँ
2: दादा कर भी थैला में देखा थी दमुरुख है,
3: हाँ
2: पत्ता है उकर में नेनुआ में नेता नहीं सुन, चना दाल के भी फुलाए के डाल के बनाओ ना, बड़े स्वाद लगे ला।
3: सही बात है कि
2: अच्छा
3: देखो
2: घर जाए कि सब करते रह, तब तक हमारे एक ठो गीत गोविंद एक ठो मनोरंजन भी होवे चाहिए, तो चलो तब एक ठो नागपुरी में कृषि गीत सुनी ला है ने।

0: तो एखन हमरे कृषि गीत सुनत रही नागपुरी में, जेके गा रहे हैं शहाबुद्दीन अंसारी और संगीमन। तो युवराज भाई और काजो गाड़ी है आगे,
1: तो चलो एक ठो हमरे चलते चलते एक ठो सुन ले विला संरक्षित खेती आज की आवश्यकता, और एक विशेषज्ञ है डॉक्टर अवनी कुमार सिंह।
2: किसान साथियों जोहार। किसान साथियों, आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं ICR पलांडू के हेड डॉक्टर अवनी कुमार सिंह। अभी अभी आपने यहाँ पदभार ग्रहण किया है और आपके संरक्षण में ICR काफ़ी तरक्की करेगा और नए नए यहाँ प्रयोग किए जाएंगे और यहाँ के किसान काफ़ी लाभान्वित होंगे। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी क्या प्राथमिकता है, और साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि संरक्षित खेती क्या है और ये आज की बहुत महती आवश्यकता है। डॉक्टर अवनी सिंह साहब, स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपने अभी हाल में ही यहाँ ICR प्लांडो का पदभार ग्रहण किया है, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।
3: और मैं भी आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
2: जी, और उम्मीद है कि आपके आने से यहाँ एक नया ढंग का वातावरण मिलेगा, खेती के क्षेत्र में किसान जागरूक होंगे और नए नए तरीके से खेती करेंगे और नए वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या प्राथमिकता है पूरे प्रदेश के लिए।
3: सबसे पहले तो हम पूरे रांची और झारखंड के किसान भाइयों को जोहार बोलते हैं। प्राथमिकता की बात करें तो उद्यान की फसलों को हमारा प्रयास रहेगा अधिक बढ़ावा दिया जाए, उनकी प्राथमिकता ज़्यादा रहे, जिसमें हम फलदार वृक्षों में जैसे आम है और आपका लीची है, अमरूद है, कटहल है, संतरा है, इन जितने भी फलदार वृक्ष हैं जो रांची में व्यवसायिक रूप में अपनाए जाते हैं, उनके पौधोत्पादन की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा मेरी रहेगी। उसके साथ साथ मैंने यहाँ देखा सब्जियों के बीज हैं प्राइवेट कंपनियों के बहुत महंगे मिलते हैं, तो हमारी जो प्रजातियाँ हैं, अच्छी प्रजातियाँ हैं जो प्रतिरोधी हैं बारिश के अगेंस्ट, जो वर्षा में रोग लगता है उसके प्रतिरोधी प्रजातियों को, जो हमारे यहाँ टमाटर की हैं, मिर्च की हैं, कद्दू भर की हैं, जितनी भी प्रजातियाँ हैं, उनका भी बीज उत्पादन करके किसानों के घर घर तक पहुँचाने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे पास जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके साथ मिल करके हम किसानों के खेत में, किसानों के घरों तक नई नई तकनीकों को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ जैसा कि मैं देख रहा हूँ रांची में अगर बात करें बारिश की, ये बारिश का महीना बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है खासकर सब्जी के फसल उत्पादन में, तो इसमें हमने देखा कि एक संरक्षित खेती नाम की तकनीक है जिसमें पाली हाउस, पाली

0: टनल, नेट हाउस, सेट नेट हाउस, क्लोचेज, पॉली मल्चिंग, डिप्रिकेशन, ये सारी चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे और ये हमारे जलवायु परिवर्तन के अगेंस्ट माने उसके विरोध में खड़ा हो करके हमारी सब्जियों के फसलों को बहुत ही सुरक्षित और संरक्षित करके और उत्पादन देती हैं।
1: तो एखन हमरे एगो प्रश्नोत्तरी सुनत रही, संरक्षित खेती आज के आवश्यकता का रह सके, इके बतात रहे विशेषज्ञ डॉक्टर अवनी कुमार सिंह और इनकर से बातचीत कर रहे संजीव कुमार लाल। समय के अभाव के चलते हमरे मन के पूरा नहीं सुन पा ली, तो चलो तब अगला दिन हमरे फिर से सुनब, जानकारी करब है नी। और जाते जाते बताए चाहे आपके ई कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल कर, तो चलो फिर अगला दिन फिर से भेटब।
2: लगे सके सबके जोहार।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओ, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। आए शामिल होते हैं हमारे दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।

रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार। आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे सुनिए विविधा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 234। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, इसमें सुनिए विविध भारती के खजाने से गायिका विदुषी डॉक्टर प्रभा आत्रे से बातचीत। इस कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, लेखक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर।

के फनकार का समय रहेगा 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। इसमें सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे सेहतनामा में सुनिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है उलझन। हवामहल का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। कल हवामहल में सुनिए झलकी ब्लैक एंड व्हाइट, लेखक महावीर सिंगल, निर्देशन आनंद किशोर माथुर का। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। छाया गीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। आलेखो स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

0: खुदा है कहाँ रे तू।
1: अभी आपने पी के फिल्म का गाना सुना सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा था सोनन किरकिरे ने, संगीत शांतनु मोइत्रा का था। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में 20 साल बाद फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सरिता
1: मित्रों नमस्कार। आप सुधी श्रोताओं के लिए आज हम चुन लाए हैं एक प्रख्यात गायक कलाकार से की गई भेंट वार्ता, आइए सुनते हैं।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित सी आर व्यास। व्यास जी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: व्यास जी, आपके षष्ठी पूर्ति समारोह में श्री पीएल देशपांडे ने बड़ा रोचक और बड़ा ही सुंदर भाषण देते हुए कहा था कि कलाकार कभी रिटायर्ड नहीं होता, और उनमें से आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। इस बारे में आपके क्या ख्याल है?
3: वो तो बात सच है, क्योंकि कलाकार जब अपने कला में मग्न रहता है और पूरा टाइम उनको दे के अपनी साधना करता है, वो कहते हैं कि कलाकार ये सोच में कितना साल गुजरे उनको खुद को मालूम नहीं होता है, वो तो विचार में अपने हमेशा के लिए वो तरुण ही रहता है।
2: बहुत सुंदर। व्यास जी, आपने संगीत की शुरू की तालीम प्रारंभिक कब शुरू की?
3: 10 साल से शुरू किया।
2: 10 वर्ष की आयु से?
3: 10 वर्ष की आयु से। लेकिन पहले जो मैं गाता था वो तो हल्का फुल्का गाना गाता था। जब मैं 14-15 साल का हो गया तब किराना घराने में
2: जी।
3: मेरे पहले गुरु जी थे पंडित गोविंद राव भातम्ब्रेकर।
2: अच्छा।
3: उससे मैं तालीम पाया 6-7 साल उनके पास सीखता था मैं
2: जी।
3: अच्छी टाउन करके जो हाँ वहाँ जहाँ रहते थे वो
2: जी,
3: वो तो वहाँ मैं तालीम पाया, और वो खुद को कहते थे कि वो किराना घराने के
2: गायक
3: है।
2: अच्छा। लेकिन जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आप ग्वालियर घराने के गायक हैं।
3: हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि मेरा जब स्कूल एजुकेशन थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं सोचता था तब मेरा गाने का बहुत मैं आगे जा चुका था, लेकिन मेरा खुद का विचार ऐसा नहीं था। मेरे को ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मुझे अच्छी तालीम मिलेगी। जब मैं मुंबई आया, मेरा उम्र था 18 साल की
2: जी,
3: और तब मैंने ग्वालियर
2: घराने
3: के राजा राम बाबा पराडकर जो थे मेरे गुरु जो कैलाशवासी पंडित राजा राम बाबा पराडकर से तालीम शुरू किया।
2: ग्वालियर घराने के बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर घराने की गायकी अपने आप में एक समृद्ध गायकी है।
3: उस घराने की पहली एक स्पेशलिटी यानी मतलब था कि

0: भाई जो गायक एक राग में
1: जी
0: अनेक ख्याल गा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: कोई गायक वो ग्वालियर घराने में ऐसा रहते कि भाई एक यमन राग लिया है उसमें एक ही ख्याल आता है, एक द्रुत ख्याल आता है, एक बड़ा ख्याल आता है उसे, वो तो 15-15, 20-20 ख्याल एक एक रागों में बहुत आसानी से गाते याद करते थे।
1: ग्वालियर घराने का उपजंग के बारे में भी
0: ये
1: सुना है कि बहुत
0: उपजंग तो हर घराने में रहती है।
1: अच्छा,
0: कलाकार में होना चाहिए, लेकिन उपजंग क्या होता है वो समझना बड़ा,
1: जिसके जरा हमें समझाते हुए
0: इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा।
1: वैसे बता,
0: वैसे तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि अभी एक समझो एक राग है जैसा केदार है।
1: अच्छा,
0: तो अभी आलाप में

0: जैसा वो ले रे लगाने का जो तरीका है ना
1: जी,
0: ये उपजांग ही समझा जाता है कि वो हर एक अलाप में वो अलाप बढ़ाते बढ़ाते वो रे ऐसा ही लगाना चाहिए। अतः ये एक सुर का हो गया। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उपज का एक सुरों का पुंज होता है, जैसा केदार में लेंगे मम रे सा रे सा रे रे सा सा, मम रे सारे सारे रे सा सा। अभी ये छोटा हो गया ना, इसमें ले में गा में जब उसकी तान बनती है ना, मम रे सारे सारे रे सा सा, मम रे सारे रे सा सा रे रे सा सा, पापा मम रे सा रे रे सा सा रे रे सा सा, दादा पादा पापा मामा पापा मम रे सारे सारे रे सा सा। ये जो उपज है ना वो हमेशा के लिए ऐसा एक रूल था, यानी नियम था वो घराने में कि जब एक उपज चालू हो गया तो उपज की पूर्तता वो आखिर में वही चीज आना चाहिए
1: जी,
0: तब उपज की पूर्तता हो गया।
1: तो ग्वालियर घराने में भी आलाप और
0: ये सब बातें थी, आलाप बोल आलाप, पहले बोल आलाप फिर बोलांकित कुछ ताने,
1: कुछ ख्याल पर ज्यादा उनका ध्यान रहता था। ख्याल
0: ख्याल हाँ, ख्याल तो याद करना बड़ा, ख्याल तो पहले, अगर ग्वालियर घराने में पहले ये नियम था कि जब कलाकार अपने स्टेज पे बैठ के प्रोग्राम देता था ना तो पहले वो ख्याल की बंदिश उसकी स्थाई दो दफे गा के लेंगे, बाद में अंतर दो दफे गाएंगे, फिर उसके बोल आलाप जो भी कुछ गाने का ढंग होता है उस ढंग से चलेगा। बिना ख्याल पूरा गा के कभी वो गाना चालू नहीं करते थे। अगर ऐसा किया तो कुछ कलाकार ऐसे मानते थे कि उसको तालीम अच्छी नहीं है।
1: व्यास जी, ग्वालियर घराने के साथ साथ आपने आगरा घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित से भी तालीम हासिल की।
0: बहुत।
1: तो अपने गायन में आपने आगरा घराने की गायन शैली के किन अंगों को अपनाया है?
0: राम सिंह साहब, एक बात है कि एक बात बताना पड़ेगा मुझे। जगन्नाथ बुआ पुरोहित जिसको जिनको जिनका गाने में नाम था गुनीदास
1: जी, हाँ।
0: तो आगरा घराने में तो तालीम पाया
1: जी,
0: खासा है बुला विलायत हुसैन खा साहब के पास बहुत साल वो सीखते थे
1: जी।
0: लेकिन मैं जब बुआ साहब के पास गया तो इस सोच में नहीं गया था कि मैं आगरा घराने की गायकी सीखना चाहिए मुझे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: लेकिन मैं उनके पास गया एक बात में कि भाई वो बहुत भावनिक गाते थे,
1: अच्छा,
0: खुद बुआ साहब
1: जी,
0: तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने में ये बात आना चाहिए। अभी इसको बहुत लोग ऐसे बोले थे कि क्या भावनिक गाना क्या होता है अभी, और ये ग्वालियर में नहीं था, आगरा में नहीं था, तो ये तो बताने की बात है। हम बोलेंगे वही ग्वालियर में क्या होता है, जमेली बोली जो बागोला बैगोंदेला मोरे वाले निया, जमेली बोली जो, ये ग्वालियर का पेताड़ा ही ऐसा है। वो सब गायकी ऐसी जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से आगरा की जाएंगे, पहले ख्याल गाएंगे फिर ऐसे ही गालते जाएंगे, लेकिन उसमें भाव नहीं प्रकट होता है। जैसा भाव अगर वो जगन्नाथ बाबा जब गाना सुनेंगे ना तो वो एक भाव प्रकट होता था कि भाई कैसा भाव है,

0: सुर लगाने का तरीका और उसमें भाव प्रकट करना, यानी आप खुद कलाकार कुछ ऑडियंस को कहने को चाहता है ऐसा लगता है। तो इस बात को मैंने ध्यान देके और ये अपना चाहिए, इसके लिए भी बहुत सबके पास।
1: आप जैसे कलाकारों ने तो अपने जीवन में वर्षों की सतत साधना की और तब जाकर किसी एक मकाम पर पहुंचे हैं। आज की जो तरुण पीढ़ी है वे संगीत को आज पूरा समय अर्पित नहीं कर सकते, मतलब जीवन यापन भी जरूरी है और साथ साथ ये भी आशा रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सीख भी जाए, प्रसिद्धि भी पाले।
0: वो तो एक बड़ा ऐसा सवाल आप पूछा है, यानी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आज के जो तरुण कलाकार हैं वो बड़े अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: बड़े अच्छे गाने वाले हैं और बड़े

0: टैलेंटेड है
1: जी,
0: लेकिन तालीम कहाँ से पाना चाहिए, कैसी पाना चाहिए, और जो तालीम मिलती है वो अच्छी है या नहीं, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो जानकर वो जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे कहाँ से, तो बड़े अच्छे गायक बन जाएंगे और अपना गुजारा भी उनके ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कोई यंगर टैलेंट्स है मेरे अच्छा, सामने
1: आप और बड़े आशावादी हैं कि भविष्य बड़ा उज्जवल है हमारा देश का,
0: बहुत अच्छे अच्छे अच्छे यंगर जनरेशन में मैंने देखा है, बॉयज है गर्ल्स है, बहुत अच्छे गाते हैं
1: सीख रहे हैं।
0: लेकिन इतना ही बात है कि जैसे पुराने जमाने में तालीम एक बात होती है, वो तालीम नहीं पा सकते वो, और वो तालीम अच्छी तरह से पाना चाहिए उसने, देखना चाहिए कि भाई हम जो करते हैं वो ठीक तरह से करते हैं कि नहीं।
1: आपकी बातचीत में मैं इन बातों का पता चला कि एक तो निष्ठा की बड़ी आवश्यकता है, एकाग्रता और साधना,
0: ये सब बातों पे ही निर्भर है ये कला। अगर कोई निष्ठा नहीं रखेंगे, अपने गुरु से सीखते हैं लेकिन गुरु से निष्ठा नहीं रखते हैं, तो ये तो बात चलेगी नहीं।
1: व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नमस्कार।
0: भी आपका नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पंडित C.R. व्यास से की गई भेंट वार्ता। भेंट वार्ता कर रहे राम सिंह पवार। ये भेंट वार्ता वर्ष 1985 में विविध भारती से पहली बार प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आज पंडित C.R. व्यास हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके विचार हैं जो हमने उनसे की गई भेंट वार्ता में सुने, और उनका गायन भी हम सुनेंगे। लीजिए सुनते हैं पंडित C.R. व्यास का गाया राग बिहाग। बंदिश के बोल हैं ले जा रे जा पथिकवा। हारमोनियम संगत अनंत राणे की, तबला संगत विभव नागेशकर। राग बिहाग, गायक पंडित C.R. व्यास।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: तीनों कॉलेज में

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समुद्र से लेकर आकाश तक भारत सुरक्षित। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन के लिए जताया आभार। रिम्स की जमीन अतिक्रमण मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई, आरोपी बिल्डर गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। झारखंड में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 61 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचेगी दो बूंद जिंदगी की, लोगों से जन भागीदारी की अपील। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में सफलता, चतरा में 912 किलो डोडा बरामद, लोहरदगा से दो तस्कर गिरफ्तार, रांची में भी कार्रवाई। और बोकारो के गोमिया क्षेत्र में 30 हाथियों के झुंड ने डाला डेरा, वन विभाग ने कई गांवों में हाई अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली स्थित आवास पर प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का श्रवण किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से समस्त देशवासियों से सीधा संवाद उनके जन जन के प्रति समर्पण और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है।

0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा के सदर पश्चिम मंडल टेकरा हातू ग्राम के बूथ संख्या 42 में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक रूप से अनुश्रवण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। यह शुभारंभ एनीमिया के विरुद्ध देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रिम्स की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अपार्टमेंट निर्माण और बिक्री से जुड़े मामले में बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी कंपनी पर रिम्स की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर फ्लैटों की बिक्री करने का आरोप है। मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची सदर अस्पताल से आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र बनाए रखने के लिए जन सहभागिता जरूरी है।
2: पिछले 15 साल से भारत में पोलियो नहीं है, लेकिन अभी भी संभावना हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अभी भी बचा हुआ है पोलियो और एक देश से दूसरे देश में भी जाने में देरी नहीं लगती है, तो इसलिए ये प्रिकॉशन सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। पोलियो हटने में कोई केवल स्वास्थ्यकर्मी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए सबसे जरूरी हुई जन भागीदारी।
0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत साहिबगंज पाकुड़ समेत सभी जिलों में बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। चतरा जिले की लावालौंग पुलिस ने आज 912 किलोग्राम अवैध डोडा जब्त किया है। बरामद खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1,36,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार इस खेप को उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही तस्कर मौके से फरार हो गए। इधर लोहरदगा जिले में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस को दोहरी कामयाबी मिली है। नामकुम थाना क्षेत्र के कटियातू से अवैध हथियार के साथ पुलिस ने एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया है। सदर DSP अमन कुमार पांडे ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार शूटर पिछले 10 जून को जमीनी विवाद में गोलीकांड में शामिल था। वहीं तैमारा घाटी से रामपुर आ रहे एक बाइक सवार तस्कर को अफीम के साथ गिरफ्तार किया है।
3: बरामद अफीम के स्रोत के संबंध में जब उससे पूछताछ की गई, उसके द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष उसके द्वारा अपने ही खेत में अफीम की अवैध खेती की गई थी। गत वर्ष से वो अपने पास अफीम संग्रहित करके रखा हुआ था। पूछताछ के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ है कि पूर्व में भी वो अफीम की कई खेत की बिक्री कर चुका है। उसके द्वारा कुछ व्यक्तियों के भी नाम बतलाए गए जो कि खरीदार हैं, उनको भी चिन्हित कर लिया गया तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु भी छापेमारी की जा रही है।
0: बोकारो के गोमिया क्षेत्र में हाथियों के बड़े झुंड ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। करीब 30 हाथियों का दल गांव में आसपास डेरा डाले हुए है। झुंड में 2 से 3 गर्भवती हथिनियां शामिल हैं, जिनके कारण उनके लंबे समय तक इलाके में रुकने और अधिक आक्रामक होने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने कई गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है।
4: इस झुंड में 2 से 3 गर्भवती जो

0: वतनिया है, इस वजह से ये झुंड आक्रामक होने की संभावना है। खास तौर पर इसी वजह से एहतियात रखने की कि झुंड के पास ना जाए, सेल्फी लेने पास में ना जाए, और जो रात के समय में भी अपने घर से बाहर ना निकले, आप कोई वन क्षेत्र में कोई गाड़ी या वाहन लेकर, लाइट लेकर वहां ना जाए।
1: मौसम केंद्र रांची ने राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर शेष अधिकांश जिलों में गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने संबंधित जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। SGFI ने उत्कृष्ट आयोजन और खिलाड़ियों के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए झारखंड को 2 राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। विभाग को पहला सम्मान सराहना पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया, वहीं दूसरे सम्मान के रूप में झारखंड को 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल के सर्वश्रेष्ठ आयोजक के लिए द्वितीय स्थान से सम्मानित किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समुद्र से लेकर आकाश तक भारत सुरक्षित। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन के लिए जताया आभार। रिम्स की जमीन अतिक्रमण मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई, आरोपी बिल्डर गिरफ्तार, अन्य आरोपितों की तलाश जारी। झारखंड में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 61 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचेगी 2 बूंद जिंदगी की, लोगों से जन भागीदारी की अपील। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में सफलता, चतरा में 912 किलो डोडा बरामद, लोहरदगा से 2 तस्कर गिरफ्तार, रांची में भी कार्रवाई। और बोकारो के गोमिया क्षेत्र में 30 हाथियों के झुंड ने डाला डेरा, वन विभाग ने कई गांवों में हाई अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पापा
3: लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
1: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: बोकारो स्टील सिटी में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का तीरंदाजी टूर्नामेंट होने जा रहा है। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर लंबोदर महतो ने बताया है कि अगस्त में होने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से 700 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज हिस्सा लेंगे। यह बोकारो के लिए गौरव की बात है।
2: टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य, शानदार और ऐतिहासिक बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये इतने महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश भर के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे और लगभग 1000 खिलाड़ी, सभी ग्रुप का मिलाकर लगभग 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। आयोजन 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक इसका आयोजन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में होगा। व्यवस्था निश्चित रूप से जैसा भारतीय तीरंदाजी संघ और झारखंड तीरंदाजी संघ का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो भी इस एनआरटी में भाग लेंगे निश्चित रूप से गाइडलाइन के हिसाब से।
1: राष्ट्रीय तीरंदाज बोकारो जिला तीरंदाजी संघ की महासचिव एंजिला सिंह ने कहा है कि इस टूर्नामेंट से खेल के क्षेत्र में बोकारो की नई पहचान बनेगी।
3: वो लोग को देखना और वो लोग का आना हम लोग के लिए, बोकारो के लिए बहुत बड़ी बात। बच्चा लोग का, वो लोग का देखने के बाद स्पोर्ट्स का जो एक जो अभी जो रुक गए हैं वो हमको लगता है कि एक अभी 20% नहीं, हमको लगता है 80% तक बढ़ जाएगा। उन लोग को देखे, उन लोग का हिम्मत देखनी, तो एक लोग का एक जो बोलता है ना, एक ओलंपिक खेलने वाला बच्चा, आने वाला जो प्लेयर सब, जब उन लोग को देखने के बाद बच्चा लोग का अपने आप मन बढ़ना ही बढ़ना है।
1: बोकारो सदर अस्पताल के सफाई कर्मी बकाया

0: काम कर देंगे। हम तो बोल रहे हैं आप लोग जाके ये सिविल सर्जन से पूछे, यहाँ का प्रबंधक से पूछिए कि पेशेंट जो आ रहा है उसका स्थिति क्या हो रहा है।
1: सफाई कर्मियों की हड़ताल पर सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने कहा, कुछ नेताओं की बात में आकर ये हड़ताल पर चले जाते हैं। उनके बकाया वेतन के सवाल का सिविल सर्जन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था।
2: ये अनावश्यक रूप से स्ट्राइक को लोग बुलाया है सफाई कर्मी। पूरे बोकारो जिला में हमारे यहाँ सफाई कर्मी में केवल सदर अस्पताल के कर्मी लोग ही जो 30-32 जो हैं वही लोग स्ट्राइक में हैं। वो भी 2 महीना का इन लोगों का भुगतान बाकी था, जिसमें कि मैंने प्रेशर दिलवा के आउटसोर्स कंपनी से 1 महीना दिलवाया और 1 महीना का और प्रोसेस में आजकल में वो भी चला जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग कहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमेशा स्ट्राइक। आप याद कीजिए पूर्व में क्या था, 4-5 महीने तक भुगतान नहीं होता था, तो वो अभी स्थिति नहीं है। मेरे आने के बाद एकदम स्ट्रीमलाइन हो गया, सब का ईपीएफ पीएसआई जितने तरह का कार्ड होते हैं, आई कार्ड वगैरह सब बन गया, सब यूनिफॉर्म में ड्रेस सब मिल रहा है।
1: बोकारो में अभी तक मानसून की बारिश नहीं होने से जिले के किसानों को सूखा पड़ने का डर सता रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
3: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओ, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण सुनने के लिए आए शामिल होते हैं हमारे दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
1: Enough time to cross for a single. So Shefali on strike, 22 without loss, 3.4 overs gone. This time Shefali again on the rise, picks it up and over the boundary for a sixer.
2: ये लगा आभा का छक्का।
1: This was outside the off stump, loose delivery and Shefali.

1947 में देश के विभाजन के साथ ही हमारे देश से अलग हुए मुल्क ने सीमा पार से कबायली हमले तेज किए। छुप छुप कर होते इन हमलों ने देश की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बेहद संवेदनशील बना दिया। इन हमलों को रोकने और दुश्मनों को सबक सिखाने के मद्देनजर बिशन सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पहले सिख यूनिट को तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद बिशन सिंह ने भारतीय सेना को चुना और यहीं अपने वतन की सेवा करना चाहा। सिख रेजिमेंट के इस जाबाज अफसर को युद्ध का खासा अनुभव भी था और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भी वो भली भांति परिचित थे। हालांकि इस सरहदी इलाके फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

अक्टूबर माह 1947 से ही भारतीय सेना की सरगर्मियां यहां देखी जा सकती थीं। बंकर में छिपी शत्रु सेना के रह रहकर होते हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जाते थे। सीमा पार से कबाइलियों की घुसपैठ और तेज हुई और भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा। सूबेदार बिशन सिंह की सेना के कूच करने से पहले ही दुश्मन फौज ने भारतीय सैनिकों की पहले भेजी गई टुकड़ी पर हथगोले और धारदार हथियारों से हमले किए और आगे बढ़ती भारतीय सेना के लगभग 10 जवानों को अपना निशाना बनाया। हमारी सेना के कुछ जवान इस हमले में घायल भी हुए। आगे बढ़ते इन जवानों को बिना वक्त गवाए बिशन सिंह की सेना ने कवर दिया और मोर्चे पर सबसे आगे खुद सूबेदार बिशन सिंह थे।

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। दिसंबर 1947 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई ये जंग देश के इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिस पर हौसलों से फतह पाई गई। पहली सिख रेजिमेंट के शेर दिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के सफल संचालन से भारतीय सेना को इस मोर्चे पर फतह हासिल हुई और दुश्मनों को शिकस्त। कबायलियों और दुश्मन सेना को इस कदर पीछे धकेल दिया गया कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों उन्हें भला दुश्मन कब मार सकता।

फौजी साथियों, भारत से अलग हुए पड़ोसी देश के साथ सन 1947 में लड़ी गई इस जंग में पहले सिख रेजिमेंट के होनहार और बहादुर सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को सेना के सफल संचालन, उनकी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और असाधारण पराक्रम, उनके बलिदान, वीरता, अदम्य साहस के लिए इस जंग में शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने और फतेह का तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार ने सूबेदार बिशन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सूबेदार बिशन सिंह को सलाम करते हैं।

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार। आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज और अजनबी।

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत कंवर जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए अजनबी फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामलमीत।

0: आज तो बड़े बाबू भाई वाह, क्या कहने। अरे किसका कत्ल करके चले आ रहे हैं?
1: देखो चौबे, औकात में रहो।
0: क्या बात है, आज आपके होठों पर आशिकी नगमा।
1: गुनगुना क्या दिया, लग गया सबको चरपरा। और जब पिद्दी से लौंडे आजकल तरह तरह के गाने गाते फिरते हैं, तो हमने जरा सा गुनगुना दिया, इसमें कौन सा धधकता हुआ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया।
0: आप तो खामखा आग बबूला हो गए बड़े बाबू।
1: और नहीं तो क्या, गुलगुला हो जाऊं?
0: देखिए बड़े बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप राशन पानी लेकर ऊपर चढ़ बैठे।
1: और कैसे कहा जाता है, जो कहना था वो सब तो कह दिया, बहुत है इज्जतदार के लिए इतना।
0: भाई क्या कह दिया, जरा मैं भी तो सुनूं।
1: आशिकी नगमा, कत्ल करके आए हो। अरे मैं कहता हूं, और क्या कह सकते हो
0: भाई। बड़े बाबू, रोज आपके मुंह में पान और होठों पर महंगाई का रोना, या तो फिर दूसरों को कोसना, या इसकी शिकायत उसकी शिकायत, लेकिन आज
2: वाह वाह क्या बात है, किसकी तरफ से आने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे।
1: लो एक और आ गए। चाहे सवेरे घर में चाय तक ना नसीब हुई हो, लेकिन कार्यालय में बात करेंगे तो गर्मा गर्म समोसे से नीचे नहीं, जैसे नवाब जादे समोसे खाते खाते ही पैदा हुए थे।
2: हाँ ये बात तो है।
0: नहीं खजूरी साहब, ये बात नहीं, आज तो बड़े बाबू।
2: अच्छा अच्छा, आज तो बड़े बाबू की तरफ से है, बधाई हो बड़े बाबू, बधाई हो।
1: अरे कौन सी ढोलक बजी है हमारे घर में, किस बात की बधाई?
2: बात बाद में, पहले तो हो जाए। हाँ
1: हो जाए, हाँ यहाँ मुफ्त में बंट रही है, जब जी चाहे हो जाए। हाँ
0: खजूरी, बात दरअसल ये है।

0: कि आज बड़े बाबू पर किसी हसीना का चक्कर चल गया है।
1: चक्कर? हसीना का चक्कर?
0: तो ये बात है, अमा भाई आप तो छिपे रुस्तम निकले, आखिर खिजाब ने कमाल दिखा ही दिया।
2: ओफो,
0: इसीलिए मैं सोच रहा था कि इंटीमेट कहाँ महक रहा है।
2: अरे अरे, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इंटीमेट किस भकुए ने लगाया है? यहाँ तो मिट्टी के तेल की खुशबू के अलावा दूसरी कोई सुगंध ही नहीं पहचानते।
0: मजाक छोड़िए बड़े बाबू, बता भी दीजिए कब बज रही है ढोलक।
2: अरे खजूरी, तुम ही बताओ, जब कोई बात हो तभी तो बताए, है कि नहीं भला?
0: थोड़ा सा बड़े बाबू, लंच करवाना पड़ेगा। हाँ
2: देखो देखो, दूर से बात करो। हाँ दूर से बात करो, मुझे गुदगुदी बहुत लगती है। हाँ गुदगुदी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए?
0: अरे हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं, आपकी कसम हम ही तो आपके चाहने वाले हैं।
2: क्यों नहीं, आपकी चाहत की वजह से ही तो ये हो रहा है।
0: छोड़ो यार खजूरी, नहीं बताना चाहते हैं बड़े बाबू तो न बताएं, जब पेट में दर्द होगा तो खुद ही कहेंगे। सुन लो आकर मेरी बात, देख लेना हम भी नहीं सुनेंगे तब।
2: हाँ, जब दर्द होगा तब देखेंगे।
1: अच्छा चोबे, ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला चक्कर का?
0: आज सवेरे सवेरे बड़े बाबू गाना गा रहे थे, लड़ी नजरिया लड़ी।
1: अच्छा तो ये बात है, बता दीजिए बड़े बाबू, भगवान कसम अब नहीं रहा जाता।
2: अब तुम ही सोचो खजूरी, हमें तुमसे कोई पर्दा है क्या?
1: नहीं तो?
2: और फिर पर्दा ही करना होता तो मैडम सरिता से करते।
1: हाँ हाँ और क्या,
2: मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा? अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें ना बताता।
1: लेकिन लड़ी नजरिया लड़ी वाली खबर?
2: अरे ये सब चौंचले हैं चौबे के, मैंने तो बस यूं ही गुनगुना दिया था जरा।
1: जब आप गाना गा रहे थे?
2: गा नहीं, गुनगुना रहे थे।
1: हाँ हाँ वही, जब आप गुनगुना रहे थे तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ वैसा, मेरा मतलब कुछ कुछ
2: कुछ नहीं हो रहा था खजूरी, मैं सच कहता हूँ कुछ नहीं हो रहा था।
1: सोच लीजिए बड़े बाबू, ऐसे वैसे गाने कोई यूं ही नहीं गाता, जब भीतर कुछ कुछ होता है तभी ऐसे गाने मुंह पर आते हैं।
2: ओफो, गाना ना हुआ पानी हो गया, जो जब मन हुआ मुंह में आ गया। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर।
1: तो फिर आपने देशभक्ति का गीत क्यों नहीं गाया, जबकि जरूरत है आजकल देशभक्ति के गानों की?
2: ओफो,
1: देखिए देखिए, परेशान मत होइए, चोबे गया है बाहर, तब तक मुझे बता डालिए।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
1: मान लिया, लेकिन अपना भी ये दावा है कि देखकर जान लेते हैं भीतर का हाल, उठ रहा है कहां कितना उबाल।
3: मारे गए बेमौत, अब साहब क्यों बुला रहे हैं, इसी वक्त बुलाना था इनको भी।
1: कहीं साहब तक तो बात नहीं पहुंच गई, संभल कर बड़े बाबू।
3: आपने मुझे बुलाया साहब?
4: हाँ बुलाया है, बैठो बैठो, डोंट वरी, तुम्हारे जैसे मेहनती और चरित्रवान आदमी पर ऑफिस को गर्व है।
3: धन्यवाद साहब।
4: इधर तुम्हारा काम धंधा, मेरा मतलब ऑफिस का काम कैसा चल रहा है?
3: ठीक ही चल रहा है आपकी मेहरबानी से।
4: तुम्हारी उम्र कितनी है बड़े बाबू?
3: साहब मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
4: यू ही फॉर जनरल नॉलेज।
3: साहब बस ये समझ लीजिए, पुराना खाया पिया है, इसलिए अब की फागुन में 48 वर्ष।
4: आपके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होंगे।
3: जी आपकी मेहरबानी से।
4: इस उम्र में आपके इश्क के चर्चे बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है।
3: जी मैं कुछ समझा नहीं।
4: देखो बड़े बाबू, आज ऑफिस में सवेरे से आपके इश्क की चर्चा है, जिधर देखिए उधर बस एक ही खबर, माजरा क्या है जरा मुझे भी तो बताइए।
3: साहब ये आप क्या कह रहे हैं, भला सोचिए मैं इश्क कैसे कर सकता हूँ? आज तक साहब मैंने किसी लड़की की तरफ तो क्या, बीवी की तरफ भी आंख उठाकर

0: नहीं देखा है।
1: होता है, अक्सर ऐसा होता है। लोग नहीं देखते हैं आंख उठाकर, लेकिन इंसान का काबू अपने जज्बात पर नहीं होता। कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं होती। डोंट वरी, बताओ भी।
2: अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा।
0: अब साहब आपसे क्या छिपाना, यूं ही पता नहीं क्यों मन में आज पुरानी यादें किलोले करने लगी।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर मन में उमंगे
1: पतंगे
0: नहीं साहब, उमंगे उठने लगी, गिरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी।
1: फिर
0: कुछ नहीं साहब।
1: ओहो नॉनसेंस, वेयर इज क्लाइमेक्स, आगे क्या हुआ?
0: साहब फिर मुझे लगा मेरी रगों में सपरेटा नहीं प्योर खून बह रहा है। मुझे भी अपने सांसों में बदबू नहीं खुशबू महसूस होने लगी।
1: क्या हुआ बड़े बाबू, फिर क्या हुआ? ठीक से बैठिए ना।
0: हाँ ठीक है।
1: नहीं, पैर कुर्सी के नीचे।
0: सॉरी सर, बाबू हूं ना, इसी से आदत है।
1: कैरी ऑन।
0: फिर मुझे ऐसा लगा मैं आकाश में किसी
1: ओहो बताइए ना,
0: किसी परी के साथ उड़ रहा हूँ, सारी दुनिया से बेखबर उससे बातें कर रहा हूँ।
1: क्या बातें कर रहे हो?
0: मैं उसे कल की सब्जी के भाव बता रहा था, परमल 8 रुपए किलो, कद्दू 4 रुपए, लौकी।
1: ओहो आप भी किस मौके पर कहाँ की बात ले बैठे, कहाँ गया है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड?
0: साहब अब की वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा प्रिय हम तुम इसी अवस्था में सदियों तक विचरण करते रहे।
1: बड़े बाबू मेरा हाथ छोड़िए।
0: ओह सॉरी सर।
1: और वो गाना?
0: साहब वही गाना मैं गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, लड़ी नजरिया लड़ी, लड़ी नजरिया लड़ी।
3: अरे उठो भी, क्या सोते में लड़ी नजरिया लड़ी गाते जा रहे हो? 4 लौंडों के बाप हो गए, नजरियों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे मैं कहती हूँ दुनिया में लड़ाइयों के खत्म होने के ऐलान हो रहे हैं, एक आप हैं, नजरियों की लड़ाई लड़े जा रहे हैं।
0: बात यह है मुन्ने की अम्मा, मैं सोते में एक बहुत प्यारा चटपटा सपना देख रहा था।
3: सोते में सपने तो देखोगे ही, जागते में तो मैं भूतनी बनी खड़ी रहती हूँ तुम्हारे आगे। जरा मैं भी तो सुनू किससे नजरिया लड़ा रहे थे?
0: तुम तो जानती ही हो मैं भला किससे नजरिया लड़ा सकता हूँ।
3: हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे चोंचले।
0: मेरा विश्वास करो भाग्यवान, मैंने किसी से नजरें नहीं लड़ाई।
3: तो फिर लड़ी नजरिया लड़ी?
0: वो तो सपने में जवानी की पुरानी यादें तरोताजा करने के लिए, कसम से।

लड़ी नजरिया लड़ी। अभी आप सुन रहे थे राजेश भदौरिया की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गुरुमीत रामल मीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12

लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बाद में पछताने से अच्छा है कि समय रहते ही हम सामने वाले के कहे गए या किए गए कार्यों के बारे में पूछ लें। जी हाँ, पूछ लें कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो श्रोताओं, आज मैं आपको कार्यक्रम शुरू होने से पहले इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक केकड़ा समुद्र के किनारे घूमने निकला। वो समुद्र के किनारे घूमकर बहुत ही खुश हो रहा था। जी हाँ, अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पैरों के निशान, जो कि गीली रेत पर बने थे, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये देखकर वो केकड़ा बहुत खुश हो गया। अरे वाह, मेरे पैरों के निशान कितने प्यारे लग रहे हैं। परंतु उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक ना रह सकी। जी हाँ, समुद्र की एक लहर आई और उस केकड़े के पैरों के निशान को मिटा गई। अब ये देखकर तो केकड़े को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में समुद्र की लहर से बोला, अरे ओ लहर, तुम तो मेरी सबसे अच्छी और प्यारी मित्र हो, फिर तुमने मेरे इतने सुंदर पैरों के निशान क्यों मिटा दिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना दुख पहुंचा है? ये सब सुनकर लहर ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, भाई मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया है और बहुत बुरा भी लगा है, परंतु जरा नजर उठाकर दूर देखो, वहाँ कुछ मछुआरे आ रहे हैं और वो केकड़ों का शिकार करते हैं। तुम्हारे पैरों के निशान देखकर वो यहाँ जरूर आ सकते हैं। वो मछुआरे यहाँ ना आए इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान को मिटा दिया, जिससे तुम्हारी जान बच सके। जी हाँ, समुद्र की ये बात सुनकर केकड़े को अपनी बात और अपनी सोच पर

0: पछतावा हुआ और अपने मित्र पर बहुत ही गर्व हुआ। जी हाँ, कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है हमारा आज का नाटक।
1: यह एक पारिवारिक नाटक है जिसमें सभी मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। आइए सुनते हैं कि इस नाटक में कब और क्यों एक गलतफहमी ने जन्म ले लिया और उसको कैसे दूर किया गया।

0: अरे अंजलि, देखो तो दरवाजे पर कोई आया है।
1: जी माँ जी। अरे महक दीदी, आप कैसे हो?
2: ठीक हूँ भाभी।
1: आओ दीदी आओ, अंदर आओ, लाओ सामान मुझे दे दो।
2: भाभी, माँ कहाँ है?
1: दीदी वो तो अपने कमरे में है।
2: ठीक है, मैं माँ के कमरे में ही जाती हूँ।
1: ठीक है दीदी, मैं आपके लिए वही चाय और पानी लाती हूँ।
2: ठीक है भाभी। माँ, माँ जी नमस्ते, कैसे हो?
0: अरे महक बेटा, आओ आओ।
2: क्या बात है माँ, बहुत आराम हो रहा है, तबीयत तो ठीक है आपकी?
0: हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना, तेरे सास ससुर और रमेश सब ठीक है ना?
2: हाँ माँ, सब ठीक है।
0: और सुना, कैसे आना हुआ?
2: अरे माँ, रमेश को कहीं कुछ काम था और मेरी ननद सुदेश आई हुई थी। मैंने माँ जी से पूछा कि मैं अपनी मम्मी को मिलने जाऊंगी और कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। तभी मम्मी जी ने बोला, हाँ हाँ चली जाओ, सुदेश तो आ ही गई है, सब काम देख लेगी। तो मैं यहाँ आ गई तुमसे मिलने के लिए।
0: अच्छा किया बेटा।
3: तभी अंजलि चाय और कुछ गरम गरम पकौड़े लेकर आती है, जो महक को बहुत पसंद थे। पकौड़े को देखकर महक बहुत खुश हो गई।
2: अरे वाह भाभी, मजा आ गया पकौड़े खाकर।
0: अरे अंजलि बेटा, तू भी बैठ हमारे साथ, पकौड़े खा।
1: अरे मम्मी जी, किचन में काम पड़ा है बहुत।
0: अरे हो जाएगा काम, दो घड़ी हमारे साथ भी तो बैठ।
1: पर मम्मी जी,
0: पर वर कुछ नहीं।
1: ठीक है माँ जी।
2: भाभी सच में पकौड़े बहुत स्वाद थे, पेट भर गया पर मन नहीं भरा।
1: कोई बात नहीं, कल फिर बना दूंगी।
2: ओहो भाभी, आप बहुत अच्छी हो।
0: बस बस, अब मेरी बहू को नजर मत लगाओ।
3: ऐसे ही बात करते करते पूरा दिन निकल जाता है और शाम के समय अंजलि डिनर की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ महक आ जाती है।
2: अरे भाभी, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
1: तुम्हारे पसंद के राजमा चावल और साथ में आलू का रायता।
2: अरे भाभी, आज तो मजा ही आ जाएगा, मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाती हूँ।
1: अरे अरे नहीं, मैं कर लूँगी।
2: अरे भाभी, जल्दी काम करके आराम से बैठकर बातें करेंगे फिर।
1: ठीक है दीदी।
3: तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। महक दरवाजा खोलती है तो पास की एक आंटी जी आती है। महक उनको अपनी माँ के कमरे में ले जाती है। तीनों कमरे में खुश होकर बातें करते हैं। आंटी जी बोली,
4: अरे कमला जी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। आपके पास तो इतनी अच्छी बेटी और बहू है।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी तो बहुत मीठी है और बहू नमक है नमक।
3: उनकी ये बातें सुनकर अंजलि चुप रहती है। उसको बहुत बुरा लगता है परंतु कुछ बोलती नहीं और अब पहले की तरह काम में लगी रहती। परंतु अब उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह सोचती है, मैं सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती और माँ का भी पूरा ध्यान रखती, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देती। फिर महक अपने घर चली गई पर अंजलि अभी भी चुप ही थी। कमला जी ने उसके बदले व्यवहार को देखकर उससे बात करने की सोची।
0: अंजलि क्या बात है, आजकल बहुत चुप रहने लगी हो, कोई बात है क्या? तबीयत तो ठीक है?
1: ठीक है मम्मी जी।
0: फिर ऐसे ही चुप चुप क्यों हो?
1: मम्मी जी एक बात पूछूं?
0: हाँ हाँ बेटा पूछ।
1: जब सरोज आंटी आई थी तब उनके सामने आपने महक को तो मीठा और मुझे नमक बताया, आखिर मेरी सेवा में क्या कमी रहेगी जो आपने मुझे नमक बताया?
0: हे भगवान, तुम बस इस बात से परेशान हो?
1: हाँ मम्मी जी, आपकी वो बात मुझे चुभ गई, तब से मुझे समझ नहीं आ रही आखिर आपने मुझे ऐसा क्यों बोला।
0: अरे बेटा, तुम मेरी बात को समझी नहीं।
1: क्या मतलब मम्मी जी?
0: सुन बेटा, महक मेरे लिए मीठा है। अब ये बात बता, मीठा क्या मैं रोज खा सकती हूँ? रोज मीठा खाकर मैं रह सकती हूँ?

0: क्या? नहीं मम्मी जी, अब ये बात बता, नमक के बिना मेरा एक दिन भी गुजर सकता है क्या?
1: नहीं मम्मी जी,
0: इसलिए तुझे नमक कहा, क्योंकि बेटी बेटी तो महीने दो महीने में आ जाए उतना ही बहुत होता है। मेरे लिए तो बेटा तू तो मेरा नमक है नमक, तेरे बिना तो मेरा एक काम भी नहीं हो सकता। तू ही तो है जो मुझ बुढ़िया का सहारा है, तू तो मुझे हर दिन हर पल चाहिए।
1: अरे मम्मी जी सॉरी, अब समझी कि आपने मुझे नमक क्यों कहा।
0: शुक्र है समय रहते तूने मुझसे पूछ लिया, नहीं तो मन ही मन ना जाने क्या क्या सोचकर मन खट्टा करती रहती।
1: अरे मम्मी जी वो मैं बस।
0: बेटा मन में कोई बात आए तो पूछ लिया कर, आखिर हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं।
1: मुझे माफ करना मम्मी जी।
0: बेटा जी माफी नहीं, तुम्हें तो सजा मिलेगी, तुझे मेरे लिए चाय बनाने की सजा मिलेगी।

0: श्रोताओं, आपने सुना कि कमला जी ने अपनी बहू को नमक क्यों कहा। सच है, सच है। एक सास के लिए उसकी बहू नमक की तरह ही होती है, जो उसके अंतिम समय तक उसकी देखभाल करती है।
1: तो श्रोताओं, सुना आपने किस तरह से कमला जी की कही हुई नमक और मीठे वाली बात का अंजलि ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। इस कारण अंजलि मन ही मन अपनी नकारात्मक सोच में उलझने लगी और अपनी सास से भी इसके विषय में नहीं पूछ पा रही थी। परंतु सास कमला जी ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो बहू आनाकानी करने लगी, परंतु सास के बार बार पूछने पर बहू ने सास से पूछ ही लिया, मेरी सेवा में कहाँ कमी रह गई जो आपने मुझे नमक कहा। और सास कमला ने भी बात की नजाकत को समझते हुए उसकी शंकाओं को दूर किया और बहू ने भी उनकी बात को समझा और अपनी गलत फहमी को स्वीकार करते हुए सास से माफी भी मांगी। तो श्रोताओं, बहुत से घरों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सामने वाला आपसे कुछ और कहना चाहता है, परंतु आप उसके शब्दों के मूल्यों को ना समझकर उसका अपने विचार अनुसार मतलब निकाल लेते हैं, या सामने वाला आपकी बात को सही से समझ नहीं पाता, जिससे कि रिश्तों में दरार पड़ जाती है और दो और सालों के रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं। तो श्रोताओं, गलत फहमियों को अपने रिश्तों से दूर करें और इसका एक ही उपाय है। जी हाँ, आपस में बैठें और बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के कहे हुए बातों को सुनें। आपस में बातचीत करने से बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। श्रोताओं, ये समय है कि हम अपने कुछ श्रोताओं के नाम कार्यक्रम में साझा करें। जी हाँ, हमारे श्रोता हैं कृपाल सिंह उर्फ मंत्री जी सीतापुर यूपी से, गंगूरदास जी समस्तीपुर से, नसरुद्दीन सिद्दीकी जी यूपी से, डॉक्टर शिव प्रसाद प्रतापगढ़ से। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर आज की कहानी से संबंधित अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। जी हाँ श्रोताओं, हमारा नंबर है
2: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।

04। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना। अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में, गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

अब सुनते हैं राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाज में एनिमल फिल्म का गाना। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत जैम 8 का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को

0: यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल्स एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि यह सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षो में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
3: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूव्र संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश धोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155

0: 55 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. Now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इन टू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talk with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Seychelles. Addressing the gathering, Seychelles President Hermini said maritime security in the Indian Ocean region remains central to bilateral ties, with the two countries reaffirming their commitment to counter piracy, drug trafficking, illegal fishing and cross-border crime.
3: A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychellois youth with world-class vocational training, strengthening our capacity building. My deepest gratitude to Prime Minister Modi for this transformative initiative.
1: On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development.

0: France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मेनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वज़ीर आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी कुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन्स का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अख्वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इक्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाता है, नेज जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत मालियात खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीर आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में यूपीआई का आगाज करने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशेल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशेल्स शराकतदारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशेल्स के अवाम को मेयारी और किफायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इज्तिमा से खिताब करते हुए सेशेल्स के सदर हर्मिनी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खित्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मंशियात की नाजायज तिजारत गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद पार के जरायम के तईं अपने अहद का इआदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की में क़यादत के लिए सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। सेशेल्स के सदर ने वज़ीर आज़म मोदी को यह पुरवकार एजाज दिया। वज़ीर आज़म को यह एजाज उनकी माहौलियात साजगार क़यादत और तरक्की याफ्ता ममालिक के बढ़ते हुए मफादात नीज नीलमू मईशत आबो हवा से मुतल्लिक कार्रवाई समंदरी वसाइल के पायदार बंदोबस्त और इस्माल आईलैंड तरक्की पजीर ममालिक की तरक्याती ख्वाहिशात के तईं उनकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए दिया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने इस एजाज को उन तमाम ममालिक से मंसूब

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है।

a la Garda Oradia. अरे गर्दा उड़ा दिए।

28 जून साल 1971 दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था।

आनंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओ, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहां आपको बताते चलें कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की ये डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग प्वाइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेदसुमनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया।

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

मंगल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं, जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेट्स मनु, रांझणा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओ, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर, देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शिफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महकते।

यूं तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं। वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

कक्षा या गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली बिसरी याद।

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanaraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan.

है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। मीडियम वेव पर आज की हमारी ये सभा बस यही संपन्न होती है। FM 110.5 MHz पर हमारे दिल्ली FM गोल्ड के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मीडियम वेव के इसी मीटर पर कल की सभा के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।